मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। सभी श्रोताओं को नवरात्र के पहले दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 11 अक्टूबर 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 53 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकोडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के

0: सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए नवरात्रि पर विशेष आराधना का पहला भाग।

समूजपः नहि दुर्गा समं ज्ञानं नहि दुर्गा समं तपः दुर्गायाश्चरितं यत्र तत्र कैलाशमन्दिरं। कलयुग के निरंतर पाप कर्मा प्राणियों के लिए अपने समस्त दोषों से छूटने का एकमात्र उपाय भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का चिंतन ही है, क्योंकि वे ही ब्रह्मा विष्णु महेशादि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठात्री हैं, वही सृष्टि पालिका और संहारकर्त्री हैं। उन्हीं में काल को नचाने की शक्ति है। उन भगवती का पूजन जहाँ होता है वहाँ कमलालया लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। यों तो उन सर्वदेवमयी अंतर्यामी माँ की उपासना नित्य होनी चाहिए, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने माँ की उपासना के लिए वर्ष में 2 बार 9 दिनों एवं 9 रात्रियों तक उनके पूजन का विधान किया है। 1 बार चैत्र में वासंतिक नवरात्र और पुनः शरद ऋतु में शारदीय नवरात्र। इस शारदीय आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी पर्यंत कलश स्थापन सप्तशती पाठ हवन इत्यादि के द्वारा माँ की उपासना करने से जन धन धान्य पुत्र पौत्रादिक से संपन्न होते हैं। ज्ञान धन प्रदायका एवं शत्रुनाशक नवरात्र व्रत के अनुष्ठान का आदेश स्वयं भगवती महामाया दुर्गा सप्तशती में देती हैं। शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्याम ममैतत् महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्थात जो मानव शारदीय नवरात्र में व्रत पूर्वक माँ की उपासना करते हैं उनकी सारी विपत्तियाँ एवं बाधाएँ माँ जगदम्बा स्वयं दूर करती हैं। इस नवरात्र में सबसे प्रथम दिवस माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन होता है। नवदुर्गाओं में प्रथम माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमवान की सुपुत्री हैं। नवदुर्गा साधना आपके चरण कमलों की कृपा से ही प्राप्त होती है। आप श्री साधना की भी आधारशिला हैं। अनाहत चक्र के प्रथम स्पंदन के समय अथवा जब हृदय में अंगुष्ठ मात्र प्राण पुरुष का अवतरण होता है तब हृदय में नवदुर्गा की ज्योति शैलपुत्री के रूप में अवतरित होती है। वे शैलपुत्री माता वृषभ पर आरूढ़ हैं। उनके हाथों में संहारकर्ता त्रिशूल है, उनके हाथों में सर्पों के कंकण हैं और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है।

था विभूषणा, वे माता शैलपुत्री कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमयी हैं। अर्धचंद्र उनके केशों में गुंफित है, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ से भक्तजनों को वांछित लाभ देने के लिए वरद मुद्रा बनाए हुए पर्वतराज हिमालय की पुत्री सदा हम सब की रक्षा में तत्पर हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ जगदम्बा ने शैलपुत्री हेमवती पार्वती हिमानी के रूप में अवतार गिरिराज हिमालय की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर लिया था। कहते हैं कि पूर्व जन्म में पिता के यज्ञ स्थल पर अप्रसन्न होकर अपने सती स्वरूप को भस्म कर देने वाली माँ दुर्गा ने देवताओं के कल्याण के लिए उनके लिए अत्यंत भयकारक तारकासुर का विनाश करने के लिए देव सेनापति कार्तिकेय को जन्म देने के लिए ही पर्वत पुत्री

पार्वती का गौरी रूप धरा था, अन्यथा तो वे साक्षात स्वरूपा हैं, साक्षात शक्ति स्वरूपा ही हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। परंतु शक्ति स्वरूपा होते हुए भी वे माँ पहले हैं, वे शंकर पत्नी देवताओं की माता हैं। जब जब देवताओं पर विपत्ति आती है तो उनका उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए वे वचनबद्ध हैं। यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, तदा तदा अवतीर्याहम करोम्यरि संशयम्। वे माँ शैलपुत्री ही अपने श्री विद्यात्मक स्वरूप में श्री बाला त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। आप ही कन्याकुमारी की अधिष्ठात्री हैं। अज्ञान रूपी संसार सागर को पार करने के लिए अपने ज्ञान प्रकाश रूपी पोत का सहारा देकर श्री पथ के पार पहुंचाती हैं। इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान आप ही के स्वरूप हैं। स्मरण करते ही भक्तों के समस्त मनोरथों की वे पूर्ति करती हैं। तभी तो सुदूर नदी तट पर स्नान करके दिया बाती करती हुई कोई उपासिका मग्न होकर गा रही है, करो दुनिया का बेड़ा पार हो, मैया फुले वरिया में बसी के। रुद्र पत्नी होते हुए भी वे माँ पार्वती धात्री हैं, ज्योत्स्नामयी हैं, अर्थात चंद्रिका के समान शैत्य एवं सुख प्रदान करती हैं। तभी तो सप्तशतीकार दुखी देवताओं के स्वर में स्वर मिलाकर कहता है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता इस्मताम, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततम नमः। अस्तु, आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर देवी बोधन के लिए कुछ और भी कर्तव्य साधक और साधिकाओं के लिए निर्धारित हैं। अपने निवास पर यथा संभव एकांत कोने में एक चौकी पर माँ दुर्गा अष्टभुजा का चित्र या मूर्ति रखें। उनके पास गणपति, माँ लक्ष्मी, प्रभु शंकर, भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता काल भैरव तथा हनुमान जी का चित्र या मूर्ति रखें। यह कुछ ऐसा हो कि उपासक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रहे। इसके पश्चात कोने में गंगा जी की मिट्टी इत्यादि रखकर उस पर मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश रखे। इसके पश्चात उस कलश में सर्व औषधि, पंचरत्न, पंच पल्लव और सुपारी डालें। यदि कोई सामग्री न मिले तो आप उसके स्थान पर अक्षत डाल सकते हैं, यथा सप्तमृत्तिका स्थाने अक्षतम समर्पयामि। कलश के नीचे रखी हुई मिट्टी में जौ बोना चाहिए, क्योंकि जौ ही आदि अन्न है। इनका रोज सिंचन होना चाहिए, क्योंकि नवे दिन ये जवांकुर या घूगा ही माँ को चढ़ाए जाते हैं। कलश स्थापना संभव हो तो किसी पंडित से करवा लें और तदनंतर स्वयं व्रत, जप, पूजन, सप्तशती पाठ, हवन या अगियारी करें। शारदीय नवरात्र में इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करने वाले भक्त पर माँ प्रसन्न होकर अभिलषित वर देती हैं, क्योंकि साधकों की कार्य सफलता के लिए शैलराज हिमवान पुत्री माता पार्वती अपने करुणा रसार्द हृदय से भक्तों की आपदाओं को तत्क्षण दूर करती हैं। इसलिए पूजन समाप्ति पर अग्यारी के पश्चात आरती अवश्य करें।

न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। अर्थात हे माँ, मैं आपके आवाहन पूजन और विसर्जन को नियम पूर्वक नहीं जानती, कृपया मेरी त्रुटियों पर ध्यान न देकर मुझे

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं यजुर्वेद से पाठ।
1: वेदों में अनेक प्रकार की व्याख्या पद्धतियां मिलती हैं, जिसमें याज्ञिक पद्धति का प्रथम स्थान है। इस पद्धति में वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त हैं। इस पद्धति के उदाहरण उबट, महिधर, सायण आदि के भाष्य हैं। इन भाष्यों में अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमाशेष्टि, अग्निष्टोम, वाजपेयी, राजसूय, अग्निचयन आदि विविध यागों के प्रसंग में वेद मंत्रों का अर्थ किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता अध्याय 11 से प्रारंभ करके अध्याय 18 तक यज्ञ की वेदी बनाने के मंत्र पठित हैं। वेदाध्ययन शिक्षा तथा प्रातिशाख्यों में विवेचित है। वेदों के मंत्रों का पाठ तत्त्व शिक्षा तथा प्रातिशाख्यों में प्रतिपादित है। समान मंत्र भिन्न शाखाओं में भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है। संप्रति शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता के 11 अध्याय के कुछ मंत्रों का पाठ हरे

नामो भिर्विशालोका एतु पथये वासुरेहे शृण्वन्तु तो विश

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इसमें आज आपने सुना यजुर्वेद से पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी, इस विषय पर डॉक्टर अजय कुमार से राकेश मौर्य की बातचीत।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटन है, तमाम तरह के खेती करत बाटन, चाहे अनाज वाली फसल हो, चाहे साग सब्जी वाली हो, चाहे दलहनी तिलहनी, हर प्रकार खेती करत बाटन है। आज जौन बातचीत के विषय बा वो प्राकृतिक खेती के बारे में, कि प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी का है, ये पे बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटन डॉक्टर अजय कुमार जी, जवन की सबके जानकार बाटन। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। हमारे किसान भाइन के बतावें कि प्राकृतिक खेती जोन हो तो का है, वो का जानकारी दे चाहते हैं, बताओ आप जरूरी जोन बा।
2: प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है।

0: खेती में रासायनिक खादों व रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उन्हीं को तत्वों के रूप में और
1: अच्छा
0: कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
1: अच्छा अच्छा
0: प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका ने वर्ष 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था।
1: अच्छा अच्छा
0: प्राकृतिक खेती जो है एक पारंपरिक भारतीय पद्धति से निकली हुई रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। प्राकृतिक कृषि का उद्देश्य जो है वो उत्पादन की लागत को कम करना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना तथा संसाधनों का उपयोग करना। प्राकृतिक खेती में उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई जैसे महंगे इनपुट को बंद करना। प्राकृतिक खेती में उपयोग किए जाने वाले इनपुट में से मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों और केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन, जिससे धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती जाती है।
1: आपका कहे का मतलब कि जौन खेती बा पहली बात ओकर लागत कम हो हाँ, और एक लिए जौन बाटे जौन प्राकृतिक चीज की केचुआ रहे ना, और जैविक को हमें जौन सब चीज़ डाला जाता रहा पहले रहत रहा माटी में, वो सब बना रहा है उकरे हिसाब से खेती हो।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: जौन बा जीरो बजट प्राकृतिक खेती का है, एक बारे में कुछ बताऊँ।
0: इसे हम जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। सुभाष पालेकर जिन्हें 1990 के दशक में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र अमरावती जिले में अपने खेत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती कर सफलता पाई।
1: अच्छा अच्छा
0: जीरो बजट यानी शून्य बजट, कोई पैसा नहीं लगाना है। प्राकृतिक खेती जिसमें किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा
0: जीरो
1: अच्छा
0: बजट प्राकृतिक खेती के अनुसार 98% से अधिक पोषक तत्व जिनकी फसलों को आवश्यकता होती है पहले से ही प्राकृतिक में मौजूद हैं
1: अच्छा अच्छा
0: तथा शेष 1.5 से 2% मिट्टी से लिए जाते हैं ये, और इसी को हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती भी कहते हैं।
1: मतलब गौ आधारित, मतलब जो गाय के
0: गाय,
1: गोबर गोमूत्र से होगा।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा अच्छा
0: प्राकृतिक खेती में हमारी देसी गाय का बहुत महत्व है। कहते हैं कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से लेके 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं इसके अंदर,
1: अच्छा अच्छा
0: और इस गाय के गोबर और गौमूत्र में गुड़, बेसन और जीवाणु युक्त मिट्टी डालकर किण्वन यानी फर्मेंटेशन से सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाकर इसे तैयार किया जाता है, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत। जो जब खेत में हम इसे डालते हैं तो ये करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु भूमि में उपलब्ध तथा वायुमंडल में उपलब्ध तत्वों से पौधों का भोजन निर्माण करते हैं।
1: अच्छा, ये प्राकृतिक खेती का महत्व के बारे में कुछ बताऊँ।
0: हाँ, प्राकृतिक खेती का महत्व तो इसमें हम ये कहेंगे कि प्राकृतिक खेती जो है एक तो उत्पादन की लागत को कम कर देती है, क्योंकि जितने भी जो भी हम इनपुट तैयार करते हैं वो जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उन्हीं का हम उपयोग करते हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता
1: यानी
0: है,
1: प्रकृति में जवन मिला था वही
0: वही
1: का।
0: करना किया जाता है। इसलिए प्राकृतिक खेती जो है बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर देती है। जैसे आजकल बहुत हम देखते हैं कि कैंसर और किडनी फेलियर हो रहा है, वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं इससे।
1: अच्छा
0: प्राकृतिक
1: अच्छा
0: खेती के माध्यम से जल की खपत को न्यूनतम किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने में सहायक है।
1: अच्छा
0: आज जो
1: अच्छा
0: रसायनों के बहुत अधिक प्रयोग करने के कारण जो हमारे लाभकारी जीवाणु कवक थे वो सब खत्म हो गए हैं, तो जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये फिर से हमारे उसमें पुनर्जीवित हो जाते हैं
1: अच्छा
0: जो हमारे
1: अच्छा
0: वायुमंडल से और जमीन के अंदर से तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। प्राकृतिक खेती में पशुधन का एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है।
1: अच्छा, एक बात आवाज कि इसके कुछ जो आधार स्तंभ है ना प्राकृतिक खेती को, का है ना, करे बारे में बताऊँ कुछ।
0: अब इसके आधार स्तंभ जिसको हम पंचामृत भी कहते हैं, मतलब
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा
0: बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जीवामृत है, जीवामृत को हम बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों एवं केचुओं को बढ़ाने का काम करते हैं।
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: लाभकारी जीवाणु और कवक होते हैं वो उसमें बढ़ते हैं, और जब हम इसको डालते हैं तो हमारे जो केचुए जो लगातार रसायनों के प्रयोग करने से जो केचुए खत्म हो गए, नष्ट हो गए, वो फिर से उसमें पुनर्जीवित होने लगते हैं और उसमें बढ़ने लगते हैं। दूसरी बात, दूसरा है बीजामृत। बीजामृत ये जो है एक कवक नाशी है और
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा
0: मिट्टी से होने वाले बीमारियों से नई जड़ों की रक्षा करता है। जैसे जो हमारे बीज जनित रोग हैं और भूमि जनित रोग हैं उनसे इसका बचाव करता है। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट है वो आच्छादन है। जब हम आच्छादन करते हैं तो जो खरपतवार की वृद्धि है उसको

0: रोकने में सहायक होती है, और
1: अच्छा
0: दूसरी
1: अच्छा
0: नमी को संरक्षित कर रखती है, नमी को संरक्षित करती है, नमी को बनाए रखती है, और चौथी चीज़ है वो वापसा,
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: सिंचाई की ज़रूरत को कम करने हेतु प्रोत्साहन, जिसमें मिट्टी में पानी के अणु और हवा दोनों में मौजूद होते हैं, उनको बनाए रखती है। और इसके
1: अच्छा
0: साथ
1: अच्छा
0: साथ पांचवा है वो इंटरक्रॉपिंग है, जब एक फसल के साथ हम दूसरी फसल को उगाते हैं तो उससे हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है।
1: अच्छा। अब बता बात आवत की जो जीवामृत आप बताएं ओकरे बारे में कुछ बताएं कैसे बनाई है।
0: हाँ, जीवामृत, जैसे मैंने बताया कि जीवामृत जो है सूक्ष्म जीवाणु का एक महासागर है जो पेड़ पौधों के लिए भोजन तैयार करता है। ये जीवामृत बनाने के लिए हमें 10 किलोग्राम गाय का गोबर चाहिए,
1: अच्छा
0: दस
1: अच्छा
0: लीटर गौमूत्र चाहिए, 2 किलोग्राम गुड़ चाहिए, 2 किलोग्राम बेसन चाहिए, एक मुट्ठी जीवाणु युक्त मिट्टी चाहिए, उस
1: अच्छा
0: जगह
1: अच्छा
0: की मिट्टी जहाँ पर कोई भी रसायन का उपयोग नहीं किया गया हो।
1: अच्छा
0: अगर
1: अच्छा
0: बरगद या पीपल के पेड़ के पास की, तो वहाँ की भी मिट्टी हम ले सकते हैं,
1: अच्छा
0: और उसके
1: अच्छा
0: साथ साथ 200 लीटर पानी। और इन सब को हमको एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है 200 लीटर का, उसमें कोई भी धातु का ड्रम नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का ड्रम हो, और उसमें हम पानी डाल करके सुबह इसको गोबर को, गौमूत्र को, गुड़, बेसन और मिट्टी को डाल करके, और इसको जो है लकड़ी के सहारे घड़ी की सुई की दिशा में हमें सुबह शाम घुमाना है।
1: अच्छा
0: इसे 2 दिन तक 48 घंटे हम इस प्रक्रिया को करेंगे, सुबह शाम 2 से 3 मिनट हम इसको घुमा करके, और उसे बोरे से या जूट के बोरे से या सूती कपड़े से इसे ढक करके रख देंगे
1: यानी मिलावे बरोबर।
0: मिलाने के लिए। लेकिन इसको इस बात का ध्यान रखना कि घड़ी की सुई की दिशा में इसे मिलाना है, उल्टा नहीं मिलाना है, क्योंकि
1: अच्छा
0: जब हम उल्टा मिलाते तो पानी का प्रेशर नीचे की तरफ मारता, तो जो हमारे लाभकारी जो नन्हे जीवाणु जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो नष्ट होने के नष्ट हो सकते हैं। इस
1: अच्छा
0: जीवामृत का जो प्रयोग करने की विधि, इस तरह से जब हम अपनी सिंचाई करते हैं, जैसे पहली सिंचाई करेंगे तो उस समय हम सिंचाई के पानी के साथ में दे सकते हैं, अगर वहाँ पे हम सिंचाई के साथ नहीं दे सकते तो हम उसका अपने खेतों में उसका छिड़काव कर सकते हैं उस, और उसके बाद दूसरी सिंचाई में, फिर तीसरी सिंचाई में जब हम सिंचाई करें, तो हर बार अगर हम इसको दे दें 3-4 बार, तो हमारी भूमि के अंदर लाभकारी जीवाणु की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जो
1: अच्छा
0: हमारे
1: अच्छा
0: वातावरण से, हमारी ज़मीन से, उन सभी तत्वों को लेकर के हमारे पौधों को उपलब्ध कराएगी, जिससे तत्व हमारे आसानी से मिल जाएंगे।
1: अगर ये प्राकृतिक खेती किया जाए तो एक तो लागत कम आए, दूसरी चीज वहाँ जो फसल होए रोग बेरामी से मुक्त रहे भैया, और कम से
0: बिल्कुल
1: कम प्रदूषण न फैले,
0: बिल्कुल,
1: और खेत भी बढ़िया रहे, माटी भी
0: खेत
1: बढ़िया
0: खेत
1: रहे।
0: भी अच्छा
1: तो
0: रहेगा।
1: भैया हो आप आया हमारे किसान भाई आपके बातन पर ध्यान दें, उनका फायदा हो, आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर अजय कुमार से राकेश कुमार मौर्या की बातचीत। बातचीत का विषय था प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज सुनिए डॉक्टर वीबी निघोसकर की वार्ता, कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार।
1: कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है। यह पुरुषों में ज़्यादा होता है पर महिलाएं इसकी द्योतक यानी कैरियर होती हैं। यह एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन है तो उस पुरुष को यह रोग हो जाएगा। महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यदि एक पर रोग की जीन है और दूसरा सामान्य है तो उस महिला को यह रोग नहीं होगा, लेकिन उस महिला को होने वाले कुछ लड़कों में यह रोग निश्चित ही हो सकता है, अतः महिला कैरियर हो जाती है। लाल हरे कलर ब्लाइंडनेस इसी कारण से होते हैं। नीला पीला कलर ब्लाइंडनेस और पूर्ण कलर

0: ब्लाइंडनेस अन्य क्रोमोसोम्स पर पारित होते हैं, इसलिए यह पुरुष और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ नेत्र रोग जैसे ग्लोकोमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, दिमाग की बीमारियां जैसे अल्जाइमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कुछ केमिकल्स तथा दवाओं के दुष्प्रभाव से भी व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो सकता है। कलर ब्लाइंड व्यक्ति लाल हरे रंगों में ठीक से भेद नहीं कर पाता। ट्रैफिक सिग्नल पहचानने में दिक्कत हो सकती है। कलर ब्लाइंड व्यक्ति सोचता है कि जैसा उसे दिख रहा है वैसा ही बाकी लोगों को भी दिख रहा है। आंशिक कलर ब्लाइंडनेस में लक्षण कम होते हैं तथा ज़्यादातर सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस आदि के मेडिकल चेकअप में इस बीमारी को पकड़ा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाले इशिहारा चार्ट में अलग अलग रंगों से लिखे नंबर कलर ब्लाइंड मरीज या तो पहचान नहीं पाता या कोई दूसरा नंबर दिखता है। इसके लिए और भी जांचें होती हैं जिससे किस प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है और किस रंग का कलर ब्लाइंडनेस है ये सुनिश्चित किया जाता है। अनुवांशिक बीमारी होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार नहीं होता। रंगों को पहचानने के लिए कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे के ऊपर फिल्टर आदि दे सकते हैं, पर यह ज़्यादा कारगर नहीं होते। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता चलते ही ग्रसित व्यक्ति को कैसे पेशा चुनना चाहिए इसकी सलाह जरूर दी जाती है। जिस पेशे में रंगों का ज़्यादा काम न हो वह कलर ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। यूजेनिक्स के अंतर्गत कलर ब्लाइंड व्यक्ति के परिवार में आगे की पीढ़ियों में भी यह रोग लड़कों को हो सकता है तथा इसके लिए बच्चे कम रखना या गोद लेने की सलाह भी दी जाती है। लड़कियां कैरियर हो सकती हैं और उनके बच्चों को, खासकर लड़कों को, यह बीमारी हो सकती है। अगर किसी केमिकल या दवा के दुष्प्रभाव से व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो रहा है तो उसे बंद किया जाता है या बदला जाता है। भविष्य में जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही इसका एक इलाज है जिस पर अभी शोध कार्य चल रहा है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वी बी निघोसकर की वार्ता कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात 10 बजे सुनिएगा रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:10 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और दोपहर 12:15 पर कलाकार होंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। सुनिएगा इनका बजाया बांसुरी वादन।

सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। वाचन स्वर होंगे मोना पांडे की और प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9:00, 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर, शाम 7:30 पर और रात 8:15 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर उमा बैनर्जी और शाम 7:45 पर सुरेंद्र कुमार नारंग से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे कौशल्या देवी और साथी और शैल कुमारी। दोपहर 2:30 पर हरिश्चंद हलचल और साथियों से लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। बच्चे अपना कार्यक्रम बालसंग सुनेंगे।

40 मिनट पर सुरेंद्र कुमार नारंग से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे कौशल्या देवी और साथी और शैल कुमारी। दोपहर 2:30 पर हरिश्चंद हलचल और साथियों से लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। बच्चे अपना कार्यक्रम बालसंग सुनेंगे दिन में 11:15 पर। 1:15 अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुनेगा कार्यक्रम हेलो अनुरोध में, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। शाम 5:00 ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।

शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे गौरव जैन की वार्ता, दुधारू पशुओं की देखभाल एवं गौशाला प्रबंधन। साथ ही सुनवाएंगे हरिश्चंद हलचल और साथियों से लोकगीत। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे। कार्यक्रम चिट्ठी आई है में रात 8 बजे कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता से बातचीत की है वंदना राठौर ने। आज इतवार कार्यक्रम में सुनिएगा मधुर श्रीवास्तव की लिखी झलकी खानदानी लोभ, और फिल्मी गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई नगरे 13,000 करोड़ रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनायाः तस्य खण्डस्य मेट्रो रेल सेवायाः शुभारंभं करिष्यति, यस्य निर्माणं प्रायः 49,00,000 करोड़ रूप्यकाणां व्ययेन कृतमस्ति। श्रीमोदी पोरूर बायपास स्थानकात् पूनमल्ली बायपास स्थानक पर्यन्तं पुनश्च तत्रतः चेन्नई मेट्रो रेल यानेन यात्रामपि करिष्यति। पूनमल्ली पोरूर मार्गे उन्नत संकेत प्रणाली युक्ता 3.7 किलोमीटर मिता दीर्घा द्विस्तरीय संरचना अस्ति, या चालक विहीन संचालनाय निर्मिता अस्ति। प्रधानमंत्री 50,000,700,000 करोड़ रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्यानां रेल मार्गाधारभूत संरचना परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति तथा तासाम् उद्घाटनमपि करिष्यति। एतासु अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं पुनर्विकसितानि पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बा समुद्रम, परमकुडी, नमक्कल चेत्येतेषु स्थानेषु स्थितानि 5 अमृत स्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। श्रीमोदी पोरूर सरोवरस्य समीपे स्थिते जलाकंडेश्वर मंदिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनायाः अद्य 1 वर्षं सम्पूर्णं। इयं योजना विगतवर्षे अस्मिन्नेव दिने देशस्य 100 आकांक्षी कृषि जनपदेषु कृषेः सुदृढीकरणाय प्रारब्धा आसीत्। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 11 मंत्रालयानां विभागानां च 36 केन्द्रीय योजनाः राज्यप्रशासनानां योजनाभिः निजक्षेत्रस्य सहभागितया च समन्विताः सन्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं प्रत्येकस्य जनपदस्य विशिष्टानां कृषि सम्बद्धानां आवश्यकतानां पूर्तिः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयुक्त

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्रीराम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्रीराम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगीं कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्रीराम की मूर्ति बसाई

अभी आपने आनंद लिया श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ का, स्वर्था अनुराधा पौडवाल का और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्मों से भजन।

फिल्मों से भजन कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जय माँ वैष्णो देवी फिल्म से ये भजन अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर के स्वर में, नक्शल्यालपुरी की शब्द रचना अमर उत्पल का संगीत।

0: फिल्म से भजन कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म क्रांति से थी और इसके साथ ही फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। शारदीय नवरात्र आज से हुआ शुरू। दर्शन पूजन के लिए प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण आज वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर के रेहरा बाजार विकास खंड के बेलरिया गांव में 803 करोड़ रुपए से अधिक की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले जनपद के रूप में आगे बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो चुका है। भवन तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
2: प्रगति की एक नई गति के साथ आगे बढ़ा करके बलरामपुर जनपद को आकांक्षात्मक जनपद से आगे बढ़ा करके संभावना वाले जनपद के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होता है। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि बलरामपुर में भी कभी विश्वविद्यालय होगा, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का सत्र प्रारंभ हो चुका है और बहुत शीघ्र उसका अपना भवन बनकर के तैयार होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बलरामपुर में आमंत्रित करके उसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी हम आयोजित करवाएंगे।
1: शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। आज सुबह से ही प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु माता के

0: दर्शन पूजन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में भी कलश स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू कर रहे हैं। आज पहले दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्य रात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है। और विवरण हमारे मिर्जापुर प्रतिनिधि से।
1: माँ विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। कल से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। भोर में कलश स्थापना व मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ माँ के जय जयकारों से गूंज उठी। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 10 जोन व 21 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेला की कमान संभाले हुए हैं। एसएम सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर।
0: नेपाल की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। वहां से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
2: बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है। वहीं नवरात्रि मेले को लेकर सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवीपाटन मंदिर में नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए मौजूद हैं। पूजा अर्चना के बाद वह 9:30 बजे इस अवसर पर आयोजित बालिका सम्मान कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर।
0: वाराणसी के दुर्गा कुंड सहित विभिन्न देवी मंदिरों और अयोध्या की बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जालपा देवी और पाटेश्वरी देवी मंदिरों पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर जिले में मां तरकुलहा देवी मंदिर और महाराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लहड़ा देवी मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। उधर दुर्गा पांडालों में एक ओर जहां साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। नवरात्र के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP के प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्यवाही को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से अपील की है कि उन्हें विकसित भारत का राजदूत बनकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री मांडविया कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित माय भारत युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त भारत अभियान में भागीदारी बढ़ाने और डिजिटल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने की अपील की। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने एशियाई खेलों के पदक विजेताओं के साथ IIT BHU में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया। श्री मांडविया आज वाराणसी के नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 94वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें

0: दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त करना है। वाराणसी की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद जीवन बेहद आसान हो गया है।
2: पहले लकड़ी और उपलों पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे धुआं होता था और आंखों में जलन भी होती थी। अब गैस सिलेंडर की मदद से कम समय में आसानी से खाना बना लेती हूँ। उज्ज्वला योजना ने हम जैसी महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला LPG रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
3: भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे। झांसी में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारम्भ हुआ। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर की 29 टीमें भाग ले रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। शारदीय नवरात्र आज से हुआ शुरू। दर्शन पूजन के लिए प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश की 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण आज वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। लीजिए सुनिए, राग है भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं, आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

0: के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली है और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
2: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल को होता है।
2: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
4: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
2: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद

0: सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
2: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनू, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मादोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं। महिलाओं की

0: accordingly, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Sunday Statesman reports UP Chief Minister Yogi Adityanath accepts Akhilesh's challenge to contest from Ayodhya, asks him to follow suit. The Sunday Express writes, rupee near 97 versus dollar, RBI unveils measures to curb speculation. And finally, Lakme Fashion Week, returning to Delhi this week, will see designers experimenting with their signature regional craftsmanship. The Economic Times writes, Indian fashion set to put best looking foot forward. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu this afternoon. Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana completes 1 year today. Northern Railway says all train services to operate as per the normal schedule today. Navratri, 9-day long festival to worship goddess Durga begins with religious fervour and gaiety. Saudi authorities say attack on Riyadh airport killed 12 people and wounded over 300. And in men's cricket, India to take on West Indies in third T20 International in Indore this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु के चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आज एक साल मुकम्मल कर रही है। शुमाली रेलवे ने कहा है कि आज सभी ट्रेनें खिदमात मामूल के मुताबिक चलेंगी। देवी दुर्गा की पूजा का नौ रोजा त्यौहार नवरात्रि आज से मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ शुरू हो गया है। सऊदी हुकाम ने कहा है कि रियाज हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में आज दोपहर इंदौर में तीसरे T20 बैन अवी मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु के चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की मेट्रो रेल खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी पोरू बाईपास स्टेशन से पोनमल्ली बाईपास स्टेशन तक चेन्नई मेट्रो में सफर भी करेंगे। वजीर आजम इसी रास्ते से वापसी का सफर भी करेंगे। पोनमल्ली पोरू राहदारी 3.7 किलोमीटर का दो मंजिल ढांचा है जो ड्राइवर के बगैर कामकाज के लिए डिजाइन किया गया है और जदीद तरीन सिग्नलिंग निजाम से लैस है। इसके अलावा वजीर आजम 5 अमृत स्टेशनों पलानी वेल्लूर छावनी अम्बा समुद्रम परमाकुड़ी और नमक्कल समेत 750 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेलवे बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और उन्हें वक्फ करेंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इन 5 भारत अमृत स्टेशनों की तजीन 9 की गई है। जनाब मोदी पोरू तालाब के करीब जलकंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वजीर आजम के आज चेन्नई दौरे की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए शहर को सजाया गया है जहां वो सड़क बुनियादी ढांचे बंदरगाहों और साइंसी इख्तरा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इनमें बहरी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने वाले कौमी शाहराहों कार्गो सलाहियत को वसत देने और लॉजिस्टिक्स कारकर्दगी में इजाफा करने वाले अहम प्रोजेक्टों का सगम बुनियाद और इफ्तिताह शामिल है। सड़क प्रोजेक्टों से सेलम मदुरई और नागापट्टिनम में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ कम करने के अलावा सफ़र के वक्त की भी बचत होगी। वज़ीर आज़म चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनानी रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म कमराजार बंदरगाह पर इजाफी कंटेनर टर्मिनल के कैपिटल ड्रेजिंग कामों के लिए इजाफी कोल बर्थ प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी IIT मद्रास में सुधा गोपाला कृष्णन ब्रेन सेंटर को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये अपनी तर्ज का मुनफरिद आलम

0: में साइंसी मिशन होगा जहां 100 इंसानी दिमागों का इंसानी जिंदगी के मादर रहम से लेकर बुढ़ापे तक के मराहल का सेलुलर रेजोल्यूशन पर तज्जिया किया जाएगा। वजीर आजम मोदी चेन्नई के जय गोपाल गरुड़ हिंदू विद्यालय स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। ये स्कीम गुज़श्ता साल आज ही के दिन मुल्क भर के 100 उमंगों वाले ज़रई अज़ला में ज़रात को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई थी। हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कीम अज़ला की मखसूस ज़रई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 11 वजारतों और महकमों की 36 मरकजी स्कीमों के साथ साथ रियासती स्कीमों और निजी शोबे की शराकतदारी को एक प्लेटफॉर्म पर ले आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत के ज़रई शोबे में मुख्तलिफ इलाकों और किसान बरादरियों में ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। पिछले साल जुलाई में मरकजी काबीना से मंजूरी हासिल करने वाले इस 6 साल इकदाम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को किया था। यह अज़ला की मखसूस ज़रई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 11 वजारतों और महकमों की 36 मरकजी स्कीमों के साथ साथ रियासती स्कीमों और निजी शोबे की शराकत को एक साथ लाता है। PMDDKY का पहला साल आज मुकम्मल हो गया, जो ज़िले की सतह पर मरकूज कार्रवाई के एक साल को उजागर करता है। 100 अजला में डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स और इशारियों पर मबनी निगरानी का निज़ाम अब अमल में लाया जा चुका है। ज़िले के लिहाज से मखसूस इकदाम ज़मीनी सतह पर ज़रई तरक्की को फ़रोग दे रहे हैं। इस स्कीम का मकसद ज़रई पैदावार, आबपाशी की सहूलियात, कर्ज़ों तक रसाई और फसल की कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ज़िलाई, रियासती और कौमी सतह पर 3 सतही नफाज के ढांचे पर अमल पैरा है। मकामी ज़रई ज़रूरियात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तैयार किए जाते हैं, जिनकी पेशरफ्त पर 121 एक्शन प्लान्स के ज़रिए नज़र रखी जा रही है, जो फ़िलहाल ज़ेर अमल हैं। इन अज़ला का औसत कारकर्दगी स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85 से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89 हो गया, जो स्कीम के तमाम 6 अहदाफ में बेहतरी की अक्कासी करता है। इस पहल ने किसानों के दरमियान मालूमात की मुंतकली और इश्तराक को भी फ़रोग दिया है। दिसंबर 2025 में मुनक़िद PMDDKY फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संगम ने 15 रियासतों और स्कीम से मुंसलिक 33 अजला की 72 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाया, ताकि वो अपने तजुर्बात का तबादला कर सके और ज़रई पैदावार मार्केट तक रसाई और आमदनी में इजाफे के मौके तलाश कर सकें। नई दिल्ली से निधिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: शुमाली रेलवे ने ऐलान किया है कि आज से सभी ट्रेन खिदमात मामूल के मुताबिक रहेंगी। इससे पहले रेलवेज ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला किया था। शुमाली रेलवे के CPRO हिमांशु उपाध्याय ने इस बारे में मजीद जानकारी दी।
3: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को ये सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने इत्तला दी है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने के गेट अब खुल गए हैं। DMRC ने बताया कि सभी मुतालिका मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सहूलत भी अब दस्तियाब होगी। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने गुज़श्ता रोज़ 10 बजे तक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में आज अमन कानून की सूरत हाल के मद्देनज़र ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अपनी एडवाइजरी में ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि उस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए सुबह 6 बजे से मुख्तलिफ मकामात पर डायवर्जन किए जाएंगे। इसके मुताबिक नई दिल्ली की जानिब शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, झंडेवाला, पंचकुया मार्ग, गोलडाखाना और प्लेट चौक, पटेल चौक और मंडी हाउस, भैरो रोड, रिंग रोड, टी पॉइंट और लोधी रोड फ्लाईओवर पर इसका असर रहेगा। लोगों को अपने सफर की पेशगी मंसूबा करने और गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। ٹریفک پولیس نے مزید کہا کہ ٹریفک منظم کرنے کے ان اقدامات میں تبدیلی بھی

0: हो सकती है और ज़मीनी सूरत हाल के जायजे के मुताबिक इनमें रियायत दी जा सकती है या मुनज़्ज़म किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को हकीकी वक्त की सूरत हाल से बाखबर रहने की भी अपील की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। देवी दुर्गा की पूजा का नौ रोजा त्यौहार नवरात्रि आज से मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के नौ रूप की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा को हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री के तौर पर पूजा जाता है, जो ताकत, इस्तेहकाम और नई शुरुआत की अलामत हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी की ज़िंदगी में खुशी, अमन, खुशहाली और अच्छी सेहत लाएगा। वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की कि नवरात्र का त्यौहार कौमी यकजहती के जज्बे और मुल्क की तरक्की के आज़म को तकवीत देगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आज़म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है। ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के सम लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता आज़म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह इस विज़न को गुजरात के बंदरगाह से मुतालिक इनकलाब के ज़रिए अमली जामा पहनाया गया है।
1: तमाम भारतीय रियासतों में गुजरात को सबसे तवील साहिली पट्टी का एजाज़ हासिल है, लेकिन दहाइयों तक इसकी हकीकी समंदरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर बरूए कार नहीं लाया जा सका। साहिल को महज एक जुग्राफिया समझने के बजाय इसे अहम सनती बुनियादी ढांचे के तौर पर देखने का तरीक़ा इख्तियार करते हुए नरेंद्र मोदी ने बतौर वजीर आला प्राइवेट सरमाया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के एक फाल मॉडल की शुरुआत की। बंदरगाहों को पावर ग्रिड्स, रोड नेटवर्क्स, रेल राहदारियों और सनती इलाकों के साथ बगैर किसी रुकावट के जोड़ा गया, जिसे शुरू से आखिर तक सप्लाई चेन तैयार हुई। मुंदड़ा, हजीरा और पपीवाव जैसी तारीखी बंदरगाहें इस विजन के तहत फली फूलीं। गुजरात के इस कामयाब मॉडल ने बिलाखिर सागरमाला प्रोग्राम के तहत कौमी समंदरी तब्दीली की बुनियाद रखी, जिसने भारत की कुल बंदरगाही सलाहियत को 2014-15 में 1561 मिलियन टन से बढ़ाकर 2817 मिलियन टन सालाना से ज़्यादा कर दिया, जबकि बड़ी बंदरगाहों पर लगने वाले वक्त को आधा कर दिया। भारत की रिकॉर्ड साज समंदरी कामयाबियों और ग्रीन पहल कदमियों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
1: अहमदाबाद से अपना खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सऊदी अरब के रियाज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज घरेलू परवाजों के टर्मिनल पर हुए हमले में मरने वालों में सऊदी अरब के 4, बांग्लादेश के 2 और अमेरिका, मिस्र, उर्दून, शाम, सूडान और फिलिस्तीन का एक एक शहरी शामिल है। ये वाकया सऊदी हवाई अड्डों, फौजी बुनियादी ढांचे और तेल मराकज पर हमलों में अचानक इजाफे का हिस्सा है। सऊदी अरब की क्यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से पड़ोसी मुल्क यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों पर हालिया हमलों के बाद सऊदी अरब में ये हमले हो रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। वेस्टइंडीज ने जुमे को रांची में दूसरे T20 मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया था। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज चेन्नई दौरे और वहाँ 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने से मुतल्लिक खबर को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के सिंगापुर दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए

0: सुर्खी लगाई है। निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर में आलमी सरमायाकारी फर्मों के नुमाइंदों से मुलाकात की। जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन पर मुनक़िद तरंग शक्ति 2026 मशक के शुरुआत से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब को कई अखबार ने सुर्खी बनाया है। उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक के दरमियान तकनीकी ताउन ज़रूरी। अखबार की कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं। रूस आलमी मंडी और अमरीका को लाखों टन डीजल फ्राहम करेगा, ट्रंप का बयान।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु के चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आज एक साल मुकम्मल कर रही है। शुमाली रेलवे ने कहा है कि आज सभी ट्रेन खिदमात मामूल के मुताबिक चलेंगी। देवी दुर्गा की पूजा का 9 रोजा त्यौहार नवरात्रि आज से मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ शुरू हो गया है। सऊदी हुकाम ने कहा है कि रियाज हवाई अड्डों पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में आज दोपहर इंदौर में तीसरे T20 बैन अलावामी मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोना पांडे का आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। श्रोताओं, शक्ति की आराधना के इस पावन पर्व पर जब आकाश में भक्ति के रंग हैं, मंदिरों में घंटियों की गूंज है, माँ के जयकारों से वातावरण गुंजायमान है और हर हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित है, तो आइए आज एक ऐसी शक्ति की बात करें जो हमारे घरों में जन्म लेती है, हमारी उंगली पकड़कर चलना सीखती है, अपनी नन्ही आंखों में बड़े बड़े सपने संजोती है, और वो शक्ति है हमारी बेटी।

जरा सोचिए श्रोताओं, जिस देश में हम दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, सरस्वती को ज्ञान की देवी और लक्ष्मी को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, उसी देश में जन्मी हर बेटी को क्या ज्ञान, सम्मान और आत्मनिर्भरता का पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आइए आज नवरात्र की भक्ति को बालिका के सम्मान से जोड़ें, देवी की आराधना को बेटी के अधिकारों से जोड़ें और आस्था को एक ऐसे संकल्प में बदलें जो केवल शब्दों में नहीं हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन्हें बार बार नमन। और आज मन यही कह उठता है, जिस बेटी में साहस है उसमें दुर्गा की झलक है, जिस बेटी में ज्ञान की प्यास है उसमें सरस्वती की चमक है, जिस बेटी के सपनों से घर की खुशियां खिलती हैं उसमें समृद्धि की महक है। तो फिर क्यों ना हर बेटी को उसका आसमान दें, हर सपने को उड़ान दें और हर कदम उसे सम्मान दें। नौ रातें, नौ ज्योतियां और अनगिनत संभावनाएं।

जी हाँ श्रोताओं, आँखें खोलने का समय है और ये समझने का समय है कि सिर्फ नवरात्रि में जो हम माँ की पूजा और आराधना करते हैं वो सिर्फ हमारे शब्दों और हमारे आडंबर में ना रह जाए, बल्कि हम वाकई में शक्ति स्वरूपा का अर्थ समझें, उनको पूजने का अर्थ समझें, अपनी बेटियों को वही सम्मान दें जिनके वो हकदार हैं। नौ ज्योतियाँ और अनगिनत संभावनाएं। नवरात्रि हमें सिखाती है श्रोताओं की शक्ति के अनेक स्वरूप हैं। कोई शक्ति साहस बनकर सामने आती है, कोई धैर्य बनकर, कोई ज्ञान बनकर और कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का आत्मविश्वास बनकर। हम माँ के नौ

पापों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी बेटियों के भीतर छिपे उन अनगिनत रूपों को पहचाना है? वो कभी डॉक्टर बनकर जीना चाहती हैं, कभी वैज्ञानिक बनकर नए आविष्कार करना चाहती हैं, कभी खिलाड़ी बनकर तिरंगे को ऊंचा उठाना चाहती हैं, तो कभी शिक्षिका बनकर ज्ञान का दीप जलाना चाहती हैं। हर बेटी की अपनी कहानी है, हर कहानी में एक नई उड़ान है, और इन्हीं उड़ानों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं

एक नई उड़ान है और इन्हीं उड़ानों को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, समान अवसरों और उनके सशक्त भविष्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और वर्ष 2026 की थीम है एंड चाइल्ड मैरिज एंड इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, अर्थात बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करें, बेटियां बचाइए, बेटियां पढ़ाइए। कितना स्पष्ट संदेश है, बेटी को समय से पहले जिम्मेदारियों के बंधन में बिल्कुल नहीं बांधें, बल्कि शिक्षा, समझ और आत्मनिर्भरता के अवसरों में आगे बढ़ाइए।

उसके बचपन को सुरक्षित करिए, उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए और उसके सपनों को पंख दीजिए, क्योंकि बेटी को किताब मिले तो कलम से इतिहास लिखती है, बेटी को अवसर मिले तो हर चुनौती पर विजय लिखती है।

मत बांधो उसकी उड़ान को समाज की पुरानी सोच से, वो हौसलों के पंखों से अपना आसमान लिखती है। एक प्रश्न अपने आप से करिए, नवरात्र में हम घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं, माँ की चौकी सजाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को आदर से बुलाते हैं, उनके चरणों का पूजन करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। ये श्रद्धा, ये हमारी श्रद्धा का सुंदर रूप है। लेकिन क्या कन्या का सम्मान केवल अष्टमी और नवमी तक सीमित रहना चाहिए? क्या वो सोमवार को भी उतनी ही सम्मानित है जितनी नवरात्रि के किसी पावन दिन पर? क्या उसकी आवाज़ घर के निर्णयों में सुनी जाती है? क्या उसे अपनी पसंद का विषय चुनने, अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है? सच्ची आराधना तब है श्रोताओं जब पूजा के साथ व्यवहार भी पवित्र हो, जब कन्या पूजन के साथ कन्या की शिक्षा हो, जब देवी के चरणों में शीश झुके और बेटी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम हाथ उठा सके। याद रखिए, बेटी पर उपकार नहीं किया जाता, उसे उसका अधिकार दिया जाता है। उसे दया नहीं, उसे अवसर चाहिए, उसे बंधन नहीं विश्वास चाहिए, उसे केवल प्रशंसा नहीं समान अधिकार चाहिए। और इस भाव को एक संस्कृत सुभाषित से बहुत ही सुंदर ढंग से मैं चाहूँगी आप सभी के सामने व्यक्त करना। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवताः, यत्र नास्तु न पूजन्ते सर्वोस्तात्र फला क्रियाः। अर्थात जहाँ नानी का सम्मान होता है वहाँ देवत्व का वास होता है, और जहाँ उसका सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए कार्य भी निष्फल हो जाते हैं।

तो श्रोताओं, ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि केवल परंपरा ही नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी हमें एक जिम्मेदारी मिली है जो जिसका निर्वहन हमें जरूर करना है। आइए इस नवरात्रि पर एक नई परंपरा शुरू करें, बेटी के जन्म पर अथाह खुशियां मनाएं और सब में खुशियां बांटें, उसकी शिक्षा पर गर्व करिए, उसकी उपलब्धियों का उत्सव मनाइए और उसे बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने देने की कोशिश करिए, शुरुआत करिए। शक्ति को प्रणाम, बेटी को सम्मान। प्रिय श्रोताओं, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि हर बेटे के भीतर साहस की ज्योति जले, ज्ञान का प्रकाश फैले और आत्मविश्वास का सूरज चमके। आइए एक साथ संकल्प लें, ना कोई बेटी शिक्षा से वंचित

दिया जाएगा उतना ही किसी बेटी के सपनों को छोटा समझा जाएगा, क्योंकि बेटी केवल एक परिवार की मुस्कान नहीं, समाज की आशा है, केवल वर्तमान की धड़कन नहीं, भविष्य की दिशा है। और अंत में माँ के चरणों में यही विनती है, हे माँ दुर्गा, हर बेटी को निर्भयता दीजिए, हर बालिका को शिक्षा मिले, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कोशिश है। हर घर को समानता का संस्कार मिले और हर मन में नारी के सम्मान का दीप जले। मंदिर में दीप जलाएं, मन में शुभ विचार जगाएं, बेटी के सपनों को पंख दें, उसके जीवन में रंग सजाएं, देवी की जय जयकार करें, हर नारी का सत्कार हो। नवरात्रि का यह संदेश हर बेटी का सम्मान करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हर बेटी के उज्ज्वल भविष्य की अनंत शुभेच्छाएं। आइए शक्ति की आराधना को जीवन का संस्कार

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आज की प्रस्तोत्री थी मोना पांडे और कार्यक्रम प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। अगला कार्यक्रम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 2.94 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और बस कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और पहला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मेट्रो से अदनान सामी की आवाज़ है, सईद कादरी और संदीप की शब्द रचना, प्रीतम का संगीत।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला जनसेवा से राष्ट्र सेवा में आज आप सुनेंगे सरकार की ओर से अंत्योदय की दिशा में किए गए प्रयासों पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार है आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है, और इसी सोच और सुशासन के प्रयासों के चलते भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। पिछले 10-11 सालों में किस तरीके से, विशेष तौर पर दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में कहें तो जो अंत्योदय का व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके जीवन में बेहतरी लाने के कैसे प्रयास किए गए, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जय नारायण डिग्री कॉलेज के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी। ब्रजेश जी, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार जी, धन्यवाद।
4: जो पिछले 11-12 साल में जो सरकार ने आम आदमी के लिए किया है, खासतौर पे जो सबसे गरीब, सबसे वंचित, सबसे दलित व्यक्ति जो है, जिस तक अब तक प्रशासन की सुविधाओं की कोई पहुंच नहीं थी, सरकारी योजनाओं का जिसे इल्म नहीं था, उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पिछले 11 सालों में जो प्रयास किए गए हैं, उनको आप किस प्रकार से देखते हैं और समाज में किस तरीके से आप बदलाव नजर आता हुआ देख रहे हैं, खासतौर पे अगर हम गरीबों की बात करें?
5: देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। हम सब जानते हैं कि इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, और आप देखिए कि सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के होते हुए भी ऐसा लगता था कि भारत में गरीबी दूर नहीं हो रही है, जबकि हमारी आजादी सन 1947 में हमको मिली। फिर भी एक ऐसा तबका था समाज का जिसके हाथ तक लाभ नहीं पहुंचा था, जिसके जीवन में उत्थान नहीं हुआ था। अब मोदी सरकार की हम बात करें तो इनकी एक बहुत लंबी सूची है लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों की, जो अंत्योदय के लिए है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है, जो कि एक दोपहर में भोजन देने का पुनर्निर्धारित कार्यक्रम है और जो बच्चों पर केंद्रित है जिनका वजन कम है और जो कुपोषित हैं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंतर्गत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, जिसमें सस्ती दवाएं हमको मिलती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, 4.25 करोड़ के लगभग घर सरकार ने गरीबों को बना करके दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, सरकार ने 12 करोड़ टॉयलेट बना कर दिए हैं। इसी तरह से जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो एलपीजी सिलेंडर देने के लिए है, और इसमें भी बहुत लंबी संख्या में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको मुफ्त में सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया। और भी जैसे वित्तीय इंक्लूजन की जो स्कीम में है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जो की लोगों के बैंक खाते में सीधे एक न्यूनतम राशि हस्तांतरित करती है बैंकों के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है। अटल पेंशन योजना है, जो कि इसी की कॉन्ट्रीब्यूटी है, एक तरह से वॉलंटरी पेंशन सिस्टम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि

0: योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, तो लंबी योजनाओं की फेहरिस्त है जो कि लोक कल्याण के लिए है और वंचित लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो विकास के अनेक प्रयासों के बाद आजादी के इतने लंबे समय बाद भी देश की मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाए थे। जी
1: और एक बड़ा वर्ग जिसे आधी आबादी कहा जाता है, जो देश में महिलाएं हैं,
0: जी
1: वो एक तरीके से उन तक भी हम देखते आ रहे थे कि बहुत सी चीजें वो घर के अंदर दायरे में सिमटी रहती थीं।
0: जी
1: लेकिन आप इस पिछले 10-12 सालों में किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, खासतौर पर जैसे बैंकिंग सखी है, इसके अलावा जो महिला स्वावलंबी ग्रुप है, स्वयं सेवा समूह है, उसके अलावा करोड़पति लखपति दीदी, इस तरीके की भी योजनाएं हैं। तो तमाम जो सरकार की योजना है, उससे महिलाओं को किस तरीके से सशक्तिकरण हुआ है और उससे पूरे भारत और प्रत्येक परिवार के जरिए किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है?
0: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देश की आधी आबादी का जहां तक प्रश्न है, जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो 2014 के उपरांत से लेकर आज तक जिन जिन राज्यों में राजनीतिक दल के अनुकूल जो भी सरकारें बनी, तो वहां पर सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र का जो मॉडल था उसको अपनाया और महिलाओं के कल्याण के लिए उसी की प्रेरणा से कई अन्य योजनाओं को भी अनेक नाम से चलाया। और यहाँ तक कि आप देखिए कि बिना गारंटी के महिलाओं को लोन देना, छोटे उद्योगों के लिए धन उपलब्ध कराना और साथ ही साथ जो है उनको एक न्यूनतम धनराशि प्रदान करना, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए सरकार ने जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए वो अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं। उसके पहले ऐसे कार्यक्रम नहीं थे जो गरीबों को इतने व्यापक पैमाने पर जोड़ते हों। इसलिए ये भी एक सराहनीय कार्य है कि देश की जो आधी आबादी है वह केंद्र और राज्य की योजनाओं को अपने लिए देखती है और जमीन पर उतरा हुआ पाती है।
1: जी, हमने गरीबों की बात की, हमने महिलाओं की बात की। एक बड़ा वर्ग जो देश का अन्नदाता है, किसान है। जब हम गरीबों की और पिछड़ों की और अंत्योदय की बात करते हैं, तो हमारे किसान, खास तौर पे कुछ एक राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, तो आमतौर पर देश भर में जो किसान है, जो खेती के काम से जुड़े हुए हैं, माना यह जाता है कि उनकी लागत बहुत ज्यादा है और उत्पादन मुनाफा उनका उस हिसाब से नहीं है, और गरीबी के चक्र में वो भी फंसे रहते हैं। खासतौर पर बुआई के समय सिंचाई के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो सरकार ने उन तक पिछले 12 सालों में, 11 सालों में किस तरीके से पहुंचने का प्रयास किया और क्या परिवर्तन नजर आता है आपको?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप और हम पहले भी सुनते रहे हैं कि पहले एक जमाना था जब किसान कर्ज लेके आत्महत्या कर लेता था और वो जो है कर्ज को नहीं भर पाता था। अब आत्महत्या का कोई समाचार नहीं सुनाई पड़ता। इसके लिए सरकार की योजनाओं को धन्यवाद देना चाहिए। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, किसान बीमा योजना दी है। और यही नहीं, जब सरकार को ऐसा लगता है कि बाजार में कुछ मूल्य किसान को कम मिलेगा तो सरकार MSP की घोषणा करके स्वयं उसको खरीद भी लेती है। तो सरकार ने एक तरह से किसान के लिए फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है जो बहुत न्यूनतम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके हमेशा किसान की मदद में तत्पर रही सरकार है। तो उससे ये होता है कि जो किसान के आत्महत्या करने की नौबत थी वो बीमा योजना, फसल बीमा योजना है, जो नुकसान होगा उसको बीमा कंपनी भरती है। तो ये कारण ऐसे बन गए, क्रेडिट कार्ड से उन्हें आवश्यक धन प्राप्त हो जाती है अपने फसल को समय से शुरू करने के लिए। और एक समय ऐसा भी था जब किसानों के लिए कई हजार करोड़ का जो उनका जो कर्ज था उसको भी सरकार ने माफ किया है, यह भी रिकॉर्ड पर है।
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद से हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी आत्महत्या जैसी समाचार नहीं आती। तो यह मैं मानता हूं कि किसानों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी सरकार रही है।
1: जी। और इसमें निश्चित रूप से जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, जिसके तहत 2,000 रुपए मिलते हैं, जो कि बुआई से लेकर के सिंचाई तक के किसान के लिए एक बड़ी मदद के तौर पर आते हैं, बड़ी राहत के तौर पर आते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान हम देख पा रहे हैं
0: जी
1: समाज में। और अगर
0: जी
1: हम, जैसे बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा है, युवा
0: जी
1: बेरोजगार है, बेरोजगारी की दर हम देखते हैं कि लगातार बढ़ती जाती है और बहुत सालों से इसे जो है दूर करने का सरकारें प्रयास कर रही थीं, लेकिन
0: जी
1: पिछले 10-12 सालों में आप किस तरीके का बदलाव पा रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के किस तरीके से मौके आ रहे हैं और सरकार उसमें क्या रोल प्ले कर रही है?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम रहा, जिसने रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन, रक्षा सामग्री का देश में उत्पादन और साथ साथ सरकार ने जो युवाओं के लिए जो स्कोप आया वो केवल सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में ही नहीं आया, बल्कि युवाओं के लिए बिजनेस के क्षेत्र में बिना गारंटी के लोन, साथ ही साथ उनके पे बैक की बहुत ही आसान सी शर्तें और बिना गारंटर के लोन। तो मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि सरकार ने जो है डिफेंस के क्षेत्र में ले लीजिए, इंडस्ट्री में ले लीजिए, किसान अगर कोई है तो उसके लिए ले लीजिए, जो

0: युवा वर्ग है जो भी इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों महकमों में युवाओं के लिए व्यापक पैमाने पर नीतियां बनी, योजनाएं बनी, उद्योग आए और उन पर बहुत काम भी हुआ।
1: जी
0: तो हम ये मानते हैं कि चूंकि हमारे देश की आबादी बहुत अधिक है, तो हमको यह देखना पड़ता है कि सभी के लिए ऐसे कार्यक्रम बन सके जो उपयोगी हों। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी महकमे में जितने रोजगार प्रदान किए हैं और जितना प्रयत्न कर रही है, वह भी अपने आप में अभूतपूर्व है।
1: बिल्कुल, और पिछले 10-12 सालों में विभिन्न योजनाओं के जरिए समाज के हर तबके को राहत देने की, उसे मुख्य धारा से जोड़ने की, और खास तौर पे जो पिछड़े अंत्योदय के व्यक्ति हैं, अंत्योदय का विकास की जो भावना रही है सरकार की, उससे आम लोगों तक सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ी है और उन्हें फायदा हुआ है। ब्रजेश जी, आपने आकाशवाणी समाचार के साथ इस विषय पर विस्तार से बातचीत की, अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला जनसेवा से राष्ट्र सेवा में अभी आप सुन रहे थे सरकार की ओर से अंत्योदय की दिशा में किए गए प्रयासों पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा।
4: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की पेशकश के तहत आज आइए सुनते हैं निदा फाजली की शायरी और अदब खिदमत पर डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर से चर्चा। इसके बाद आप सुनेंगे नूर बानो का मकाला जिसका उन्वान है लड़कियों का आलमी दिन। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर। आदाब कबूल फरमाए सामाइन। आज के इस खसूसी चर्चा में हम उर्दू और हिंदी अदब के एक ऐसे मुनफरद शायर और अदीब का जिक्र करेंगे जिनकी शायरी में आम आदमी की ज़िंदगी, उसके दुख, खुशियाँ, तन्हाई, रिश्ते और बदलते हुए माशरे की तस्वीरें नहायत सादा मगर असर अंगेज अंदाज में नज़र आती हैं। ये शख्सियत हैं निदा फाजली। निदा फाजली का असल नाम मुक्तदा हसन निदा फाजली था। उनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुई थी। उनका ताल्लुक एक अदबी घराने से था और बचपन ही से शेर व अदब से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। बाद में उन्होंने मुंबई को अपना मुस्तकिल मस्कन बनाया और वहाँ अदबी दुनिया के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। निदा फाजली का शुमार उन शायरों में होता है जिन्होंने शायरी को मुश्किल और सकील अल्फाज के बजाय रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़बान में बयान किया। उनके यहाँ फ़लसफ़ा भी है, जज्बात भी, तजुर्बा भी और ज़िंदगी की तलख हकीकतें भी। उनकी शायरी पढ़ते हुए महसूस होता है कि शायर अपने इर्द गिर्द के आम इंसानों, उनके मसाइल और उनकी छोटी छोटी खुशियों को बहुत करीब से देख रहा है। निदा फाजली की शायरी में इंसानी रिश्तों को ख़ास अहमियत हासिल है। माँ, बाप, घर, बचपन, तन्हाई और बदलते हुए ख़ानदानी रिश्ते उनके पसंदीदा मौजूआत में शामिल रहे। उन्होंने ज़िंदगी को किसी दूर की ख्याली दुनिया के तौर पर नहीं बल्कि अपने आसपास बिखरी हुई हकीकतों के तौर पर देखा। यही वजह है कि उनकी शायरी आम कारी और सामे के दिल तक आसानी से पहुंचती है। उनके कलाम में सादगी एक बहुत बड़ी खूबी है। वे मामूली से वाक़े या मंजर में भी ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़लसफ़ा तलाश कर लेते हैं। उनकी शायरी हमें एहसास दिलाती है कि अदब सिर्फ बड़े मौजूआत का नाम नहीं, इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी अपने अंदर बेशुमार कहानियाँ और जज्बात समोए हुए है। निदा फाजली ने गज़ल के साथ साथ नज़्म और नसरी अस्नाफ में भी काम किया। उनकी मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आईं और उन्हें अदबी हलकों में कदर व एहतराम हासिल हुआ। उनकी खुदनविश्त दीवारों के बीच भी खासी अहमियत रखती है जिसमें उनकी ज़िंदगी और अदबी सफ़र की कई झलकियाँ मिलती हैं। निदा फाजली की शख्सियत का एक अहम पहलू उनका फिल्मी दुनिया से ताल्लुक भी है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गीत और मुकालमे लिखे। उनकी फिल्मी गीतों में भी वही सादगी, इंसानी एहसास और ज़िंदगी से क़ुर्बत नज़र आती है।

0: दुनिया देंगे जहां उन्हें इज्जत, बराबरी, हिफाजत और तरक्की के पूरे मौके मिल सकें। हम अपनी बच्चियों को एक ऐसी दुनिया देंगे जहां वो बिना किसी खौफ के अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें और एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकें। यही इस दिन का असल पैगाम है। बेटियों को बचाइए, उन्हें पढ़ाइए और उन्हें आगे बढ़ाइए। बेटियों के दिल से निकली एक बात शेर के जरिए आपके हवाले पेश करती हूँ कि तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन तो नहीं, तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन तो नहीं, मेरा भी कोई वजूद है, मैं कोई आईना तो नहीं।
1: सामाइन, अभी आप लड़कियों का आलमी दिन के मौजू पर सुन रहे थे एक मकाला जिसे पेश कर रही थी नूर बानो साहिबा। सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त। आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज़ से अभी आप समाअत फरमा रहे थे आज का उर्दू प्रोग्राम। पेशकश आकाशवाणी के लखनऊ मरकज़ की थी और आज इस कार्यक्रम में आपने सुना निदा फाजली की शायरी और अदमे खिदमात पर डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर से चर्चा, और इसके अलावा आपने सुना नूर बानो का मकाला जिसका उनवान था लड़कियों का आलमी दिन। पेशकश आसिफ इकबाल की थी। आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की पेशकश था। अपने रेडियो से
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं उमा बनर्जी। आप सुनेंगे इनके स्वर में गीत और भजन। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं उमा बनर्जी।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना था तुलसीदास रचित भजन उमा बनर्जी के स्वर में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा ये गीत उमा बनर्जी के स्वर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मां जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कामना की है कि नवरात्रि का पर्व राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की प्रगति के संकल्प को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका व्यक्तित्व और संदेश पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान उनकी निर्भीक आवाज को याद किया। उन्होंने कहा कि वे सुशासन और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 3 नवंबर को होने वाले मध्य अवधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस जारी संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। साउथ अमेरिका के शहर टेनेसी में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान इस सोच के साथ और कदम उठा सकता है, इससे अमेरिका को राजनीतिक नुकसान होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज के साथ तूफान और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी आज बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत उमा बैनर्जी की स्वर में। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। आप सुनेंगे समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और अब समय हो चला है लोक गीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी को सुनने का। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है लोक माधुरी। आज के कलाकार हैं कौशल्या देवी और साथी और शैल कुमारी। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कौशल्या देवी और साथियों के स्वर में देवी गीत।

0: जान मारई कांधा बसुरिया।
1: कौशल्या देवी और साथियों के सुर में अभी आपने सुना था देवी गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में दादरा।

कौशल्या देवी और साथियों के स्वर में आपने सुना था दादरा, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में कहरवा।

कौशल्या देवी और साथियों के स्वर में आपने सुना लोकगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शैल कुमारी के स्वर में लोकगीत। तो पहले सुनते हैं गंगा गीत इनके स्वर।

शैल कुमारी के स्वर में आपने सुना गंगा गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में झूमर, जो है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार थे कौशल्या देवी और साथी और शैल कुमारी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, कहते हैं कुछ आवाज़ें केवल सुनाई नहीं देती, ये दिल में सीधे उतर जाती हैं। कुछ चेहरे केवल पर्दे पर नहीं चमकते, वे पीढ़ियों की यादों में बस जाते हैं। और कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने सिनेमा का एक पूरा सुनहरा संसार जीवंत हो उठता है। एक लंबा कद, गहरी आवाज़, आंखों में गहराई, संवाद अदायगी में बिजली सी चमक, कभी आंखों में आक्रोश, कभी चेहरे पर शरारत, तो कभी प्रेम में डूबा एक कवि, तो कभी दोस्ती पर सब कुछ न्यौछावर करने वाला यार। जी हाँ श्रोताओं, आज की महफिल समर्पित है उस महानायक को जिसने अभिनय को अंदाज दिया, आवाज़ को पहचान दी और हिंदी सिनेमा को ऐसे किरदार दिए जो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा।
0: जी हाँ श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस महानायक की बात कर रहे हैं। प्रयागराज की धरती पर 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान कवि के घर जन्मे इस बालक ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और अनुशासन से भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अलग मुकाम बनाया। तो आइए आज के इस खास संगीत यात्रा में हम चलें यादों की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर एक फिल्म है, हर फिल्म में एक कहानी और हर कहानी में गूंजती है अमिताभ की आवाज़। मैं हूं मोना पांडे और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और आज का ये फिल्म संगीत केंद्रित है महानायक अमिताभ बच्चन पर।
1: ओ खाई के

श्रोता हूँ आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आज का फिल्म संगीत केंद्रित है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर। दोस्तों, किसी भी महान सफलता के पीछे संघर्ष की एक महान कहानी भी होती है। अमिताभ बच्चन ने 1969 में अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्हें तुरंत वो सफलता नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर आई 1971 की फिल्म आनंद, राजेश खन्ना जैसे लोकप्रिय सितारे के साथ निभाए गए डॉक्टर भास्कर बनर्जी के किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार भी मिला था। और फिर 1973 में आई जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन की छवि को एक नया आयाम दिया। विजय नाम का वो ईमानदार, गुस्सैल और अन्याय से टकराने वाला किरदार उस दौर के दर्शकों के दिलों में उतर गया, और यहीं से हिंदी सिनेमा में उनकी एंग्री यंग मैन की पहचान मजबूत हुई। लेकिन इस गंभीर, गुस्सैल महानायक के भीतर एक बेहद संवेदनशील और रोमांटिक कलाकार भी था। वो कभी एक कविता की तरह प्रेम व्यक्त करता है, तो कभी दोस्ती में दिल जीत लेता है, और कभी अपनी मस्ती से पूरा पर्दा रोशन कर देता है।

वाह क्या अंदाज। अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व की ये खास बात थी कि गंभीर भूमिका में भी वो उतने ही प्रभावशाली लगते हैं जितने की मस्ती और हास्य में। और अब बात उस फिल्म की जिसने दोस्ती को हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार भावनाओं में से एक बना दिया।

श्रोताओं, इस फिल्म की बात करें तो आपको बता दें कि 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी आई और इस फिल्म में अमिताभ ने अमित नाम के एक कवि की भूमिका निभाई। और जब किरदार एक कवि का हो तो उसके संवादों में कविता की खुशबू आना स्वाभाविक है। इस फिल्म का संगीत हयाम ने तैयार किया और गीत लिखे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म के गीतों ने प्रेम, विरह और अधूरे सपनों को ऐसी अभिव्यक्ति दी कि वो आज भी सुनने वालों के मन में उतर जाते हैं। यह अमिताभ केवल एक अभिनेता नहीं लगते बल्कि एक ऐसे कवि की छवि बन जाते हैं जिसकी भावनाएं समय के साथ बदलती हैं मगर प्रेम की स्मृति नहीं मिटती। तो चलिए उस दौर की खूबसूरत याद की ओर बढ़ते हैं।

क्यों श्रोता हूँ, कैसा लग रहा है ये गाना? लग रहा है ना कि कुछ गाने तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही मौसम बदला हुआ सा महसूस होता है। बाहर धूप हो और फिर भी मन में बादल घिर आते हैं, और जब बात अमिताभ बच्चन की हो तो रोमांस का अंदाज भी कुछ अलग हो जाता है। 1981 में आई थी ये फिल्म सिलसिला। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कुमार जैसे कलाकार थे।

दोस्तों, किसी कलाकार की असली महानता केवल उसकी लोकप्रियता में नहीं होती, बल्कि बदले समय के साथ खुद को नए रूप में ढालने की क्षमता में भी होती है। अमिताभ बच्चन ने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा में अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने नायक, कवि, पुलिस अधिकारी, पिता और अनेक जटिल किरदारों के माध्यम से अपने अभिनय की विविधता हमें समय समय पर दिखाई, और उनकी यात्रा ये भी सिखाती है कि सफलता मिलने के बाद भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हर दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर नई चुनौती नए प्रयास की मांग करती है। टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति के साथ उनकी उपस्थिति ने दर्शकों से एक नया रिश्ता बनाया। उनकी गहरी आवाज़ में पूछा गया सवाल लॉक किया जाए घर घर में पहचाना जाने लगा। सिनेमा के पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक उन्होंने अपनी पहचान को नए माध्यमों में भी बनाए रखा। साथ ही वो यूनिसेफ के साथ बच्चों के स्वास्थ्य और टीकाकरण जैसे सामाजिक अभियानों में भी जुड़े रहे। ये उनके सार्वजनिक जीवन का एक ऐसा पक्ष है जो लोकप्रियता को सामाजिक जागरूकता से जोड़ता है।

श्रोताओं, समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, संगीत के रंग बदलते हैं, लेकिन कुछ आवाजें समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज में एक ऐसी गंभीरता है जो संवाद को वजन देती है, एक ऐसा ठहराव है जो शब्दों को अर्थ देता है, और एक ऐसी ऊर्जा है जो दर्शकों को कहानी से जोड़ देती है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। आज है उनका जन्मदिन, उनको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। महफिल में दर्द भी है, मुस्कुराने का अंदाज भी, अमिताभ की अदाकारी में जज्बात भी हैं और अल्फाज भी। तो आइए सुनते हैं महानायक अमिताभ बच्चन के फिल्म शराबी का एक यादगार गीत, जिसमें संगीत भी है, मस्ती भी और दिल को छू लेने

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंची। उनके अभिनय ने हिंदी सिनेमा की कई यादगार फिल्मों में एक विशेष पहचान उन्हें दिलाई और उनके गीत आज भी रेडियो उत्सवों और हमारी निजी यादों में जीवित हैं। आइए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कुछ पंक्तियां कहें। किरदार बदले, दौर बदले, मगर अंदाज वही रहा। हर नई कहानी में अभिनय का नया आगाज वही रहा। आवाज में गहराई, आंखों में कहानी, अमिताभ के नाम है सिनेमा की एक अमर निशानी। ये महज एक अभिनेता का जन्मदिन नहीं।

बल्कि उन तमाम यादों का उत्सव है जो उनके अभिनय और संगीत ने हमें दी है। तो दोस्तों, आज के इस खास फिल्म संगीत यात्रा में हमने याद किया अमिताभ बच्चन के संघर्ष को, उनकी दोस्ती को, उनके रोमांस को, उनकी मस्ती को और उनके अनुशासन को। डॉन की मस्ती से शोले की दोस्ती तक, कभी कभी कविता से सिलसिला के प्रेम तक, और हर गीत ने हमें उनके व्यक्तित्व का एक अलग रंग दिखाया। जन्मदिन के इस अवसर पर हमारी यह शुभकामना है कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी कला से दर्शकों को प्रेरित करते रहें। और अब आपसे विदा लेने का समय है, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे, कुछ लोग पर्दे पर आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग किरदार निभाते हैं और याद रह जाते हैं, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिनेमा की कहानी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं, और अमिताभ बच्चन हैं एक ऐसा ही नाम।

0: और ये गाना आपने सुना बागमा फिल्म से। सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाज़ और समीर की शब्द रचना, आदेश श्रीवास्तव का संगीत और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपने आज के कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे को। आप सुन रहे थे नम फिल्म संगीत और आज हमने याद किया अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन के अवसर पर। देते हैं उन्हें ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक नई कहानी, एक कुछ नए गीत और ढेर सारी यादों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।
1: लगती कमाल सोनी वे।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगली उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: अरे वाह वाह भाई, आज तो बहुत जोर का जय हिंद हुआ है ना, जोश के साथ। तो भाई, इस जोश के संग प्रारंभ हो चुका है हमारा बाल संघ कार्यक्रम, और बाल संघ कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, त्योहारों की खुशियाँ, भक्ति का रंग और माँ दुर्गा का आशीर्वाद चारों ओर चमक रहा है ना? और मैं हूँ गुंजन दीदी।
2: और मैं हूँ रितंद्रा दीदी। बच्चों, नवरात्रि यानी नवरात्रि का वो पावन पर्व जब हम माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं। माँ के ये नौ रूप हमें शक्ति, साहस, ज्ञान, धैर्य और सदाचार का संदेश देते हैं।
1: तो बच्चों, क्यों ना आज हम माँ दुर्गा के इन नौ रूपों को जानें कि हर रूप आखिर हमें क्या सीख देता है।
2: तो बच्चों, शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कविता से। नौ रूपों में माँ का नूर हर रूप लगे सुंदर भरपूर, शक्ति भक्ति और ज्ञान सिखाए, माँ के चरणों में शीश झुकाए।
1: और बच्चों, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ के हाथ में होता है त्रिशूल और कमल, और उनका वाहन पता है क्या है? वो होता है वृषभ।
2: और बच्चों, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये स्वरूप तप, त्याग, दृढ़ संकल्प और का प्रतीक है। यानी बच्चों, अगर हम कोई अच्छा लक्ष्य बनाते हैं तो उसे पाने के लिए मेहनत और धैर्य के साथ पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल भाई, ये धैर्य होना बहुत जरूरी है, और फिर तभी तो कहते हैं कि मेहनत से जो नाता जोड़े वह मंजिल से नाता जोड़े।
2: बिल्कुल। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। ये स्वरूप शांति और साहस का संदेश देता है।
1: माँ चंद्र घंटा हमें क्या सिखाती है? बुराई के सामने डरना नहीं है और हमेशा सत्य का ही साथ देना है।
2: और बच्चों, चौथा रूप है माँ कुष्मांडा का, और मानता है कि माँ कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना हुई।
1: बच्चों, माँ का ये रूप हमें सृजन, ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश देता है।
2: बिल्कुल। और इसीलिए बच्चों, मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने आसपास भी खुशियां बांटते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कान बांटो, प्यार बांटो, जीवन में खुशियों के रंग बांटो, मन में रखो अच्छे विचार, यही है जीवन का सच्चा श्रृंगार।
1: अब हम आ गए पांचवे स्वरूप पे, यानी पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद को अपनी गोद में धारण करती हैं।
2: और बच्चों, माँ का ये जो रूप है वो ममता, वात्सल्य और मातृत्व का प्रतीक है। बच्चों के लिए माँ प्यार की दुनिया सबसे बड़ी ताकत देती है ना।
1: और बच्चों, हमें भी अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए।
2: बिल्कुल। और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी शक्ति और वीरता की प्रतीक है।
1: और वो हमें संदेश क्या देती है? अन्याय के सामने कभी भी झुकना नहीं, और अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों का सम्मान करना।

0: बिल्कुल। और बच्चों, सातवें दिन माँ काल रात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भले ही थोड़ा सा डर लगता है ना देखकर, लेकिन वो अपनी भक्ति और कल्याण से सबका परोपकार करती हैं।
1: भाई, माँ काल रात्रि हमें क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि डर से कभी भी भागो नहीं, बल्कि क्या करना है, हिम्मत से और साहस के साथ उसका सामना। क्योंकि बच्चों, डर चाहे जितना गहरा हो, हौसला उससे बड़ा ही होता है। सच्चाई को जो अपनाए, वही तो जीवन में आगे जाए।
0: और आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं। उनसे हमें सीख मिलती है कि हमारा मन भी स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। हमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए।
1: माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों की दात्री माना जाता है। उनका स्वरूप ज्ञान, पूर्णता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक होता है।
0: यानी कि बच्चों, नवरात्रि की हमारी जो यात्रा है वो शक्ति से शुरू होकर ज्ञान और पूर्णता तक पहुंचती है। तो बच्चों, हमने आज क्या जाना माँ दुर्गा के नौ रूपों के बारे में? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री।
1: और इन सभी रूपों के पीछे छिपा है नौ संदेश, है ना? साहस, तप, शांति, सकारात्मकता, ममता, निर्भयता, पवित्रता और ढेर सारा प्यार माँ का, है ना?
0: बिल्कुल। और तभी देखो मन में भाव आते हैं बच्चों। माँ के नौ रूप निराले हैं, सबके मन को उजियाले हैं। शक्ति दे, साहस दे माँ, ज्ञान का आशीष दे माँ, सत्य की राह पर चल पाए, सबके जीवन में खुशियाँ लाए। जय माता दी।
1: जय माता दी।
0: और भाई देखो, इस सुंदर कामना के साथ बच्चों चलिए सुनते हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं बिने भैया, रोचक अपनी जानकारी के साथ। तो चलिए सुनते हैं रोचक जानकारी बिने भैया से।
2: बच्चों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कुछ रोचक जानकारियों के साथ। मैं हूँ विनय श्रीवास्तव भैया, और आज हम रोचक जानकारियों में बात करेंगे पृथ्वी की, जंगलों की, समुद्र की और साथ ही अंतरिक्ष की कुछ खास जानकारियों के बारे में। बच्चों, अक्सर हम सब बात करते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, लेकिन क्या मालूम है आपको कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, और पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें से अधिकांश भाग महासागरों में है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी का एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक और घातक सौर किरणों से हमारी रक्षा करता है। और बच्चों, जानते हो, आकार के मामले में पृथ्वी हमारे सौर मंडल का पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है, और ये सभी स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ी है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच सीमा को कार्बन रेखा कहा जाता है, जो समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है। और हम सब तो जानते ही हैं बच्चों कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या आपको मालूम है वो कितने समय में दूरी तय करती है? तो मैं बता दूं बच्चों कि पृथ्वी बहुत तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाती है। ये एक घंटे में लगभग 1,07,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास प्राकृतिक रूप से केवल एक ही उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ अनोखे और रहस्यमयी जंगलों के बारे में। बच्चों, हम सबको तो मालूम ही है कि जंगलों की दुनिया बहुत ही निराली और अनोखी है। तो आज हम चलते हैं जंगलों के सफर में। यहाँ हम बात करेंगे कुछ अनोखे जंगलों के बारे में। क्या बच्चों, आपको

मालूम है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन है? वो है टैगा या बोरियल वन, जो रूस, कनाडा, अलास्का और स्कैंडिनेविया में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये पृथ्वी की कुल भूमि का लगभग 11% हिस्सा घेरता है। यहाँ अधिकांश समय ठंड रहती है और बर्फ भी जमी रहती है। बच्चों, अगर सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल की बात की जाए तो अमेजन वर्षावन सबसे पहले स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण अफ्रीका के कई देशों जैसे ब्राजील, पेरू आदि में फैला है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। इसी तरह भारत का सबसे सुंदर और अनोखा जंगल सुंदरवन का जंगल माना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छों का मुख्य घर है। यहाँ सुंदरी नाम के मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। अन्य खूबसूरत जंगलों में झारखंड का सारंडा वन अपनी घनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। समुद्र हमारी पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी और विचित्र हिस्सा है, जिसकी गहराई में कई ऐसे अजीबोगरीब तथ्य छिपे हैं जो किसी कल्पना से कम नहीं लगते। तो आओ जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातें। बच्चों, समुद्र के भीतर भी अपनी अलग नदियां, झरने और झीलें बहती हैं, जिन्हें ब्राइन पूल कहा जाता है। यहाँ पानी का खारापन और घनत्व सामान्य समुद्र से बहुत ज्यादा होता है। बच्चों, पता है जमीन पर हिमालय या एंडीज पर्वत है, लेकिन पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के अंदर ही मौजूद है। इसे मिड ओशियन रिड्ज कहते हैं, जो करीब 65,000 किलोमीटर लंबी है। दुनिया के सारे संग्रहालयों से मिलकर भी जितने ऐतिहासिक अवशेष नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा प्राचीन जहाजों के मलबे और ऐतिहासिक कलाकृतियां समुद्र के गर्भ में दफन हैं। समुद्र में पाया जाने वाला पिस्टल झींगा नाम का एक छोटा सा जीव अपने पंजों को इतनी तेजी से बंद करता है कि उससे निकलने वाला बुलबुला बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज आवाज पैदा करता है, लगभग 200 डेसिबल। समुद्र में रहने वाली सी ओटल नामक उदबिलाव सोते समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं, ताकि पानी की लहरों में वे एक दूसरे से बिछड़ न जाएं। बच्चों, क्या मालूम है, समुद्र का लगभग 95% हिस्सा आज भी मानव की पहुंच से दूर और पूरी तरह अनजान है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे रहस्यमयी जगह बनाता है। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। इसकी गहराई इतनी अधिक है कि यदि माउंट एवरेस्ट को भी इसमें उल्टा रख दिया जाए, तब भी चोटी पानी के नीचे 3 किलोमीटर दूर रह जाएगी। समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स पानी के भीतर के गर्म झरने होते हैं। क्या ये बात आपको पता है बच्चों? यहाँ से 350 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म पानी और खनिज निकलते हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना धूप के यहाँ सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक संश्लेषण से एक पूरी अनोखी दुनिया पनपती है। और बच्चों, अब हम चलते हैं अंतरिक्ष की सैर पर और जानते हैं कि इस माह कौन कौन सी मुख्य खगोलीय घटनाएं घटने वाली है। खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वालों के लिए ये महीना खास है। ट्रैकोनिड्स और ओरियोनिड उल्का वर्षा के साथ
26

21 अक्टूबर को हंटर मून सभी का ध्यान आकर्षित करने वाला है। धनु, मकर, कुंभ, मेष, वृषभ और वृश्चिक राशियां, यानी कि ये जो तारों के समूह है, ये देखी जा सकेंगी। ओफियुकस, हंस, वीणा, स्वरमंडल, गरुण, पेगासस, एंड्रोमेडा और सारथी जैसे चमकदार तारों के समूह भी इसी महीने नजर आएंगे। साथ ही वेगा, अल्टेयर, मेनकालिनन, डेनेब, हमल, मिर्फक, प्लियेड्स, एल्डबारन और अलनायर भी देखे जा सकेंगे। सूर्यास्त के बाद आसमान साफ रहने पर उत्तर दिशा में इसे देख सकेंगे। इसका नामकरण ट्रैको तारामंडल पर हुआ है, क्योंकि उल्काओं का उद्गम इसी तारामंडल की दिशा से नजर आता है। और बच्चों, हम सब ओरियोनिड उल्का वर्षा भी इसी माह देख सकेंगे। 21 और 22 अक्टूबर की रात ये अपने चरम पर होगी। प्रति घंटे 10 से 20 उल्काएं आधी रात के बाद नजर आ सकती हैं। 24 अक्टूबर को ओरियन शनि ग्रह के निकट पहुंच जाएगा। ग्रहों की राशियों से निकटता की बात करें तो सूर्य कन्या राशि में है, 1 नवंबर को तुला राशि में चला जाएगा, बुध शुक्र वृश्चिक राशि में है, मंगल कर्क राशि में है। इसे रात 1:15 पर देखा जा सकेगा। इस माह पूर्णिमा 26 अक्टूबर को है। इस चंद्रमा को पश्चिमी देशों में हंटर्स मून कहा जाता है। अलग अलग संस्कृतियों में मौसम बदलाव, प्राकृतिक घटनाओं और मानव की गतिविधियों के आधार पर पूर्णिमा के चंद्रमा को बहुत से नाम दिए गए हैं। इनकी मदद से खेती की योजना बनाने, मौसम बदलने आदि का एहसास होता है। इन्हीं नामों में ड्राइंग राइस मून यानी चावल सुखाने वाला चांद प्रमुख है। इसी चंद्रमा को फॉलिंग लीव्स मून यानी पत्ते झड़ने वाला चांद, फ्रीजिंग मून, आइस मून यानी कि जमने वाला चांद, बर्फ वाला चांद, माइग्रेटिंग मून यानी कि प्रवासी चांद भी कहा जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की रोचक जानकारियां?

0: तो बच्चों, अभी आप लोग सुन रहे थे रोचक जानकारियाँ जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे आपके विनय भैया। तो भाई रितंद्रा दीदी, अब हम आ जाते हैं वापस अपने स्टूडियो में और देखिए हमारे संग बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथी हमारे चारों ओर बैठे हुए हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, तो क्यों ना सबसे पहले हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दें, उनका नाम जान लें। हाँ, तो उधर जो बैठी है प्यारी सी बिटिया रानी, तो
1: छोटी
0: बेटा
1: सी
0: हाँ छोटी सी है ना, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका मुझे नजर आ रही है, पर तो चलो आप ही सबसे पहले बताओ आपका नाम क्या है।
2: ऐश्वर्या शिशिर त्रिपाठी।
0: अरे वाह ऐश्वर्या, कितने साल की हैं आप?
2: आई एम 8 इयर्स ओल्ड।
0: 8 इयर्स ओल्ड। अच्छा, किस क्लास में बेटा?
2: मैं फोर्थ में हूँ।
0: फोर्थ में हैं आप, और किस स्कूल में?
2: ML कॉन्वेंट करेला बाग।
0: ओके। अच्छा नेक्स्ट वन, आप बेटा आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम यशस्वी शिशिर त्रिपाठी है।
0: हाँ, और किस एज की हैं आप?
3: आई एम 11 इयर्स ओल्ड।
0: 11 इयर्स। और किस स्कूल में हैं?
3: ML कॉन्वेंट करेला बाग प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप दोनों सिस्टर हैं क्या?
3: यस।
0: हाँ अच्छा, और ये हैंडसम बॉय कौन है?
4: मेरा नाम आरुष मिश्रा है।
0: आरुष मिश्रा, वाकई। और आप कहाँ पढ़ते हैं बेटा?
4: मैं सेंट जोसेफ में पढ़ता हूँ।
0: सेंट जोसेफ में विच क्लास?
4: 6।
0: 6। और एक बच्चा और है हमारे पास, आपका क्या नाम है?
5: मेरा नाम है ओम शर्मा।
0: अच्छा, और आप किस स्कूल में हैं?
5: मैं स्कूल में पढ़ता हूँ सेंट जोसेफ कॉलेज कंपनी कंपनी बाग के सामने और मेरी क्लास है 4G।
0: अच्छा, विद एड्रेस ओम ने अपना बता दिया कि वो कहाँ पे
1: पे
0: है
1: रहते हैं, मिल सकते हैं उनसे
0: तो चलिए, यानी कि आज बहुत सारी चीज हमारे पैकेट में है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और गुंजन दीदी, अभी हम भाई नव दुर्गा के रूप की बात कर रहे थे
0: जी,
1: तो मैं चाहूंगी कि ये जो दोनों बच्चे हैं इन्हीं में से कौन गाएगा?
2: यशस्वी।
1: यशस्वी, यशस्वी कोई दुर्गा की स्तुति करे।
0: बिल्कुल, चलिए
1: चलो।
2: आज नवरात्र के प्रथम दिन के शुभ अवसर पर मैं माता रानी की एक सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

0: सुते।
1: भाई सब लोग ताली बजाओ, बहुत ही सुंदर स्तुति थी। और भाई उसके बगल में हमारी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी ऐश्वर्या बैठी हैं। अभी इन्होंने परिचय दिया था, तो ऐश्वर्या क्या सुनाने जा रहे बेटा?
2: आज नवरात्रि के प्रथम दिन के शुभ अवसर पर मैं एक माता रानी का एक सुंदर भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
1: तो सुनाओ।
2: सर्व

0: बहुत सुंदर, डोली में मैया सजी आ रही है, बहुत सुंदर। तो इसी के संग एक बार जयकारा लगा दें क्या? हाँ, सांचे दरबार की जय। अच्छा, अब हम आते हैं आरुष के पास। हाँ आरुष, आप क्या लेके आए हैं आज?
1: आज मैं संस्कृत का श्लोक लेके आया हूँ।
0: अरे वाह, सुनाइए।
1: चलिए शुरू करते हैं अध्याय 18 के श्लोक नंबर 64 से।

हितम, इसका अर्थ है भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। लॉर्ड कृष्णा सेज टू अर्जुन, हियर अगेन माई सुप्रीम सीक्रेट वर्ड, द मोस्ट हिस्टोरिकल ऑफ ऑल ट्रुथ्स, यू आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, देयरफॉर आई शैल ऑफर यू दिस सैल्यूटरी एडवाइस। श्लोक नंबर 65।

पड़ोसी में। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। गिव योर माइंड टू मी, बी डिवोटेड टू मी, वर्शिप मी एंड बो टू मी। डूइंग सो यू विल कम टू मी अलोन, आई ट्रूली प्रॉमिस यू, फॉर यू आर एक्सेप्शनली डियर टू मी। श्लोक नंबर 66। सर्वधर्म

0: सुचः। इसका अर्थ है, संपूर्ण धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। रिजाइनिंग ऑल योर ड्यूटीज टू मी द ऑल पावरफुल एंड ऑल सपोर्टिंग लॉर्ड, टेक रिफ्यूज इन मी अलोन, आई शेल फ्री यू फ्रॉम ऑल सिंस, डोंट वरी।
1: वाह, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने आरुष। और अब हम अपने अगले बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बेटा आपका क्या नाम था?
2: ओम,
1: ओम। आप क्या सुना रहे हैं?
2: आज मैं एक गाना पेश करूंगा आप लोगों के सामने।
1: ठीक है, सुनाइए।
2: साहेबा आए घर काहे ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। साहेबा नींदे वींदे आए ना, राते काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन दिन आता है। साहेबा समुंदर मेरी आंखों में रह गए, हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए। ये पल की गवाही है, हम रातों में रह गए, जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए। बातों बातों में ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू, तेरी तलब मुझको तेरी तलब जाना हो नहीं हुआ रू। शोर शराबा जो सीने में है मेरे, कैसे बयां मैं करूं, हाल जो मेरा है मैं किसे को बताऊं। मेरे साहेबा दिन कराएगा, थोड़ा तो संभालो ना, नाजुक है ये टूट जाता है। थैंक यू।
3: वाह, बहुत सुंदर भाई, सुर में पूरे गाया ओम ने। और अब चूंकि देखो जब स्टूडियो के अंदर सब शांति आ जाती है तो लगता है कि हम ऐश्वर्या की तरफ देखते देखते तो दूसरा कौन सा भजन सुनाने जा रहे हो? हाँ चलो सुनाओ।
4: आज मैं सीता माँ जी का एक बहुत ही सुंदर भजन आप सभी के सामने।

0: तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। बहुत
1: और छोटे छोटे हाथ से जो तपाके लग रहे हैं है ना, तो वो रियाज करती हो तुम?
2: नहीं
1: नहीं करती।
0: अच्छा ऐश्वर्या, आपने कब से इसको बजाना शुरू किया?
2: मैं 3-4 साल की थी, तब मैं अपनी बुआ के आई थी रक्षाबंधन पे। मैंने एक ढोलक रखी थी सामने, मैंने पापा से पूछा पापा ये क्या है, तो पापा ने बताया ये ढोलक है और इसे बजाया जाता है। मैंने कहा मुझे भी बजाना है, तो मैंने बजाया एंड फिर मुझे बुआ ने बर्थडे पे लाके मुझे मेरी ढोलक गिफ्ट कर
1: दी। अरे वाह, देखो किसी ने बताया भी नहीं हाँ। खुद से, ये तो सीधा सीधा गॉड गिफ्टेड है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, माँ सरस्वती जी के आपके ऊपर कृपा है।
1: अच्छा गुंजन दीदी, यशस्वी हमारे बीच कुछ कहें, उससे पहले आरुष जो है कुछ लेकर आए हैं और भी अपने नन्हे मुन्ने साथियों को बताना चाहते हैं, तो आरुष क्या बताने जा रहे हो?
3: आज मैं विश्व छात्र दिवस के बारे में बता

0: बताना चाहता हूँ आपको। विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ये दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलाम सर की 3 बातें मैं हमेशा याद रखता हूँ। सपने देखो, पहला सपने देखो। कलाम सर ने कहा था, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखो, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दे। दूसरा, मेहनत करो। कलाम सर कहते हैं कि कड़ी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। और तीसरा, विनम्र रहो। कलाम सर कहते हैं कि हमसे बड़ों की हमें आदर करनी चाहिए। हर साल छात्र दिवस की एक थीम होती है। इस साल 2026 की थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, अर्थात जन कल्याण, समृद्धि और शांति के लिए शिक्षा। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ 100% लाने के लिए पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई का अर्थ है पीपल, यानी अपनी शिक्षा से दूसरों की मदद करना। प्रॉस्पेरिटी यानी अपने ज्ञान से देश को अमीर और समृद्धि बनाना। और तीसरा, पीस, जिसका अर्थ होता है अपने व्यवहार से समाज में शांति फैलाना। जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद,
2: भाई
1: जय
2: बहुत अच्छी
1: भारत।
2: बात बताई है इन्होंने, है ना। और गुंजन दीदी, आज हमारा जो शब्द ज्ञान है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बता
1: बिल्कुल,
2: दें।
1: आज मैं हिंदी में शब्द लेके आई हूँ बच्चों, समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है कोई ग्रुप, जैसे ग्रुप में या कलेक्शन बोलेंगे, जो एक संग्रह होता है, समूह में किसी चीज़ का आपको दिखना। जैसे बच्चों आपने कहीं देखा होगा, आप कहीं जा रहे हैं और बास्केट में आपको तरह तरह के फल रखे दिखाई दें, उसमें सेब भी है, संतरा है, अमरूद है, तो वो क्या होगा, एक समुच्चय होना, यानी फ्रूट्स का एक पूरा संग्रह होना। ठीक है, यही चीज़ आपके और चीज़ों पर भी लागू होती है कि कहीं पर जैसे अंकों का समुच्चय है। ठीक है, आप कहीं पढ़ रहे हैं और आपने कॉपी में लिखा हुआ देखा, कभी कभी आपने देखा होगा ना, जैसे बुक्स वगैरह के ऊपर पोस्टर होता है, जो एक कवर फोटो होता है, उसमें कई अंक लिखे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के में होता है 1 2 3 4, 1 to 10 या 1 to 100, अलग अलग न्यूमरल्स उसमें लिखा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी, मतलब कई चीज़ों का एक जगह समुच्चय होना, संग्रह होना, इकट्ठा होना। ठीक है, उसमें कोई एक चीज़ पर्टिकुलर नहीं होगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, उसी को बोलते हैं हम हिंदी में समुच्चय। और दूसरा एक वर्ड मैं इंग्लिश का लेके आई हूँ, जो बोलते हैं अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब होता है आपकी उपस्थिति, आप जो एक खुद हैं, वो आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है गुंजन दीदी ऐसी हैं, तो मैं गुंजन को एक डिफाइन कर रही हूँ, मेरी उपस्थिति दिख रही है। गुंजन दीदी के बाल ऐसे हैं, गुंजन दीदी की मतलब उन्होंने ड्रेस ऐसे पहना है। अभी हम जैसे ऐश्वर्य हैं, आरुष हैं, ओम है ना, और एक बच्ची और है यशस्वी। हाँ, तो ये जो हर किसी की अपनी एक उपस्थिति होना, वो आप अकेले में आप हैं, आपकी उपस्थिति किसी को और को नहीं उस पर सर्वाइव कर सकती ना। जैसे ऐश्वर्य है, वो छोटी सी हैं, 4 ईयर्स की हैं, मान लीजिए 8 ईयर्स की हैं, तो हमें पता है कि वो अपने में एक हैं। आपकी उपस्थिति जो दर्शाती है, उसको बोलते हैं अपीरियंस। आपके चाहे वो पहनावे से हो, आपके बोल चाल के ढंग से हो, है ना, आपके खान पान के हो, आपका जो बिहेवियर सामने वाले को आपकी उपस्थिति को दिखा रहा है, आपके प्रेजेंस को एक तरीके से प्रदर्शित कर रहा है, वही होती है आपके अपीरियंस। ठीक है, ये 2 शब्द थे आज की डिक्शनरी में हम लेके आए थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं यशस्वी की तरफ। ठीक है, अब यशस्वी आप क्या सुना रहे हैं आप बच्चा हमें
3: आज नवरात्र के शुभ अवसर पर? मैं माता रानी का एक सुंदर भजन प्रस्तुत कर रही हूं।
1: चलिए

0: सच्ची भी नहीं गाया। और जो है ढोलक बजा रही थी ऐश्वर्या, बहुत सुंदर। और अभी चूंकि हमारे पास टाइम है तो एक मुखड़ा तुम कुछ गा रही थी ना, तो एक मुखड़ा, बस एक मुखड़ा गा दो किसी।
1: हनुमान जी का बहुत चर्चित भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

अरे वाह, बहुत सुंदर। और भाई कुंजन दीदी, इसी के साथ भाई अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो बच्चों से कहते हैं, बच्चों

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। दिन के 12 बजने को हैं समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें

0: पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बा समुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10 और 35 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रविवार को अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। यह कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 बजे सुनिएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 1:15 बजे। कार्यक्रम होगा हेलो अनुरोध। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30 बजे। कलाकार होंगे हरिश्चंद्र हलचल और साथी। ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल लेकर के आएंगे 5:00 बजे। इसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे बाल कहानी भैया समर प्रताप सिंह से। 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी होगा। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम पंचायत घर सुनेंगे 6:30 बजे। इसके अंतर्गत गौरव जैन की वार्ता होगी दुधारू पशुओं की देखभाल एवं गौशाला प्रबंधन। साथ ही हरिश्चंद्र हलचल और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे।

सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर। इसमें हमारे आज के कलाकार होंगे सुरेंद्र कुमार नारंग, इनके स्वर में आप सुनेंगे कुछ भक्ति रचनाएं। अपने पत्रों के, संदेशों के, ईमेल्स के उत्तर सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। प्रसारण होगा रात 8 बजे। खानदानी लोभ, मधुर श्रीवास्तव की लिखी यह झलकी हम आपको सुनवाएंगे। आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:30 बजे। और गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम कहकशां के साथ रात 9:30 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज की शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। नीता यादव पत्नी मुन्नीलाल यादव निवासी सीआरडी थाना हंडिया जनपद प्रयागराज से सूचित करती हैं कि इनकी पुत्री निशा यादव ये 5 सितंबर 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 22 वर्ष है, शरीर की बनावट दुबली पतली है, चेहरा पतला लंबा है, ऊंचाई 4 फीट 8 इंच है, रंग गेहुआ है, बाल काले हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। नीता यादव पत्नी मुन्नीलाल यादव निवासी सीआरडी थाना हंडिया जनपद प्रयागराज। रावतपुर थाना एयरपोर्ट प्रयागराज से मंजू पत्नी भैयालाल भारतीया सूचित करती हैं कि इनकी पुत्री करिश्मा विगत 7 सितंबर 2026 को रात 11 बजे से अपने घर से लापता हैं। लापता की उम्र 16 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है, रंग सांवला है। लापता के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। मंजू पत्नी भैयालाल भारतीया निवासी रावतपुर थाना एयरपोर्ट प्रयागराज। ललिता सिंह पत्नी जीत सिंह निवासी बघला मदनपुर थाना लालापुर प्रयागराज से सूचित करती हैं कि इनके पति जीत सिंह दिनांक 3 मई 2026 से रानीगंज से लापता हैं। लापता की उम्र 38 वर्ष है, मजबूत जिस्म है, चेहरा गोल है, साधारण आंखें हैं, ऊंचाई 5 फीट 5 इंच है, रंग गेहुआ है। घटना के वक्त इन्होंने क्रीम कलर की पैंट और कत्थई रंग की शर्ट पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। ललिता सिंह पत्नी जीत सिंह निवासी बघला मदनपुर थाना लालापुर जनपद प्रयागराज। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1000

अच्छा 20 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग मधुवंती में बांसुरी वादन।

अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग मधुवंती में बांसुरी वादन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

नितिन मुकेश, शब्बीर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में है ये गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म हमसे ना टकराना से।

आइए अब सुनते हैं फिल्म बागवान से गाना। समीर के बोलों को सुर में पिरोया है आदेश श्रीवास्तव ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

लीजिए सुनिए सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाजों में ये गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म सूर्यवंशम से। शब्द रचना शमीर की है और संगीत रचना अनु मलिक की।

अभी आपने ये गाना सुना जिसे हमने लिया था फिल्म नज़र से। आवाज़ श्रेया घोषाल की थी, बोल सईद कादरी के और संगीत अनु मलिक का। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म परदेसी बाबू से गाना। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली तेल शोधन संयंत्र में ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे कामराजर बंदरगाह पर

0: अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रूपये की जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम, थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गांधीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय 130 उम्मीदवार 11 वार्ड की 44 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi arrived in Chennai this morning where he will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees. The Prime Minister held a roadshow en route to the venue of the event at Porur in Chennai where he flagged off the metro rail service from Porur to Ponnamalai. The Prime Minister travelled along with the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay on the metro rail. The 14.5-kilometre metro rail service features a unique 3.7-kilometre double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operation. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over 750 crore rupees, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cantonment, Ambasamudram and Paramakuri and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat Station scheme. Later, Mr. Modi will leave for the IIT Madras campus, where he will dedicate the Sudha Gopalakrishnan Brain Centre and perform Darshan and Puja at Jal Kandeshwarar Shiva Temple.

0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में शिक्षा की उड़ान पहल के तहत स्टडी टेबल और आशीर्वाद खतूत तकसीम करने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में किसी भी बेटी बहन या औरत की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला ने अपने खिताब में कहा,
1: वह समाज जो नारी शक्ति का वंदन और अभिनंदन नहीं कर सकता, वह विकास की बुलंदियों को भी नहीं छू सकता, और इसीलिए बेटी हो, कोई बहन हो, कोई महिला हो, उसकी सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है और उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान उसी क्रम में संचालित हो रहा है। उसका थीम ही है कि महिला की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन, ये तीनों एक साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा।
0: वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि वजीर आजम हाउसिंग स्कीम या चीफ मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत घर हासिल करने वाले किसी भी खानदान को घर के मालिक के नाम पर अदायगी की जाए।

0: जाएगी। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गई हैं। आज सुबह से ही रियासत भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। ब्रह्म मुहूर्त के बाद से अकीदतमंद देवी मां की पूजा कर रहे हैं। लोग अपने घरों में कलश भी नस्ब कर रहे हैं और आज पहले दिन देवी भक्ति की भगवती की पहली शक्ल माता शैल पुत्री की पूजा की जा रही है। मशहूर शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर में कल आधी रात से नवरात्रि मेला शुरू हो गया है। सुबह की कलश की तंसीब और मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, पूरा विंध्या शहर घंटियों और देवी के नारों की आवाज से गूंज उठा। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजा करने के बाद सैरुखी तवाफ मुकम्मल कर रही है। मेले के इलाके को 3 सुपर जोन, 10 जोन्स और 21 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मेले के इंचार्ज हैं। नेपाल की सरहद से मुत्तसिल जिला बलरामपुर में वाकई देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी अकीदतमंदों का एक बहुत बड़ा हुजूम दर्शन और पूजा के लिए जमा हुआ है। बलरामपुर के तुलसीपुर में वाकई देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर कॉम्प्लेक्स देवी माता के नारों से गूंज रहा है। नवरात्रि मेले के लिए सिक्योरिटी और सहूलियात के वसी इंतजाम किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के पहले दिन देवी पाटन मंदिर में पूजा की। वाराणसी में दुर्गा कुंड समेत मुख्तलिफ देवी मंदिरों और अयोध्या में बड़ी काली देवी, छोटी देवकाली, जालपा देवी और पटेश्वरी देवी के मंदिरों में भी अकीदतमंद जमा हो रहे हैं। गोरखपुर जिले में मां त्रिकुला देवी मंदिर और महाराजगंज जिले के अडरामा में लहरा देवी मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से अकीदतमंद पहुंचना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी नवरात्रि के पुरमसरत मौके पर मुल्क और रियासत के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी रियासत के लोगों को नवरात्रि के मौके पर दिली मुबारकबाद दी है। 94वां फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट आज वाराणसी के नमो घाट पर नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए मुंशियात से पाक नौजवान के मौजू पर मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में नौजवान खिलाड़ियों और फिटनेस के शौकीन अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। साइकिल का सफर जो नमो घाट से शुरू हुआ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के इब्तदाई हॉल तक जारी रहा। मरकजी वजीर डॉक्टर मांडविया ने शुरका के साथ साइकिल चलाकर फिटनेस का पैगाम फैलाया और मुंशियात से पाक हिंदुस्तान की तश्कील की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका सफर कौम की खिदमत के अज्म और मुसलसल अवामी खिदमत के जज्बे से मुतासिर है। खिदमत और गुड गवर्नेंस के इस विजन के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ की सिमत काम कर रही है। आज हमारी खसूसी सीरीज में हम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस तरह लोगों की जिंदगियों को बदल रही है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था,
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में LPG गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आज प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का एक साल मुकम्मल हो रहा है। ये स्कीम गुज़िश्ता साल इस दिन शुरू की गई थी, जिसका मकसद मुल्क भर के 100 ख्वाहिशमंद ज़रई इज़ला में ज़रई शोबे को मजबूत करना था। और नॉर्दर्न रेलवे ने ऐलान किया है कि आज तमाम ट्रेनें अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी। रेलवे ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को मनसूख करने का फैसला किया था। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: संगम नगरी प्रयागराज निजी कला बंधुकरा पवन निषाद बोल रहा है मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: डाउन फिल्म का।
0: गाने के बोल बताएं।
1: जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार।
0: जी जी, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान पर फिल्माया हुआ डॉन फिल्म का ये गाना पवन जी ने फरमाइश की है, तो पवन जी सुनवाएं।
1: जी मैम।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ,
0: जी
1: ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: जी हारून जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म है सलामी,
0: जी
1: उसमें से आप पीछा भी चला चला देना।
0: अच्छा, सलामी फिल्म का कोई भी गीत।
1: जी
0: ठीक है, तो आपके लिए हम सुनवाने जा रहे हैं सलामी फिल्म का ये गाना।
2: जी।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अनिरोध और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूं, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी चलिए प्रेम सिंह सिसोदिया जी बताइए कौन सा गाना सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो कौन सा गीत है इसका?
1: इसका टाइटल सुनवा दीजिएगा आप हमें। जी
0: और कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं आजकल?
1: जी अभी खेती किसानी का काम है हमारा।
0: जी जी
1: तो अभी सोयाबीन की फसल लगाई थी हमने, तो उसकी कटाई हो गई है।
0: अच्छा अच्छा कैसी फसल हुई आपकी?
1: इस साल तो काफी अच्छी फसल हुई है
0: जी,
1: लेकिन आपको बताएं बरसात कम हुई है ना।
0: हाँ हाँ
1: तो अगली फसल के लिए हमारे पानी की समस्या पड़ेगी।
0: अच्छा अच्छा चलिए पानी का प्रबंध तो आप लोग कर ही लेंगे।
1: हाँ ट्यूबवेल है, कुएं भी है, लेकिन इतनी सिंचाई पर्याप्त नहीं हो पाएगी जो हर साल होती है।
0: अच्छा अच्छा
1: लेकिन ऐसी कुछ किस्में होती है ना फसलों की।
0: जी जी
1: जिनमें पानी कम लगता है तो उनका चयन करेंगे इस साल हम।
0: जी जी तो जी। अब प्रेम सिंह सिसोदिया जी आपने जिस गीत की फरमाइश की है प्रेम रतन धन पायो, आइए सुनवाएं आपको इस फिल्म का गाना।
1: जी धन्यवाद मधु जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उज्जैन से हमारे एक और श्रोता शामिल हो गए। पहले उज्जैन से एक और श्रोता का फोन आता है हमारे पास, लोकेंद्र वर्मा जी।
1: हाँ जी बिल्कुल दोस्त हैं हमारे।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, मऊटिहवा जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी जी रोशनी जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगी।
1: मैम फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, और गाने के बोल रहे कभी बंधन जुड़ा लिया कभी दामन छुड़ा लिया।
0: तो भाई रोशनी जी की पसंद का ये गाना हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से, आइए सुनते हैं।

0: श्रोता सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैम, नमस्ते, आदाब।
0: नमस्कार जी।
1: मोहम्मद अयूब चिकलिया घरहरा प्रयागराज से आपकी बात कर रहा
0: हूँ। जी अयूब जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है बॉडीगार्ड, 2011 फिल्म आई थी मैम
0: जी,
1: में राहत अली खान, राहत अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में गाना है।
0: जी जी।
1: संगीत हेमेश रेशमिया, तब्बीर अहमद जगीर और गाने के बोल कुछ इस तरह है, तेरी मेरी प्रेम कहानी।
0: अपने समय में ये गाना बहुत हिट हुआ था, काफी बजता था।
1: जी जी, इसमें गाना एक रिंगटोन भी था हमेश रेशमिया का आज का।
0: जी
1: याद नहीं आ रहा, रिंगटोन था बहुत, मोबाइल में प्रसिद्ध रिंगटोन था।
0: जी जी,
1: तो त्यों करके था।
0: तो अभी आपको सुनवा दे आपकी पसंद का गाना।
1: जी हाँ, मित्रों के नाम ले ले।
0: जी जी, ले लीजिए।
1: हमारे राज बहादुर कनौजिया, राम बाबू कनौजिया, मदन कनौजिया है, अंकित कनौजिया, समस्त लिसनर साथ में। आप भी
0: अब आपको सुनवाते हैं बॉडीगार्ड फिल्म का ये गाना, अयूब जी की पसंद है, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: अभिमन्यु।
0: हाँ अभिमन्यु जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम आंदोलन
0: जी,
1: और गाने का बोल है दिल तो खोया है यहीं दे गई।
0: तो अभिमन्यु जी ने आंदोलन फिल्म के इस गाने की फरमाइश की है, तो सुनवा दें आपको गाना।
1: हमारे एक दोस्त भाई हैं,
0: हाँ हाँ,
1: डॉक्टर श्री राम प्रसाद।
0: अच्छा,
1: ग्राम शेरपुर प्रयाग,
0: तो वो भी ये गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी जी, मैं बहुत शौक से सुनते हैं।
0: अच्छा, प्रोग्राम उनको बेहद पसंद है, तो उनसे कहिएगा वो भी फोन लगाएं इस कार्यक्रम में।
1: जी जी मैम।
0: तो अभी आपको सुनवाने जा रहे हैं आंदोलन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: अंजलि मिश्रा
0: जी,
1: दिवरा प्रयागराज से बात कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी। आपका कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे ताल पे जब ये जिंदगानी चले, हम है दीवाने ये कहानी चले।
0: जी जी, इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। आपने जिस गीत की फरमाइश की है, करीना कपूर ने काम किया है।
1: हाँ मैम,
0: तो आप बताइए अंजलि, अपने बारे में भी कुछ बताइए। गीत के लिए तो हम लोगों ने बातें कर ली, अब अपने बारे में कुछ बताइए।
1: बस मैम, मैं हाउस वाइफ है, थोड़ा बहुत लाइक कर, और तो एक मेरी बेटी है, बस का ध्यान है, और घर में सब लोग हैं।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: जैसे मैम टाइम रहता है तो कार्यक्रम मतलब लगा देते हैं, रेडियो अपना बजता रहता है, हम लोग काम करते रहते हैं।
0: तो फिर काम का तो पता ही नहीं चलता होगा, मिनटों में खत्म हो जाता है। गाने आपकी पसंद के अगर बजते रहते हैं तो। चलिए अंजलि जी, आपने जिस गीत की फरमाइश की है उसे हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: Kolkata welcomed the arrival of Goddess Durga with a spectacular celebration at Eden Gardens yesterday. The program Uma Agamoni, organized by the West Bengal government on Mahalay, marked the formal beginning of this year's Durga Puja festivities. Here is a report from a Kolkata correspondent.
1: The beats of Durga Puja drums heralded the arrival of the festive season in Kolkata with the beginning of Devi Pakho. Chief Minister Shubhendu Adhikari formally inaugurated the Durga Puja festivities through the program featuring dance, music, a drone show and fireworks. The highlight was a record-setting gathering of 3,000 dhakis, earning the event a place in the Guinness World Records. A stunning drone display illuminated the sky with an image of Goddess Durga as Mahishasuramurdini. Musical performances by Shantanu Maitra, Shan and the Dohar band added to the celebrations. Tundipan Dashutto, Akashvani News, Kolkata.
0: The India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Tuesday. Similar weather conditions are expected over Andhra Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha and West Rajasthan today. IMD has also said that hot and humid weather conditions is likely at isolated places over coastal Karnataka, Konkan and Goa for the day. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The five-match series is currently level at 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people and uninterrupted internet services. Nepal issues evacuation warnings along Buri Gandaki River after rising water sweep away houses in Gorkha district. And in men's cricket, India to take on West Indies in the third T20 International in Indore this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं।

0: इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
3: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
4: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।

0: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
1: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक है उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
0: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
2: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
3: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्माम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
2: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
4: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
2: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है।

0: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
1: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं हरिश्चंद्र हलचल और साथी। इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये लचारी

यह है पापट हरिश्चंद्र हलचल और साथियों के स्वर में।

0: बचाए प्रयस सामा रहल बलकारी,
1: बचाए प्रयस सामा रहल

अरे मिल के मारे अभिमन के परनवा हमरे दादा हो, मिल के मारे अभिमन के परनवा हमरे दादा हो। अरे बिहु के तोड़ई तोरा सुगन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम और हमारे आज के कलाकार हैं हरिश्चंद्र हलचल और साथी। इनके स्वर में लीजिए सुनिए एक और लाचारी।

0: इस लाचारी के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये निर्गुण। कलाकार हैं हरिश्चंद्र हलचल और साथी।
1: हाय कि जही दिन संधे

इस निर्गुण के साथ ही आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारे आज के कलाकार थे हरिश्चंद्र हलचल और साथी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बच्चे सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल संग।
1: गदेलो जय हिंद।
2: हम कही दुर्गा भैया।
1: हाँ मोहन भैया,
2: हम कही देखा समय भाई अपने चुन्नू मुन्नू के भाई अर्धवार्षिक परीक्षा चलती है।
1: हाँ अर्धवार्षिक परीक्षा चलती बा और देखा तिथि और पर्व भी चलत।
2: बिल्कुल भाई,
1: और देखा रामलीला तैयारी अपने गांव में जोर शोर से हो
2: चलत बाटे। साथे साथे भाई देखा आज तो कितना महत्वपूर्ण दिन बाटे भाई, आज से शारदीय नवरात्र की भाई शुरुआत भी भाई। जब नवरात्रि के पर्व आवत तो भाई देखा जगह जगह पे भाई देखा देवी पूजा पंडाल और इस तरह से जो मेला शुरू हो जाता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जितना भी भाई देखा अपने गांव में भाई ग्राम देवता हैं या फिर देवी मंदिर हैं, देखा सवेरे से भाई एकदम मतलब भी देखा भीड़ लाग पाते और जयकारा के साथ साथ भजन कीर्तन खूब चलता बा।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम कहीं देखा मंदिर में भाई पूजा धर्म आस्था तो भाई एक तरफ है
1: बिल्कुल
2: भाई सबके भाई, लेकिन जब मंदिर में जाएं तो भाई एक चीज़ जरूर वहां पे बढ़ते हैं कि भाई देखा एक वहाँ जो व्यवस्था होता है कि कतारबद्ध ढंग से भाई दर्शन पूजन करें और वहाँ पे भाई साफ सफाई के विशेष ध्यान रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और खास करके जो वहाँ का स्थानीय जो प्रशासन बा मंदिर प्रशासन बा उसका पूरी तरह से भैया सहयोग करें।
1: सहयोग करें
2: तो भाई इस तरह से अगर करी तो भाई देखा चाहे तो उन भी तिथि पर्व बाटे वो महत्वपूर्ण और
1: बिल्कुल। अब मोहन भैया, और जब देवी माँ के बात होती बाटे तो देखा आज एक और प्रमुख दिवस बा विश्व बालिका दिवस कि भाई देखा बिटियन अपने घरे के सान ही और राष्ट्र के भविष्य ही।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और शिक्षित हुई हैं, सुरक्षित रही हैं और आत्मनिर्भर बनी हैं तो निश्चित बाकी भाई देखा परिवार और समाज के विकास बा।
2: ए दुर्गा भैया, हम तक कही भाई देखा अब तो भाई बहुत पुरानी बात होगी। हाँ बिटियन भाई देखा यह समय भाई कहाँ पहुंच गई यहाँ अपने भाई कला कौशल से भाई अपने हुनर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, समय बदला। जब कहा थे ना कि समय बदला और लड़कियन देखा अपन बिटियन पढ़ावे लगे तो देखा कहाँ कौने क्षेत्र में नहीं ना।
2: बिल्कुल भाई, एक चीज और रहा है ना भाई, बहुत पहले कुछ रहा है तरह से भाई देखिए अनुसी लोग मानत रहे कि भाई लड़कियन इतना ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन अब सब लोग ओह विचारधारा से बहुत आगे आ गया है और हम तो कहीं भाई देखा अब उनके भी लिखाई पढ़ाई के लेके चाहे जौन भी चीज़ हो विशेष ध्यान देता है। खास करके भाई देखा सरकार भी देखा बेटियन के आगे ले आओ के खातिर तमाम तरह के भी योजना चला होती है जौन।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी आम चीज़ होते कि भैया अपने बिटियन के भाई स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान के भाई देखा रक्षा कर।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सबसे बड़ी चीज बा। और इतना ही नहीं, उनके आत्मनिर्भर और उनका एक कह सकते कि भैया हर क्षेत्र में आगे बढ़ावे के लिए देखा अब प्रेरित करबा तो निश्चित बा कि हाथ देखा जिसे हर क्षेत्र में नेतृत्व करत यहाँ आगे भी करत रही हैं।
2: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा जैसे कहा ना कि आज विश्व बालिका दिवस बाटे तो भाई एक उद्देश्य है बा, हर वर्ष एक कुछ न कुछ एक उद्देश्य लेके चला जाता तो ए साल के भी कुछ देखा उद्देश्य बाटे आप बताओ तो है भाई।
1: बिल्कुल मोहन भैया, ए साल के जो उद्देश्य बा बाल विवाह समाप्त करें और बाल जितना भी लड़कियन के जो अधिकार बा ओमे निवेश करें।
2: बिल्कुल भाई, तो देखा बहुत ऊंची बात करें जो है, हम कही भाई देखा बाल विवाह एक ऐसी प्रथा रही कि भाई पर समय समय जागरूकता के अभाव में रहा जाना है, लेकिन अब तो भाई
1: अब
2: हम
1: दीरे,
2: तो
1: दीरे
2: समाज से बहुत दूर हो चुका
1: बाटे, हो चुका बाटे।
2: हम तो कहे भाई देखा लोग भी जागरूक हैं भाई बच्चन के अपने स्वास्थ्य के प्रति और जो उनका है ना कि उनका आत्मनिर्भर बना हुआ

0: बिल्कुल, उनके अधिकार के भाई सुरक्षा करें और
1: हम्म,
0: उनका आत्मनिर्भर बनावे के लिए हर वो प्रयास करें, चाहे शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे जैसे भी हो, तो
1: बिल्कुल।
0: वो आगे बढ़िया तो निश्चित बाकी भाई राष्ट्र विकसित हुई।
1: ए दुर्गा भाई, हम तो कहा भाई देखा दिवस के भाई जोन उद्देश्य बा तबे पूरा हो जब हम सब केहू जागरूक रही बराबर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और भाई दिवस का आवश्यकता ही कहे पड़े हम हर दिन भाई, अगर हम अपने पास संकल्प बांटे जौन है कि हम अपने घर के भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सबके एक समान देखे बांटे जौन है उनके विकास करे बांटे,
0: हे
1: तो
0: मोहन बाबू, एक
1: हम
0: चीज और भैया का
1: बताओ भैया।
0: कारण का बात देखा, अगर कोनो लक्ष्य लय के चलत बा, अगर ओका संकल्प कैले हा
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: लक्ष्य पूरा होई, तो ए बिना बिटियन के सुरक्षा और सम्मान के लिए भाई अगर संकल्प लय लीन गया तो निश्चित बाकी लक्ष्य जरूर पूरा होई।
1: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा बात बात कहीं होत रही बोला अपने चुन्नो मुन्नो के लिए देखा जे कहानी बाटे समर प्रताप सिंह के भाई नन्हा पौधा, तो हम कहीं का सुनवाई दिया जाए।
0: सुनवा दें।
2: वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, धरती का अब करो सिंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार, जंगल तरह तरह के पेड़ पौधे व पशु पक्षियों का वास स्थान होते हैं, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और विषैली गैसों की मात्रा को कम करते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं व वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। लगभग 4,000 किस्मों की लकड़ियाँ वनों से प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बिना वृक्षों के सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। पेड़ों से हमें प्राणवायु, फल फूल, औषधियाँ व फर्नीचर बनाने हेतु कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ बदले में थोड़ी सेवा मांगते हैं। पेड़ हमसे लेते कुछ नहीं अपितु देते बहुत कुछ हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता सर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सन 1972 में एक नारा दिया, लकड़ी पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। पर्यावरण की इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है नन्हा पौधा। अरावली की पहाड़ियों में अमरावती राज्य अपने धन धान्य व शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। राज्य की प्रजा राजा शक्ति सिंह से अतीव प्रेम करती थी। वह अपने राजा के लिए अपने प्राणों तक का भी न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा को संतान की तरह प्रेम करते थे, अर्थात यथा राजा तथा प्रजा। सभी राज्यवासियों का जीवन खुशहाल व आनंदमय था। राजा शक्ति सिंह शिकार के शौकीन थे। शिकार हेतु अपने अस्तबल में बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे। इन्हीं घोड़ों में से बादल राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था। वह बहुत ही समझदार व स्वामी भक्त था। चलने फिरने में हवा से बातें करता था। एक दिन राजा अपने प्रिय घोड़े बादल व कुछ सैनिकों को लेकर शिकार हेतु सुंदरवन की ओर गए। नगर से दूर निकलते ही आसमान में काले काले बादल घुमड़ने लगे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक जोर का तूफान आ गया। राजा के सैनिक राजा से बिछड़ गए। राजा बारिश से बचने के लिए घने जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे रुक गया। तभी जोर से बिजली कड़की व हवा के तेज झोंके से पेड़ की एक डाली टूटकर राजा व बादल पर आ गिरी। राजा तो किसी तरह बच गए, किंतु बादल ने दम तोड़ दिया। अपनी पीड़ा से ज़्यादा राजा को बादल की मौत की पीड़ा थी। किसी तरह राजा अपनी महल पहुँचे, वह बुरी तरह से थक गए थे तथा बादल की मौत के सदमे में आकर सुंदरवन के सभी पौधों को काटने का आदेश दे डाला। राज आज्ञानुसार सेनापति सैनिकों को लेकर सुंदरवन को गए और आम, जामुन, पीपल, बरगद, नीम व बांस जैसे बड़े बड़े वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदरवन पेड़ विहीन हो गया।

0: गर्मी के दिन थे, सर्दी में जो सूरज दिखाई देने से डरता था, वही गर्मियों के दिन में छाती ताने सामने आ खड़ा होता है। जंगल में तोते, गौरैया, चील, मोर, टिटहरी, हिरन, शेर, चीता, बाघ व हाथी पेड़ कटने के कारण त्राहि त्राहि कर रहे थे। सभी पशु पक्षी आश्रय व छाया की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। इधर कुछ वर्षों से पड़ोसी राज्य शिवगढ़ का राजा दुर्जन सिंह से अमरावती का सुख देखा न गया। वह अमरावती राज्य पर हमला कर दिया। राज्य के बहादुर सिपाही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे। सप्ताह भर युद्ध चलता रहा, किंतु तभी अमरावती राज्य का सेनापति माधव सिंह अपने देश के लिए वीरगति प्राप्त कर ली। अगले दिन युद्ध का संचालन राजा शक्ति सिंह स्वयं करने लगे। राजा को बादल की कमी खल रही थी। तभी सेना में अचानक खलबली मच गई कि शक्ति सिंह मारे गए। राज्य की सेना भाग खड़ी हुई। राजा की मौत से प्रजा में भगदड़ मच गई। वह सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी जान बचाने हेतु राजा सुंदरवन की ओर भागे, किंतु यह क्या, यहाँ तो सब कुछ वीरान हो चुका था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। भागते भागते राजा का घोड़ा भी अब दम तोड़ चुका था। अब राजा पैदल ही कुछ और आगे की ओर भागा। तभी उसे एक नन्हा पौधा हवा में लहराते हुए दिखाई दिया, जो पेड़ कट जाने से, नई कोपले फूटने से जना था। राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह नन्हा पौधा राजा को अपनी ओर बुला रहा हो। राजा लड़खड़ाते हुए पौधे के पास गया और उसकी नन्ही नन्ही कोपलों में छिप गया। नन्हा पौधा भी राजा को अपनी गोद में ऐसा छिपा लिया जैसे संकट आने पर माँ अपने बालक को गोद में छिपा लेती है। शिवगढ़ राज्य के सिपाही आए, इधर उधर खोजे, किंतु राजा को न पा सके। वे बेरंग वापस लौट आए। अंधेरा होते ही राजा नन्हे पौधे को धन्यवाद देते हुए अपने राज्य को पहुंचा। वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहा था। सभी प्रजावासी अगली सुबह अपने प्रिय राजा को देख हर्षित हुए। राजा ने सभी प्रजावासियों से अपील की कि सुंदरवन को फिर से हरा भरा बनाया जाए। कहानी का सार यह है कि राजा की जान नन्हे पौधे के कारण ही बची, अर्थात वृक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हमारी मदद करते हैं। अतः बच्चों, अब हम लोगों को भी यह प्रण लेना है कि वर्ष 2025 में हम लोग एक पेड़ माँ के नाम से लगाएंगे। किसी पर्यावरणविद ने सच ही कहा है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाओ देश बचाओ, जय हिंद।
1: हाँ दुर्गा भैया, हम कहीं देखा समय प्रताप भाई कितनी बढ़िया कहानी बताए, जो नहा पेड़ पौधा का लेके जो नहा जीव जंतु से पूरा जुड़ा रहा जो नहा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और सीख ले के चाहिए।
1: बिल्कुल, अपने चुन्नु मुन्नु के ऐसे भाई सीख ले चाहिए। साथे साथे जब देखा भैया सीख ले के बात आवत है ना, तो बहुत से ऐसे सामाजिक पहलू वहाँ जेका अभिन से भाई चुन्नु मुन्नु को अगर सिखावा जाए तो एक बेहतर समाज के निर्माण की जाए,
2: निर्माण करा थे।
1: भाई देखा अपने घर में जे भी बड़े बुजुर्ग हैं, हम कही भाई देखा कोनो भी सलाह देता है, कुछ भी दिशा निर्देश अगर देता है
2: ओके पालन जरूर।
1: बिल्कुल भैया, ओकर पालन करें जो ना है, साथे साथे जो ना है भाई एक दूसरे से सम्मान वाली जो बात भी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, देखा जात बाटे कि एक समय जो भाई बदलते युग में जो ना है कि चुन्नू मुन्नू भी जो ना है भाई अपने मोबाइल फोन इस तरह से जो ना व्यस्त हो जाता है
2: हाँ।
1: तो हट के अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। हम तो कहीं

0: समय होत बाटे चुन्नु मुन्नु से विदा लेके फिर से मिला जाई
1: लड़कनो जय हिंद।
2: बच्चे सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल गोपाल, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
4: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

0: या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी प्रयागराज के अपने प्रिय कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या, और आज मेरे साथ हैं
1: मिथिलेश।
0: उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जीवन की इस खूबसूरत यात्रा में अपने हिस्से की खुशियां तलाश रहे होंगे।
1: नमस्कार दिव्या, और नमस्कार हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को। आज का दिन है, आज का ये समय और आज की हमारी बातचीत कुछ विशेष है। चारों ओर शारदीय नवरात्र की छटा दिखाई दे रही है। कहीं मंदिरों में कहीं घंटियों की गूंज है, कहीं माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां हैं, कहीं घरों में पूजा की सुगंध तो कहीं गरबा और डांडिया की धुनों पर झूमने के लिए युवा तैयार है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जिस पर हमें थोड़ा ठहर कर विचार करना चाहिए। आखिर हम नवरात्र मनाते क्यों हैं? देवी की आराधना का हमारे जीवन में क्या अर्थ है?
0: बिल्कुल मिथिलेश, त्योहारों की खूबसूरती केवल सजावट, नए कपड़े, नए पकवान, उत्सवों में से नहीं होती है। उसकी असली खूबसूरती उन विचारों में होती है जिन्हें वे हमारे जीवन में लेकर आते हैं। नवरात्र भी एक ऐसा ही पर्व है जो हमें शक्ति, एहसास, आत्मविश्वास, अनुशासन और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। और देखिए, हमारे यहाँ शक्ति को केवल एक अमूर्त विचार नहीं माना गया, बल्कि उसे माँ के रूप में अनुभव किया गया है। माँ दुर्गा का स्वरूप हमें बताता है कि शक्ति का अर्थ केवल बलवान होना नहीं होता, शक्ति का अर्थ अन्याय के सामने खड़े होना भी है, किसी निर्बल का सहारा बनना भी है, अपने भीतर के भय से लड़ना भी है, और आवश्यक पड़ने पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा दिव्या, और नवरात्र का यह पर्व हमें भारतीय संस्कृति के उस विचार से भी जोड़

0: देवता है जिसमें प्रकृति, सृजन और मातृत्व को विशेष सम्मान दिया गया है। माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों में हम जीवन के अलग अलग गुणों को देखते हैं। कहीं शैलपुत्री की स्थिरता है, कहीं ब्रह्मचारिणी की तपस्या, कहीं चंद्रघटा का साहस, कहीं कुष्मांडा की सृजनात्मक ऊर्जा, कहीं स्कंद माता का वात्सल्य, कहीं कात्यायनी का पराक्रम, कहीं कालरात्रि का निर्भीक रूप, कहीं महागौरी की शांति और कहीं सिद्धधात्री की पूर्णता। इन नौ स्वरूपों को केवल पूजा के नौ दिनों तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। अगर हम चाहें तो इन्हें अपने जीवन के नौ महत्वपूर्ण गुणों के रूप में भी समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल, कल्पना कीजिए, अगर हम शैलपुत्री से दृढ़ता, ब्रह्मचारिणी से धैर्य, चंद्रघंटा से निर्भीकता और कालरात्रि से अन्याय का सामना करने की प्रेरणा ले, तो नवरात्र हमारे लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहेंगे बल्कि आत्म विकास की एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। नौ दिनों तक हम माँ के सामने दीपक जलाते हैं, उनके सामने पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अपने भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए हमें एक दीपक जलाना चाहिए? वह दीपक हो सकता है किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प, किसी जरूरतमंद की मदद करने का निर्णय, अपने माता पिता के प्रति आभार या अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई शुरुआत।
0: वाह, कितनी अच्छी बात कही दिव्या तुमने। और नवरात्र में उपवास रखने की परंपरा को भी इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। बहुत से लोग व्रत के माध्यम से संयम साधना और आत्मानुशासन का अभ्यास करते हैं। पूजा पाठ हमें अपने मन को एकाग्र करने का अवसर देता है। हालांकि हर व्यक्ति की श्रद्धा और पूजा की विधि अलग हो सकती है, लेकिन इस पर्व का एक साझा संदेश है, अपने भीतर सकारात्मकता को स्थान देना और अपने आचरण को बेहतर बनाना। और दिव्या, मुझे लगता है कि आज के युवाओं के लिए संदेश बहुत प्रासंगिक है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां तुलना, प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का दबाव और भविष्य को लेकर चिंता हमारे मन को लगातार प्रभावित करते हैं। ऐसे में नवरात्र हमें याद दिलाता है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना भी एक साधन है।
1: बिल्कुल मिथिलेश, कई बार हम अपनी क्षमताओं को दूसरों की उपलब्धियों के तराजू से तौलने लगते हैं। हमें लगता है सामने वाला हमसे आगे निकल गया है तो शायद हम पीछे रह गए, लेकिन माँ दुर्गा का स्वरूप हमें एक अलग ही बात सिखाता है। अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए और कठिन परिस्थितियों से घबरा कर पीछे मत हटिए। देवी के हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। कहीं ज्ञान हमारा अस्त्र है, कहीं धैर्य और विवेक हमारे लिए एक साहस है, कहीं हमें यही हमारे अस्त्र शस्त्र के रूप में हमारे सामने है।
0: और जब हम देवी की पूजा की बात करते हैं तो स्त्री के महत्व पर चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ नारी को देवी का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन दिव्या, क्या नारी का सम्मान केवल पूजा के समय होना चाहिए?
1: नहीं।
0: क्या हम नवरात्र में कन्या पूजन करें और बाकी दिनों में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता और उनके निर्णय लेने के अधिकारों को भूल जाएं? शायद इस पर्व की आत्मा हमें ऐसे करने की अनुमति नहीं देती।
1: बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है कि यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देवी की आराधना का एक गहरा सामाजिक अर्थ भी है दोस्तों। यदि हम माँ दुर्गा की शक्ति को प्रणाम करते हैं तो हमें अपने आसपास की हर स्त्री की गरिमा का भी सम्मान करना आना चाहिए। बेटी को पढ़ाने का अवसर देना चाहिए, उसकी इच्छाओं को सुनना होगा, उसके सपनों को गंभीरता से लेना होगा, उसे सुरक्षित वातावरण देना होगा और अपनी पहचान उसे स्वयं बनाने देना होगा। ये भी शक्ति की आराधना का एक व्यवहारिक रूप ही है दोस्तों। स्त्री केवल किसी की बेटी, पत्नी, माँ या किसी रिश्ते में बंधी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपने आप के लिए एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। उसे अपने सपने पूरे करना होगा, अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और उसे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी स्वयं ही है।
0: सही बात, और याद भी रखना चाहिए कि शक्ति का अर्थ हमेशा कठोर होना नहीं है। करुणा भी शक्ति है, क्षमा भी शक्ति है, किसी की बात धैर्य से सुनना भी शक्ति है, और टूटते हुए इंसान को फिर से उठने का हौसला देना भी शक्ति है। माँ दुर्गा के स्वरूप हमें ममता और पराक्रम दोनों दिखाई देते हैं। यही तो जीवन का संतुलन है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोमलता और जहाँ आवश्यक हो वहाँ दृढ़ता।
1: और दोस्तों, जैसे कि हमारे नवरात्रि के सीजन में पंडाल सज चुके हैं, देवी की प्रतिमाएं वहां

सज चुकी हैं और वहाँ पे संगीत, ढोल, नगाड़े, ढाक बजना शुरू हो गए हैं। तो इस खूबसूरत वातावरण में देवी को पूजिए, ध्याइए और इतने सुंदर माहौल को एंजॉय कीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है हमारे फेस्टिव सीजन भी शुरू हो जाता है। इसके साथ एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि जब आप इन त्योहारों को एंजॉय कर रहे हो तो अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि प्रकृति भी हमारी माँ है, उसका भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अपने आसपास कचरा ना फैलाएं, अपने आसपास की बेटियों को इन नवरात्रि के सीजन में ही नहीं बल्कि हर सीजन में सुरक्षित महसूस कराएं और इस फेस्टिव सीजन को खूब एंजॉय करें।

0: हम तो श्रोताओं, इस गीत के बाद हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी खूबसूरत यात्रा, अपनी दूसरी चर्चा के साथ।
1: बिल्कुल दिव्या, क्योंकि अभी शारदीय नवरात्र का समय है और इसी सप्ताह 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि नवरात्र में देवी की विभिन्न स्वरूपों की आराधना और बालिका दिवस की चर्चा दोनों को एक साथ समझना बहुत अर्थपूर्ण है। एक ओर हमें शक्ति का सम्मान करते हैं, दूसरी ओर हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज की हर बेटी को अपनी शक्ति पहचानने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत क्यों हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का संकल्प स्वीकार किया। वर्ष 2012 में ये दिवस मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य केवल बेटियों के प्रति प्रेम व्यक्त करना नहीं था, बल्कि उन समस्याओं पर ध्यान देना भी ज़रूरी था। दुनिया को उस तरफ ले जाने की भी ज़रूरत थी जहां बेटियों का सम्मान, उनके किशोरावस्था, उनके बचपन को समझ

0: समझना और उनके समस्याएं जो है, उनके सामने जितनी समस्याएं रख दी गई हैं उनको सॉर्ट आउट करना भी है।
1: और यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है दिव्या, बालिका दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता है कि लड़कियाँ किसी से कम हैं और उन्हें विशेष रूप से सक्षम बनाना पड़ेगा। ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि क्योंकि हर लड़की में क्षमता होती है, लेकिन कई बार सामाजिक परिस्थितियाँ उसे आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं देती हैं।
0: बिल्कुल सही। किसी भी बच्चे का भविष्य उसके जन्म से तय नहीं होता दोस्तों, उसे समान अवसर मिलना चाहिए, उसे अपनी रुचि पहचानने, सीखने, असफल होने, सफल प्रयास करने और अपनी पहचान बनाने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। और श्रोताओं, इस वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है एंड चाइल्ड मैरिज एंड इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अर्थात बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकार में निवेश करें। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ने इस वर्ष बाल विवाह रोकने, लड़कियों की शिक्षा जारी रखने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया है।
1: दोस्तों, ये थीम अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बाल विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये एक लड़की के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कम उम्र में विवाह होने पर कई लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, उनके सामने कम उम्र में ही वयस्क जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उनसे पास अपने जीवन के फैसले लेने का अवसर सीमित हो सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि बाल विवाह को रोकने के लिए केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। परिवारों को जागरूक करना, बेटियों की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करना और समाज की सोच में सकारात्मकता बदलाव लाना भी उतना ही आवश्यक है।
0: बिल्कुल। और इस दिशा में काम करने वाले लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, यूनेस्को, सरकारें, स्थानीय प्रशासन, विद्यालय, सामाजिक संगठन, महिला समूह, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय इसके प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या केवल संस्थाएं और संस्थान जो हैं वही ये सब काम करती रहेंगी?
1: नहीं,
0: नहीं, बल्कि बदलाव शुरुआत हमें अपने घर से भी करना होगा। जब माता पिता बेटे और बेटी दोनों को समान शिक्षा देने के ओर महत्व देंगे, जब शिक्षक किसी छात्रा को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जब भाई अपनी बहन के निर्णयों का सम्मान करना शुरू करेगा, जब समाज किसी लड़की की सफलता को सहज रूप से स्वीकार करेगा, तब वास्तविक रूप में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा।
1: और ये बदलाव केवल लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें लड़कों को भी बचपन से सिखाना चाहिए कि सम्मान किसी एहसान का नाम नहीं है, बल्कि हर इंसान का अधिकार है। घर के कामों में भागीदारी, सहमति का महत्व, समान अवसर, दूसरों की गरिमा का सम्मान, ये बातें केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना चाहिए। जब एक लड़का अपनी बहन को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होता है, जब तक किसी वह किसी मित्र के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध करता है, तब वह भी समानता की दिशा में योगदान देता है।
0: बहुत सही कहा आपने। और जब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की कि आखिर ये आखिर मनाया क्यों जाता है, आखिर इसके क्या महत्व है, आखिर इस पे क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, इस दिन कई देशों में जागरूकता कार्यक्रम, विद्यालयों में विशेष चर्चाएं, बालिकाओं के अधिकारों पर कार्यशालाएं, नेतृत्व से जुड़े कार्यक्रम, संवाद शास्त्र और सामुदायिक अभियानों की ओर भी ध्यान दिया जाता है। और दोस्तों, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पहल का उद्देश्य भी बालिका के महत्व के प्रति जागरूक करना, लोगों को उनके प्रति अनुकूल वातावरण तैयार करना। इसके साथ बाल विवाह निषेध कानून और बाल संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि किसी भी योजना की सफलता इस बात से तय की जाती है कि वहाँ के आसपास के लोग भी उसे उतना महत्व दे रहे हों, अपनी बच्चियों को फलने फूलने और समान अवसर देने की ओर काम कर रहे हों।
1: बिल्कुल,
0: तो दोस्तों, ये थी बाल दिवस के ऊपर बालिका दिवस के ऊपर हमारी विशेष चर्चा। और हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और लाइट अप करते हैं और लेके चलते हैं आपको अगले म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास वार्ता। वार्ता का विषय है नवरात्रि का महत्व और वार्ताकार हैं दिव्या श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं।
2: नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। रामनवमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन श्री राम जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह घरों और मंदिरों में श्री राम जी की पूजन और अर्चना की जाती है, झांकियां भी सजाई जाती हैं। इस दिन सभी भक्तजन अपना चैत्र नवरात्रि का उपवास दोपहर 12 बजे पूरा करते हैं। घरों में खीर, पूरी, हलवा का भोग बनाया जाता है, कन्या खिलाई जाती हैं, रामस्रोत, रामबाण आदि का पाठ होता है। वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में श्री राम और सीता माँ का पवित्र विवाह मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी, जिसे विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है,

को हुआ था। यह त्योहार 9 दिन मनाया जाता है और इसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। 9वां दिन धूमधाम से मनाकर रामनवमी के त्योहार का अंत होता है, जिसमें अखंड पाठ भी किया जाता है, जो कि 9 दिन रामचरितमानस के वर्णित अलग अलग पाठों को अंतिम दिन रामनवमी तक पढ़ा और सुना जाता है। इस अखंड पाठ के दौरान भजन कीर्तन तथा प्रसाद का वितरण भी होता है, जो कि पूजा और आरती के बाद 9 दिनों के अखंड पाठ की संपूर्णता को प्रदर्शित कर भगवान राम की अलौकिक और दिव्य ऊर्जा को घर में तथा हमारे चारों ओर सकारात्मकता फैलाकर और मन के अंधकार को दूर कर श्री राम की भक्ति की ओर प्रेरित करती है तथा जीवन में शक्ति और शांति का संचार करती है। रामनवमी के इस पावन पर्व के दिन भगवान राम जी की बाल्यकाल की मूर्ति को सजाकर पालने में रखा जाता है तथा सभी भक्तगण पूरी श्रद्धा भाव से पालने को झुलाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली भगवान राम के जीवन कथा से जुड़े हैं। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनके गुरु महामुनि वशिष्ठ जी थे। श्री राम जी की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी माँ का अवतार मानी जाती है। राम जी के पुत्रों का नाम था लव और कुश। राम जी की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। भगवान राम में वे सभी गुण थे जो धर्म में बताए गए हैं। श्री राम वैदिक सनातन धर्म की ज्ञान और आत्मा है। वेदों को मानने वाले श्री राम की परम भक्त हैं। श्री राम जी के जन्म का समय त्रेता युग कहा जाता है। चारों भाई गुरुकुल में रहकर वेदों उपनिषदों के ज्ञाता बन गए थे। गुरुकुल में अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों का उनमें संचार हुआ। अपने अच्छे गुणों और ज्ञान प्राप्त की ललक से वे सभी अपने गुरु के प्रिय बन गए। श्री रामचंद्र प्राचीन भारत में अवतरित भगवान माने जाते हैं। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें हैं। राम जी का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने भी भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। विशेषता, उत्तर भारत में राम अधिक पूजनीय हैं। रामचंद्र हिंदुओं के आदर्श पुरुष हैं। राम जी के गुणगान मात्र से ही जीवों का उद्धार संभव है। संतों का कहना है कि प्रभु श्री राम की भक्ति में कपट दिखावा नहीं, आंतरिक भक्ति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार ज्ञान और वैराग्य प्रभु को पाने का उचित मार्ग नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति से श्री राम जी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उनके अनुसार भक्ति जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितनी स्वादिष्ट भोजन में नमक। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। अर्थात नमक के बिना उत्तम व्यंजन स्वादहीन है। उसी तरह प्रभु के चरणों की भक्ति के बिना जीवन की सुख समृद्धि सभी फीके हैं। श्री राम जी का जन्म दिन में हुआ था, इसलिए सभी मंदिरों में सुंदर सजावट करके मंदिरों के पट देर रात तक खुले रहते हैं और लोग परिवार सहित दर्शन पूजन अर्चन करके स्वयं को धन्य करते हैं। यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम जी की 109 मंदिरों की मूर्तियों के दर्शन करने से भगवान श्री राम भक्त की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। श्री राम जी का अवतार असुर सम्राट लंकापति रावण से इस धरती को बचाने के लिए हुआ था। रावण को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवी देवता के हाथों नहीं मर सकता। अतः भगवान विष्णु मानव रूप में इस धरा पर अवतरित हुए और असुरों का संहार कर धरती को पाप मुक्त किया। कहते हैं जब धरा पर बुराई का भार अच्छाई से अधिक होता है, तब भगवान स्वयं धरती पर आकर धरती को संतुलित करते हैं और मनुष्य जाति का उद्धार करते हैं। कहा गया है, जब जब होई धर्म की हानि
बाढ़ ही असुर महाअभिमानी।

0: तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। उसी तरह जब धरती पर रावण राक्षसी ताड़का जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया, तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने राम सीता के रूप में धरती पर जन्म लिया और असुरों के संहार के साथ मानव जीवन और प्रजापालक की मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री राम जी का परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिनकी परंपरा प्राण जाए पर वचन न जाए की थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी ने कैकेयी रानी को वरदान देने का वचन दिया था, जिसका निर्वहन उन्होंने प्राणों को त्याग करके किया। राम न्यायप्रिय थे एवं उन्होंने अच्छा शासन किया, इसलिए आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। वास्तव में भगवान राम ने पुरुष चरित्र को चरितार्थ किया था। उन्होंने कर्म धर्म को जीवन का आधार बनाया। राम नवमी प्रतिवर्ष हमें यह सीख देती है कि हमें भी भगवान श्री राम के सद्गुणों का अनुकरण करना चाहिए, जिससे जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो सके, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सके। जिनके सुंदर नाम को हृदय में बसा लेने मात्र से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, जिनके समान कोई दूजा नाम नहीं है, जिनके स्मरण मात्र से सारे संकट मिट जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राम नाम उर मैं गहियो, जाके सम नहीं कोई, जिस सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारे होई।
1: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थी दिव्या श्रीवास्तव और वार्ता का विषय था नवरात्रि का महत्व। दोस्तों, अपने कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं संदेश।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: तो श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, और हमारा अगला सेगमेंट है प्रेरणा पुंज, जहां हम बात करते हैं उन महान व्यक्तित्वों की जिनका जीवन हमें कुछ नया सीखने, बेहतर बनने और अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। आज के हमारे प्रेरणा पुंज हैं एक ऐसे संत जिन्हें हम जीवन में प्रेम, भक्ति, करुणा और धार्मिक सद्भाव के लिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की।
1: दोस्तों, इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कमारपुकुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बचपन से ही उनका मन धार्मिक कथाओं, भक्ति संगीत और आध्यात्मिक चिंतन में लगता था। ये केवल परंपराओं को जानने में ही रुचि नहीं रखते, बल्कि उनके पीछे छिपे अनुभव और सत्य को समझना चाहते थे। आगे चलकर दक्षिणेश्वर से काली में मंदिर उनकी साधना ने उन्हें एक विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान दी,
4: और माँ काली के प्रति उनकी भक्ति अत्यंत गहरी थी। उनके लिए केवल भक्ति पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि मन की सच्ची पुकार थी। वे ईश्वर को जानने के साथ साथ उन्हें अपने अनुभव में महसूस करना चाहते थे। उनका जीवन हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारी आस्था केवल शब्दों और अनुष्ठानों तक सीमित है, या फिर हमारे व्यवहारों में भी दिखाई देती है। क्योंकि यदि अगर हमारी आस्था जो है वो सच्ची है, अधिक दयालु, विनम्र और संवेदनशील हमें बनाती है, तभी उसका वास्तविक महत्व हमारे जीवन पे दिखाई देता है।
1: रामकृष्ण परमहंस के विचारों की एक विशेषता धार्मिक सद्भाव थी। उनके जीवन वृत्तांतों के अनुसार उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं की साधनाओं का अनुभव किया और अलग अलग मार्गों के प्रति सम्मान का भाव विकसित किया। उनके विचारों का प्रसिद्ध सार है, जतो मत ततो पथ, अर्थात जितने मत उतने मार्ग।
4: इस विचार का संदेश हमें ये भी सिखाता है कि मनुष्य अपनी आस्था पर चलते हुए भी दूसरों की आस्था का सम्मान कर सकता है। आज का समय हमें ये भी सिखाता है कि जब हम जो छोटी छोटी बातों पर मतभेद कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं,

0: देते हैं, तब यह विचार हमें संवाद, सहिष्णुता और आपसी सम्मान का महत्व सिखाता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में हम ये भी सीख सकते हैं, उनको देख के हम ये भी पढ़ उनके पढ़ के हम ये भी जान सकते हैं कि ज्ञान का महत्व तभी है जब जीवन में उसका हम अनुसरण करते हैं। केवल करुणा पर बातें करना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी आवश्यक है। केवल सत्य की प्रशंसा करना पर्याप्त नहीं है, उसकी परिस्थितियों में सत्य को देखना भी जरूरी है।
1: उनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में जन्मे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से गहराई से प्रभावित हुए। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण के विचारों को व्यापक रूप दिया और इसी परंपरा से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन ने आध्यात्मिक साधना के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत कार्य और समाज कल्याण को भी महत्व दिया। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक प्रेरणा उनके शिष्यों के माध्यम से सेवा और मानव कल्याण के कार्यों में भी दिखाई दी। उनका जीवन हमें बताता है कि आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी एक दूसरे से अलग नहीं है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग देना और अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना भी समाज को बेहतर बनाने के रास्ते हैं।
0: और आज के युवाओं के लिए रामकृष्ण परमहंस का जीवन कई रूप से महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। पहला, जिज्ञासु बनते रहिए और सीखने की इच्छा कभी पर्याप्त नहीं होती है, उसको समाप्त होने मत दीजिए। दूसरा, अपने विचारों पर विश्वास रखते हुए दूसरों के दृष्टिकोण का भी सम्मान कीजिए। और तीसरा, अपने भीतर प्रेम तथा करुणा को जीवित रखिए। जीवन में सफलता प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन सफलता की दौड़ में अपने संवेदनशीलता को खो देना उचित नहीं। हमें कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात तो है, लेकिन उस यात्रा में हमें कितने अच्छे इंसान मिले, हमें उनका महत्व भी नहीं भूलना चाहिए।
1: बिल्कुल, रामकृष्ण परमहंस का जीवन 16 अगस्त 1886 को समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी आध्यात्मिकता, धार्मिक सद्भाव और मानवता पर चिंतन करने की प्रेरणा देते हैं। इनका जीवन हमें याद दिलाता है, सच्ची महानता केवल प्रसिद्ध या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर विनम्रता, प्रेम और संवेदना को बनाए रखने में भी है।
0: तो दोस्तों, आज नवरात्रि के इस पावन पर्व में हमने आपको नवरात्रि के महत्व को, बालिका दिवस के विशेष महत्व को और रामकृष्ण परमहंस जैसे प्रेरणादायी जीवन स्रोत जिन्होंने हमें इतने सारी चीज़ों को सिखाया, इनके परिचय से हम आपको परिचित करवाए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो समाप्ति की ओर एक बार जाए, उससे पहले एक म्यूजिकल यू टर्न तो लेना बनता है।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। इस नवरात्रि हम बस देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे आसपास संपन्नता, सुखता और सभी तरीके के विकारों का नाश करके संपन्नता को हर ओर बिखरा दें। देवी के आने से हमारा मन और हमारा समाज दोनों ही खुश हो जाए। इसी के साथ हम आपको बस यही बोलेंगे कि आप फीडबैक दें।
3: दोस्तों yuvvaniald@gmail.com पर।
2: और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। मैं दिव्या द्विवेदी
3: और मैं मिथिलेश यादव
2: लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का प्रयास।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अक्वेजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अक्वेजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है।

0: भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे हरिश्चंद्र हलचल और साथियों से लोकगीत और गौरव जैन की वार्ता, दुधारू पशुओं की देखभाल एवं गौशाला प्रबंधन। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुरेंद्र कुमार नारंग से भजन सुनिएगा। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी आई है। प्रतिभागी होंगी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर। 8:15 बजे चित्रपट संगीत। 8:30 पर आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे मधुर श्रीवास्तव की लिखी झलकी खानदानी लोभ। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, अब हम आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर डी एस चौहान से की गई बातचीत, कृषि अपशिष्टों का सही उपयोग। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर गुलाब सोनी से की गई बातचीत सुनिएगा, अल्जाइमर्स एक जानकारी। 7:00 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन। दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर पंडित प्रेम कुमार मलिक का ख्याल गायन। सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे सुबह 9:50 पर मनीषा निर्खी और शाम 7:45 पर अरुण गुलवाड़ी। कल दिन में 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर छाया मिश्रा न्यूट्रिशियन से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। 10:30 पर लोकगीत सुनिएगा राम कृपाल, विनीता तिवारी, राम सिंह पटेल और साथियों के स्वर में। 11:00 एक ही कलाकार कार्यक्रम आधारित होगा गीतकार निदा फाजली पर। 11:30 सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कल दिन में 12:30 पर प्रोग्राम होगा आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी डॉक्टर बी पॉल थेलियत से की गई बातचीत, स्तन कैंसर कारण लक्षण और उपचार। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5:00 नन्ही दुनिया कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने सुनेंगे आओ जाने ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। 5:15 युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे न्यूट्रिशनिस्ट और व्यावसायिक जिम ट्रेनर महावीर प्रताप सिंह से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, विषय होगा न्यूट्रिशन, जिम और हमारी जीवन शैली। कल शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे राम कृपाल यादव और साथियों से लोकगीत और डॉक्टर सुनील चंद्रा की वार्ता, रबी की फसल हेतु आवश्यक कृषि कार्य और KV पांडे से लोकभाषा कविता पाठ। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत अंजनी कुमार सिंह की वार्ता सुनिएगा अमृतलाल नागर का साहित्यिक संसार। 8:00 फिल्म संगीत, 8:30 सबरस और 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर

अभी आप सुन रहे थे देश गान। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सत्यम शुक्ला सूचित करते हैं कि इनके पिता अनिल कुमार शुक्ला, पुत्र रामजी शुक्ला, 7 जुलाई 2026 से ग्राम तिसेन तोलापुर थाना मांडा प्रयागराज से लापता हैं। इनकी उम्र 42 वर्ष, लंबाई 5 फीट 10 इंच, रंग गेहुआ। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 7388592422। नंबर एक बार फिर से सुन लें 7388592422। एक और सूचना सुनिए। सुरेश विश्वकर्मा सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री सन्नू, उम्र 14 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा, आंखें काली हैं। ये 18 अगस्त 2026 से ग्राम पूरे बैजनाथ गींज थाना 12 प्रयागराज से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने सफ़ेद रंग की कुर्ती व काले रंग का ट्राउज़र पहन रखा था। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8546020678। नंबर एक बार फिर से सुन लें 8546020678। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: हम कहे दुर्गा भैया,
0: राम
1: हम कहे भाई, पूरे भाई पंचायत घर कार्यक्रम की तरफ से सब किसान भाइयन के भाई नवरात्रि की बहुत बहुत
0: शुभकामना
1: भैया। हम कहे भाई, देखा आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत
0: हो गई बा,
1: और साथे साथे भैया यही के साथे जौन भाई पूरा अपन मेला तिथि पर वहाँ जौन है उनकर भी बहुत एक धूमधाम से ये उत्सव जौन है, जगह जगह भाई देखा दुर्गा पूजा पंडाल सजा है जौन है, और चारि तरफ पूरी आस्था भाव से भाई हम कही देवी मंदिर में भाई लोग दर्शन पूजन करता है। तो हम कही भाई देखा, एक साथे साथे अपन सब भाई देखा किसान में नहीं, खेती किसानी के अलावा और भी ऐसा काम है जैसे कही के भाई चार पैसा के आर्थिक जौन है ओकर
0: आमदनी बढ़ा सके।
1: बिल्कुल,
0: और यह बिना चार पैसा के आमदनी चाहिए कि भाई देखा कि अब जरूरत बढ़त बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा भाई, हम कहब कि देखा भाई अपन देश के जो भाई प्रधानमंत्री हैं उनका भी सपना है कि अपन किसान भाइयों की जो आय बा वो दुगनी हो,
0: दुगनी हो और आर्थिक रूप से इतना
1: समृद्ध
0: हो कि जो छोटी छोटी भी आवश्यकता है और संघर्ष होत बा उसे वो दूर हो सके।
1: बिल्कुल, तो ओके लाइक के भाई तमाम तरह के देखा योजना समय समय पर भाई चलाई जाती जो है भाई।

0: चाहे अनाज के उत्पादन में जो सब्सिडी मिलत हो भैया, चाहे खाद पानी को हो और चाहे बाग बागवानी को हो भैया,
1: हाँ
0: हाँ।
1: हाँ कोनो प्रकार के भाई
0: और
1: उनका
0: साथे
1: आर्थिक
0: साथे
1: सहायता दे के।
0: बिल्कुल ओके साथे साथे देखा आजकल भाई दौर कृषि विविधीकरण के बाटे, तो भाई विविधीकरण में देखा कृषि क्षेत्र तो ऐसा बा वहाँ बहुत सारी चीज़ शामिल की गई बाटे भाई, चाहे बाग बागवानी होए, पशुपालन होए और भाई तमाम तरह के काम है, हाँ। तो भाई जे भी किसान भाई पशुपालन करता है तो भाई उनके पशुओं के देखभाल के खातिर जो ना है तमाम तरह के कार्यक्रम चलाया जाता है, हाँ। अब भाई समय समय पे देखा पशुओं में तरह तरह के देखा रोग भी सुनाई पड़ा था, तो ऐसे रोगन के नियंत्रण के लिए जो ना है कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
1: बिल्कुल समय समय पे भैया। और आप तो इतना सब कुछ भाई घरे द्वारे तक भी देखा डॉक्टर उपलब्ध
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: बिल्कुल हम कहे भाई देखा सचल दस्ता जो बनाओ गवर्नर भैया, और भाई पशुअन के भाई देखा जैसे थनैला रोग है, खुरपका रोग है, मुँहपका आम तरह के जो बीमारी यहाँ है उनके जो ना है भाई जो भी उनका बीजाणु जनित बीमारी यहाँ है उनके नियंत्रण के खातिर जो ना है तमाम तरह के जो टीकाकरण है ओका कीन जात बटे, खास करके भाई देखा जब बारिश के समय से जब थोड़ा सा बीत जाता है या बारिश से पहले या गर्मी के समय में अलग अलग तरह के पशुओं के बीमारी होते
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उनके नियंत्रण के खातिर भाई समय समय पे टीकाकरण कार्यक्रम
1: और
0: चलाओ जाए।
1: मौसम ही नहीं भैया, देखा है कि जीवन बा पशुअन के भी जीवन बाटे, समय समय पे तनिक अगर देख रेख में कमी भाई या कुछ भी हो तो तनिक रोग बेरामी घेर लेता है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: भाई जाहिर सी बात है कि ओका बराबर देखे रहे पड़े।
0: असा एक बात यह कहा ना भैया कि भाई अब तो भाई इतना ज़्यादा सुविधा बढ़ी बाटे भाई, अपने भाई पंचायत स्तर पे भी पशुओं के लिए भी जौन टीकाकरण की व्यवस्था बाटे, खास साथे साथे उनके दरवाजे तक की भी व्यवस्था बाटे। जागरूकता बात ये बा कि किसान भाई एक के लिए जागरूक रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और डेयरी नहीं भैया, गैया भैंसी अगर अपन रखे आए उन्हों सबके लिए बा, जय जय भाई बकरी पालन करे
0: बिल्कुल
1: हैं
0: भाई देख कहा ना कि भेड़ बकरी
1: हाँ
0: जो
1: जो
0: पालन करे हैं तमाम तरह से, गाय भैंस तक ही नहीं सीमित बा भैया, हम तो कही भैया देखा तमाम तरह के भाई यहाँ एमा भाई बकरी है, भेड़ है और भी जो पालन है।
1: तो मोहन भैया आप बताएं कि सर, लेकिन इलाज तो बा, लेकिन वो सबसे पहले जरूरत बात है कि हम जहाँ उनका रख रखाव करते ही वो बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा हो।
0: बिल्कुल भाई देखा रोग नियंत्रण के माने यही बाटे भाई कि भाई नियंत्रण तभी हो जब उसे पहले सावधानी बरती जाए जो,
1: बढ़ती जाए
0: हाँ भाई टीकाकरण फिर शुरुआत में यही बिना किया जाता है कि इनका रोग न लग पावे जो,
1: रोग न लग
0: हाँ।
1: पावे।
0: और साथे साथे जैसे कहा ना कि भाई जहाँ उनका रखा जाता बाटे पशुपालन के गौशाला बाटे या जहाँ भी उनके रहे की व्यवस्था बा वो कम से कम अच्छी हो जाए जो।
1: अच्छी हो चाहिए। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज बा वह आहार, संतुलित आहार, व्यवस्थित आहार अगर उनका नियमित दिन जाए तो कहा के हम कही थी, चाहे मनई हो चाहे भैया देखा
0: जानवर
1: गोरू
0: हो।
1: बछेरू, डॉक्टर के जरूरत ना पड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई जो कहा ना भाई कि समय समय पर आहार भाई देखा कोनो भी चीज़ के जब अभियान चलावा जाते हैं तो हम सिर्फ इतने तक नहीं शामिल बाटे कि भाई जाए के टीकाकरण कर दिया जाए, दवाई दिया जाए, समय बताए दिया
1: अब खान पान नहीं ठीक बात है
0: जाए,
1: तो फिर
0: बिल्कुल
1: गड़बड़ाई जाए फिर।
0: बिल्कुल ओके लिए भाई चिकित्सक भैया अरे जो है ना सब तरह के भाई उनका सलाह देते हैं, साथे साथे अब तक तो अभी देखा पत्थर के भी बहुत बांटा जाता है कि समय पे अपने पशुओं के कौन सा चारा पानी दे भाई, उनका ताज़ा पानी दे, खान पान के विशेष ख्याल रखा, कहे से भाई अगर आपके पशु बीमार होत बाटे तो भाई उसे आर्थिक नुकसान तो है ही बाटे, साथे साथे हमको देखा दूसरी तरह से भी परेशानी शुरू हो जाती है भाई।
1: परेशानी शुरू हो जाते तो जेबस पैसा जाते, दूसरी चीज़ बाटे कि जौन भाई जेके लिए रखे चार चार पैसा दूध बेच के आमदनी होती बे वहू से गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई वही कहते हैं ना भाई आर्थिक क्षति ज़्यादा होता है जो ना है, तो भाई ये चीज़ न हो पावे एक के बिना भाई जागरूक रहा जो ना है भाई, पहले से भाई उनका टीकाकरण कराए ला ताकि उनका भाई जिस तरह के बीमारी बाटे समय समय पर जो फैलत है वो न हो पावे
1: ओसे
0: उनके।
1: ओसे बिल्कुल बचा जाए। कहा ना कि सावधानी बांटे तो देखा हर बीमारी से बचा जा सकत
0: अच्छा भैया एक बात और कहब हम कि भाई पशुपालन विभाग चाहे अपन बाटे जो ना तो समय समय पे एक एक दो दो महीना के विधिवत ढंग से भाई एकर अभियान चलावत है और साथे साथे ऐसे सब जेके जेके भाई जानवर रखे हैं जहाँ टीकाकरण हो जात बाटे ओका बिल्कुल चिन्हित भी हो जात है।

0: एक माध्यम से जो है कि कितना पशु के टीकाकरण हो गया बा, कितना नहीं बा, इस सारे जौन प्रक्रिया बाटे पशुपालन विभाग भैया समय समय पे करत है। हम कही भाई देखा बात बात कही तो होत रही। आज भाई जब पशुओं की जब बात आवत है ना, तो आज है पर ठीक वार्ता बाटे भैया है, दुधारू पशुओं की देखभाल उनकर गौशाला प्रबंधन पे गौरवजन से वार्ता सुना जाए। बोला हम कही भाई देखा पहले अपन किसान भाई के गीत गौनई से स्वागत की जाए, तो हरिश्चंद हलचल और संघातिन के गाय भाई कहा बाबा अब सुना जाए।
1: अरे पिया परदेश तकाई घरवा में बैठाई।

0: हाँ भैया, हम कहीं देखा कितना बढ़िया पिया परदेस भाई, कहरवा हरिशन हलचर और संघातिन के भ जाऊना है।
1: देखा रे तू भाई ठीक खूब झूमत रहे।
0: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा खेती किसानी से कई के आदमी जब यहाँ तक से संगीत के धुन होते तो भाई थकाई तो दूर हो जाता जाऊना है। और हम एक बात ये कहा भैया, हम कहे भाई खेती के काम अब पहले जैसे नहीं रह गया।
1: बिल्कुल बदल गया बात है। काहे से अब खेती में आ गया बस तकनीक।
0: बिल्कुल भैया, कही गया हमके भाई, एक समय रहा कि भाई आदमी बोत हाँ बैल से जुताई होत बाटे तो भाई समय लागत रहा काफ़ी जौन है, और काफ़ी उमा भाई बीच में अगर मौसम को तल बितल हो गया तो भाई खेती के काम पिछड़ जाता रहा जौन।
1: पिछड़ जात रहा और काहे से मेहनत ज्यादा रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो हम कही भाई अब आज वो दौर रहा है कि भाई कृषि यंत्र के माध्यम से कोनो भी काम बहुत आसानी से और जल्दी से किन जा सकत बाटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: भाई हम कही भाई आप चाहे जुताई के देख ले, मड़ाई के देख ले जो ना है।
1: अरे सबसे भैया निराई गुड़ाई के भी यंत्र बा।
0: बिल्कुल भाई, हम कही देखा अब तो एक बात यह कहा भाई, हम कही देखा अब तो खादव डाव के खातिर जो ना है यंत्र आई यहाँ है, हाँ ड्रोन के माध्यम से भाई।
1: अब देखा दवा वो जौन भाई दवा के छिड़काव वो कई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो भाई देखा कृषि यंत्रीकरण भाई एक समय के भाई एक आवश्यकता रही जौन है कि भाई समय समय पर जब बदलाव होता जौन है तो निश्चय रूप से उसका क्रांतिकारी परिवर्तन जौन है
1: बिल्कुल
0: आवत,
1: बिल्कुल
0: और सरकार भी इस पर बहुत ही मतलब भाई फोक केंद्रित है कि अपने किसान भाई जौन है जो कृषि यंत्र हैं उसे साजो साज रहें कि भाई उनका जो खेती के काम बहुत जल्दी से पूर्ण हो सके।
1: जल्दी देखा समय बची और ज्यादा से ज्यादा काम हुई तो ओके फायदा मिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम कहे भाई हर तरह के जो कृषि यंत्र आवत हैं तो उनका तरह तरह की योजना के माध्यम से वहाँ छूट प्रदान की जाती बाटे भाई, चाहे कल्टीवेटर ले के बाटे, चाहे मशीन ले के, कोनो भी तरह के यंत्र ले के बाटे, तो वहाँ सरकार अलग अलग योजना के माध्यम से छूट प्रदान करत है।
1: अरे भैया आप तो बहुत वैसे लग रहा कि आटा के चक्की पहले लागत रहा या
0: बिल्कुल
1: फिर तेल पेरावे वाला
0: बिल्कुल,
1: पहला तो ओमे कह रहा कि अब जौन बात छोट छोट मशीन आ गई बा
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई,
1: भैया घर में ओका इस्तेमाल कर सकत हैं और साथे साथे ओका दो चार 10 घरे 50 अगर चाह तो पैकेट बना के बेचू सकत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम कहे भाई देखा जाता है कि भाई मान लीजिए चाहे अभी समय धान का सीजन बा, अब भाई धान का कटाई करे के बाटे तो 10 ठे आदमी की व्यवस्था करे का है, हाँ
1: हाँ
0: तो भाई ओके लिए भाई समय भी ज़्यादा लागत रहा, फिर उनके भाई मनई के तलाशा, आजकल तो भाई जानते ही हैं कि सब चीज़ दौर बदला बा, लोग भाई हर केहू के पास अपन काम आए, हाँ तो ऐसे में भाई कटाई के भी जो मशीन आई यहाँ है, हम कहे भाई एक व्यक्ति से ओके लई के अपन पूरा खेत काट लेता है जो ना।
1: बिल्कुल अब बिल्कुल कम समय में
0: बिल्कुल भाई, यही तो भाई बात यह है ना कि भाई कितना पैसा के बचत हो सकता है, समय के बचत हो
1: बिल्कुल
0: सकता
1: घंटा
0: है।
1: 2 घंटा में सब निपट जात बा।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से कृषि यंत्रीकरण तो भाई हम कहीं अपने खेती किसानी के लिए वरदान है, और वैज्ञानिक भैया अरे निरंतर भाई नया नया शोध करते हैं कि भाई कौन कौन सा नया उपकरण बनाया जाए जिससे अपने किसान भाई के जो कार्य है वो और आसानी से हो सके।
1: आसानी से हो सके ना पहले के तुलना करवा तो भैया देखा सरसों पहले ओका तोड़ा फिर ले जा फिर उस है कि नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप खेतन में सब लग जाए
0: बिल्कुल
1: लगाए
0: बिल्कुल,
1: मशीन आप ले ले।
0: हम कहे भाई मशीन लेके गया कटाई करे खातिर भाई आपके अनाज एक तरफ होता भूसा एक तरफ होत
1: भूसा एक
0: बाटे,
1: तरफ हो
0: तो
1: जात
0: निश्चय
1: बाटे।
0: रूप से भाई देखा ये बहुत बड़ा परिवर्तन हटे कृषि क्षेत्र में जो ना। अब एक के लिए भाई देखा सरकार की तरफ जो भी योजना चल रही बाटे समय हर भाई सीजन में भाई कृषि यंत्र ले के खातिर।

0: जौन आए टोकन निकाला जात है। और वहाँ होत है कि भाई जो किसान पहले जागरूक हुई वही पही पहले
1: बिल्कुल
0: आओ पहले पाओ कुछ भाई कुछ योजना में, तो भाई लॉटरी सिस्टम भी बाटे तो, लेकिन ओके खातिर जरूरी बाटे कि भाई किसान भाई ओके लिए जाए के अपन पंजीकरण पहले करावे, तब वो भाई ओके लिए वो लाभ पाए सकत हैं जौन।
1: ए समय तो भैया कहा जाता है कि हर चीज़ें कृषि यंत्र में जरूरी बा, लेकिन जौन हिसाब से भैया सौर ऊर्जा और या फिर देखा स्प्रिंकलर वाला जो सिंचाई के व्यवस्था बा, वो तो किसान भैया हरे के लिए अपने सभी के लिए बहुत फायदेमंद है।
0: बिल्कुल भाई, हम कहीं भाई देखा जैसे सौर ऊर्जा की बात करें तो भाई पहले ये रहा कि भाई बिजली के इंतजार के इंजात पर या नहर के भाई कहूँ पानी के देखा जो नहर में पानी बा कि नहीं बाटे, और रात बिरात भाई मान ला आए तो भाई वहाँ तमाम तरह के परेशानी रहता था रात में सिंचाई करे में। हाँ तो अब का है भाई सौर ऊर्जा से भाई उजाला भाई, और भाई सौर के माध्यम से आपके जो
1: अब दिने
0: सिंचाई
1: दिन सब काम हो
0: दिने दिन
1: गए।
0: सारा काम हो जात बाटे। और साथ ही साथ एक बात यह कहे ना कि भाई एक साथे साथे जो स्प्रिंकलर वाला भाई, तो भाई ऐसे तो सिंचाई के तो भाई पैसों भी बचत भाई हमारा, और साथे साथे पानी के भी बचत हो भाई।
1: पानी के भी
0: और
1: बचत।
0: दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये बाटे कि पौधा के जितना पानी की आवश्यकता बाटे वो पूर्ति होती बाटे, तो यही तो महत्वपूर्ण बात कि भाई जो क्रांतिकारी युग बाटे ऐसे मशीनीकरण के, कि किसान भाइन के कम से कम लागत आवे और उनको बचत अच्छी मिले, तो भाई कृषि यंत्रीकरण के यही उद्देश्य रहा जो ना।
1: बिल्कुल सुविधा, अगर उनका सुविधा मिली चाहे तकनीकी के माध्यम से मिली तो निश्चित बाकी वो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए और अच्छा गुणवत्तापूर्ण जौन भी बाटे फसल उत्पादन करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो हम कहे भाई देखा चर्चा होत रही मुला, हम कही एक वार्ता बाटे दुधारू पशुओं के भाई देखभाल और गौशाला के प्रबंधन पे गौरव जैन के, तो और सुना दिया जाए।
1: सुनवा दो।
2: दुधारू पशुओं की देखभाल एवं प्रबंधन। दुधारू पशुओं से मतलब है कि जो पशु दूध देने वाले होते हैं और उनके दूध का उत्पादन 3 से 4 लीटर प्रतिदिन से ज़्यादा अर्थात 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होता है, दुधारू पशु की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि किसान भाइयों हम दूध को एक संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखते हैं और उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और सभी पोषक तत्व दूध में पशु शरीर से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए किसान भाइयों हमारा फर्ज बनता है कि हम दुधारू पशुओं को पोषक तत्वों की पूर्ति उनके दूध उत्पादन के दौरान उनको उनके भोजन के द्वारा पूर्ति करते रहें ताकि पशु का स्वास्थ्य बना रहे एवं उसके उत्पादन पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, वरना पशु कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए किसान भाइयों दुधारू पशुओं को ब्याने से 2 से 3 माह पूर्व ही दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय में वो दुग्ध काल के दौरान हुए पोषक तत्वों की हानि की पूर्ति करता है एवं अगले ब्यांत में पूर्ण दूध का उत्पादन करने के लिए उनकी पूर्ति करता है। दूध के माध्यम से सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस का नुकसान होता है, इसलिए पशु को ब्याते समय मिल्क फीवर यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है और बच्चा देने के बाद खड़ा नहीं हो पाता है और बैठ जाता है, इसलिए पशु को ब्याने से पूर्व ही सुखाना आवश्यक होता है ताकि अगले ब्यांत के लिए वह तैयार हो सके एवं कोई कमी ना हो। किसान भाइयों अधिकांशतः पशु ऐसे हो तो ब्याने से पूर्व ही सूख जाते हैं, परंतु कुछ पशु अधिक लंबे समय तक या ब्याने के समय तक या बच्चा देते समय तक दूध देते रहते हैं, तो किसान भाइयों हमें इन पशुओं का ब्याने से 2 से 3 माह पूर्व ही दूध निकालना बंद कर देना चाहिए ताकि वो उस समय में अगले ब्यांत के लिए सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। पशुओं को सुखाने के लिए हम कई प्रकार की विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अपूर्ण दोहन अर्थात उस पशु का पूरा दूध न निकालकर कुछ ही दूध निकालते हैं और कुछ समय पश्चात हम धीरे धीरे वो भी बंद कर देते हैं, तथा दूसरी विधि में हम पशु का एक ही समय दूध निकालते हैं और कुछ दिन पश्चात हम वो भी बंद कर देते हैं, या कभी कभी हम किसी किसी दुधारू पशु का एकदम से दूध निकालना बंद कर देते हैं जिससे कि पशु में दूध बनना बंद हो जाता है और पशु सूख जाता है। दुधारू पशुओं के प्रबंधन। किसान भाइयों दुधारू पशुओं का प्रबंधन हो या कृषि प्रबंधन या किसी भी व्यवसाय का प्रबंधन ही उस व्यवसाय का मुख्य कारक होता है जो कि उस व्यवसाय या डेयरी फार्म की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि प्रबंधन जितना सही होगा हमारा व्यवसाय भी उतना ही सही होगा और हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी राज्य और केंद्र सरकारें भी पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं एवं समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती रहती हैं, क्योंकि किसान भाइयों डेयरी और कृषि व्यवसाय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं। अगर किसान भाई कृषि व्यवसाय के साथ साथ पशुपालन को भी सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं और उनका रखरखाव एवं प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो वे निश्चित तौर पर ही अपनी दोगुनी आय प्राप्त कर सकते हैं एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सकते हैं। डेयरी व्यवसाय में किसान भाई प्रमुखतया निम्न प्रकार से अपना प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन, बीमारी का प्रबंधन, स्वच्छ दूध का उत्पादन, स्वच्छ पीने के लिए पानी की व्यवस्था एवं पशुओं के प्रति व्यवहार एवं विनम्रता का व्यवहार। आहार प्रबंधन, आहार प्रबंधन ही पशुपालन व्यवसाय की रीढ़ होती है। और किसान भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डेयरी व्यवसाय में होने वाले खर्च का लगभग 70% खर्च सिर्फ और सिर्फ आहार प्रबंधन पर ही होता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें दुधारू पशुओं को हमेशा एक प्रकार का निश्चित अनुपात में बना हुआ संतुलित आहार ही प्रदान करना चाहिए, ताकि हम पशु द्वारा अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करा सकें एवं लाभ प्राप्त कर सकें। संतुलित आहार, जैसे संतुलित आहार वह आहार होता है जो पशु को पशु के प्रतिदिन की या उसके 24 घंटे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस आहार में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण एवं विटामिन्स आदि सभी उपलब्ध होते हैं। हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे सूखा चारा, जिन चारों में नमी की मात्रा 10-15% होती है, यह सूखे चारों की श्रेणी में आते हैं। इनमें गेहूं का भूसा, धान का पुआल, जई का चारा, सुडान घास, ज्वार, बाजरा एवं मक्का की कड़वी आदि आते हैं। अगर हम इन चारों को पानी में कुछ देर भिगोकर पशु को खिलाते हैं तो इससे इन चारों की पौष्टिकता एवं पचनीयता बढ़ जाती है तथा पशु भी इनको रुचिपूर्वक खाते हैं। हरा चारा, जिन चारों में नमी की मात्रा 50-60% या उससे अधिक होती है, इनको हम हरा चारा या रसीला चारा कहते हैं। पशुओं के लिए हरा चारा 2 प्रकार का होता है, फलीदार हरे मोटे चारे जिनमें रिजका, बरसीम, लोबिया, गवार आदि फसलें आती हैं, तथा बेफलीदार मोटे हरे चारे जिनमें ज्वार की चरी, मक्का की चरी, बाजरा की चरी, जई का हरा चारा, सेंजी, गिनी घास, अंजन घास तथा गन्ने का अगोला आदि आते हैं। हरे चारों के लिए किसान भाइयों को इस प्रकार से खेती करना चाहिए कि वे पशु को वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करा सकें, तथा किसान भाइयों को अपनी भूमि का 10-15% भाग पर हरा चारा उगाना चाहिए, ताकि वे वर्ष भर हरा चारा प्राप्त कर सकें। दाना वह खाद्य पदार्थ होता है जिनमें एक या एक से अधिक खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जैसे चोकर, चूरी, खली, बिनौला, खनिज लवणों का मिश्रण आदि। चारों की तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं। इनके द्वारा जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, मिनरल्स, वसा की पूर्ति होती है, जो पशुओं के उत्पादन कार्यों जैसे बढ़वार, दुग्ध उत्पादन, गर्भ विकास एवं प्रजनन आदि कार्यों में सहायक होते हैं। दानों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अधिक प्रोटीन युक्त दाने और अधिक ऊर्जा देने वाले दाने। जिन दानों में प्रोटीन की मात्रा 18% से अधिक होती है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तैलीय बीज तथा खलियां, रक्त चूर्ण, मांस की छिलन, अलसी की खल, सरसों की खल, बिनौले की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, सूरजमुखी की खल आदि आते हैं। तथा जिन दानों में प्रोटीन की मात्रा 18% से भी कम होती है, इस वर्ग में आते हैं। इन दानों में अधिकांश जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, जो चावल की पॉलिश, चोकर, चुनी, चना, किनकी, गुड़ तथा सिरा आदि आते हैं। किसान भाइयों, हमें पशुओं के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि पशुओं के लिए स्वच्छ एवं साफ और प्रदूषण रहित पानी आवश्यक होता है, क्योंकि पानी पशु की सभी क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। जैसे दूध के अंदर 87% तक पानी होता है, जबकि भ्रूण के अंदर यह 95% तक होता है, और बच्चे के जन्म के पश्चात उसमें यह 5-6 माह तक 68-72% होता है, और जन्म के समय 75-80% होता है तक पानी होता है, तथा वयस्क पशु में यह 55-60% तक पानी पाया जाता है। तथा किसान भाइयों, पशुओं को 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए भी 1.8 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी अगर हम पशुओं को पानी की मात्रा में अगर परिवर्तन कर देते हैं, जिससे पशुओं को 20-30% पानी अगर उनकी शरीर में कमी हो जाती है, तो उससे पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए किसान भाइयों, हमें पशुओं के लिए हमेशा साफ एवं स्वच्छ पानी की उपलब्धता करनी चाहिए तथा उन्हें साफ पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी पीने से भी पशुओं को कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। आवास प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि पशु के रहने का स्थान हमें इस प्रकार से बनाना चाहिए कि उसमें पशु को रहने का पर्याप्त स्थान प्राप्त हो सके, तथा पशु बाड़ा हमेशा पक्का बनाना चाहिए, अन्यथा बाड़े का फर्श तो पक्का ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें हमेशा ऊंचे स्थान का चुनाव करना चाहिए, ताकि बाड़े में कभी भी जल भराव की समस्या पैदा न हो सके, पानी की निकासी में कभी कोई समस्या न आए एवं उसकी साफ सफाई आसानीपूर्वक की जा सके। पशु बाड़ा हमेशा साफ एवं सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि फर्श के पक्के होने से वहाँ पर गंदगी कम फैलती है और मक्खी मच्छर को पैदा होने से रोका जा सकता है, कीटाणु या बैक्टीरिया आदि को भी रोका जा सकता है। इनके द्वारा होने वाली बीमारियों से भी पशुओं को बचाया जा सकता है एवं बीमारियों के ऊपर होने वाले खर्च से भी हम बच सकते हैं। पशु बाड़े को हमें सभी प्रकार के मौसम से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए, ताकि पशु के स्वास्थ्य पर कोई बुरा

प्रभाव न पड़े। पशु बाड़ा पशु को गर्मी में तेज धूप लू आदि से बचाने वाला होना चाहिए तथा गर्मियों में उसको छाया प्रदान करने वाला होना चाहिए। पशु बाड़ा सर्दियों में पशुओं को सर्दी से बचाव एवं सर्दियों से बचाव वाला होना चाहिए। पशु का जो पशु बाड़े का फर्श हमेशा खुरदरा होना चाहिए ताकि पशु कभी भी फिसल कर गिरे ना और उसको चोट ना लग सके। पशु बाड़े में हमें हमेशा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि दीवारों में जो हमारे बैक्टीरिया एवं जीवाणु होते हैं उनको उनकी ग्रोथ रोकी जा सके एवं उनकी वृद्धि रोकी जा सके। किसान भाइयों, हमें होने वाली जू चिचड़ी किलिली आदि को भी नष्ट करते रहना चाहिए। प्रजनन प्रबंधन, किसान भाइयों प्रजनन प्रबंधन के हम अंतर्गत हम पशुओं को गाभिन कराने पर ध्यान देते हैं क्योंकि दुधारू पशुओं को लगभग 12 से 15 माह के प्रत्येक अंतराल पर एक बच्चा देते रहना चाहिए क्योंकि प्रत्येक दुधारू पशु को बच्चा देने के बाद 45 से 60 दिन के बाद हिट पर आ जाते हैं और उस समय वे गाभिन नहीं हो पाते हैं तो वह पुनः 21 दिन बाद हिट पर आते हैं और हमें फिर से अगली बार गाभिन करा देना चाहिए। अगर इस बार भी वह गाभिन नहीं हो पाते हैं तो हमें पशु चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए तथा उपचार कराना चाहिए ताकि वह अगली बार हिट पर आए तो वह अवश्य गाभिन हो जाए। इस प्रकार से पशु बच्चा देने के

0: प्रत्येक दुधारू पशु को बच्चा देने के बाद 45 से 60 दिन के बाद हिट पर आ जाते हैं और उस समय वे गाभिन नहीं हो पाते हैं तो वह पुनः 21 दिन बाद हिट पर आते हैं और हमें फिर से अगली बार गाभिन करा देना चाहिए। अगर इस बार भी वे गाभिन नहीं हो पाते हैं तो हमें पशु चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए तथा उपचार कराना चाहिए ताकि वह अगली बार हिट पर आए तो वह अवश्य गाभिन हो जाए। इस प्रकार से पशु बच्चा देने के 3 से 4 माह पश्चात अवश्य गाभिन हो जानी चाहिए तथा उसके पश्चात वह 5 से 6 माह तक लगातार दूध देती रहती है तथा उसके दो बाद हमें उसको 2 से 3 माह तक सूखा रखना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से लगभग 14 से 15 माह के अंतराल पर उसको बच्चा देते रहना चाहिए। लेकिन सामान्यतः किसान भाइयों हम देखते हैं कि पशु 18 से 20 माह तक या 20 से 24 माह तक का समय दो बच्चों के समय में ले लेता है जिससे पशुपालक भाइयों को आर्थिक तौर पर नुकसान होता रहता है। पशुपालक भाइयों हमें पशुपालन व्यवसाय में बीमारियों का प्रबंधन भी अवश्य आना चाहिए ताकि हमें मौसम के अनुसार लगने वाली बीमारियों से उनका हम प्रबंधन कर सकें एवं अनावश्यक खर्चे से हम बच सकें। जैसे कि अभी बरसात चल रहा है, बरसात के मौसम में हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचना चाहिए जैसे खुरपका मुँहपका आदि बीमारियाँ होती रहती हैं, हमें समय समय पर उनका टीकाकरण अवश्य कराते रहना चाहिए। किसान भाइयों हमें पशुओं को 3 से 6 माह के अंतराल पर उनको डिवॉर्मिंग कराते रहने चाहिए ताकि उनके पेट में अगर किसी प्रकार के कीड़े हैं तो उन्हें समय पर मरते रहें और पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। किसान भाइयों हमें अपने डेयरी भवनों में 5% वाले फिनाइल के घोल का भी प्रयोग करना चाहिए। हम दीवारों पर पुताई करते समय हमें उसमें चूने में कार्बोलिक एसिड मिला लेनी चाहिए ताकि दीवारों में होने वाली विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया एवं किल्ली का हम रोकथाम कर सकें। किसान भाइयों हमें स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाने चाहिए जैसे कि हमें दूध निकालने से 2 से 3 घंटे पूर्व ही खुरैरा कर देना चाहिए ताकि पशु के शरीर की गंदगी या तथा शरीर के जो बाल होते हैं दूध में ना गिर पाएं एवं पशुशाला में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जहाँ पर हम दूध निकालते हैं वहाँ पर हम पशु के आसपास किसी भी प्रकार का गोबर भूसा पुआल अन्य प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूध निकालने से पहले हमें शुरू की कुछ धारें अलग बर्तन में निकाल लेनी चाहिए क्योंकि पशु के जो शुरू की 3 से 4 धारें होती हैं उनमें सर्वाधिक बैक्टीरिया होता है और जो हमारे दूध की गुणवत्ता को समाप्त करता है। तथा पशुपालक भाइयों हमें दूध निकालने से पहले पशुपालक को अपने सिर को ढक लेना चाहिए तथा ताकि उसके सिर के बाल दूध में न गिर पाए एवं पशुपालक को दूध निकालते समय गुटखा पान मसाला बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए तथा पशुपालक के हाथ साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए एवं उसके नाखून भली भांति कटे हुए होने चाहिए।
1: हाँ दुर्गा भैया, हम कहीं भाई देखा गौरव जैन कितना बढ़िया अपने दुधारू पशुओं के देखभाल और के प्रबंधन के विषय में जानकारी दें। निश्चय रूप से अपन किसान भाई इसे लाभान्वित हुई। हम कहीं चर्चा होते रहे, चले संदेश सुन लिया जाए।
2: सुनवाए

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ दुर्गा भैया, हमको संदेश हो गया बजाना है। हम कहे भाई, देखा शुरुआत में चर्चा होत रही ना कि अब नवरात्रि भाई शुरू हो के बाटे जौना है, और हम कही भाई जगह जगह पे देखा दुर्गा पूजा पंडाल लगा बा, वहाँ दुर्गा स्तुति होत बाटे, तमाम तो भजन कीर्तन कार्यक्रम चलता है।
2: और अपने गांव में रामलीला देखा भाई, तैयारी होती है,
1: तैयारी होती है जौना है, कहाँ कहाँ तो भैया शुरू भी हुई है बाटे,
2: शुरू हुई
1: है। हाँ, हम कहे भाई देखा ये ऐसा पल होता कि जहमा आदमी भाई अपने जो समाज के एक दर्पण पूरा प्रस्तुत होता है जौना है राम,
2: बिल्कुल बिल्कुल, अपने संस्कृति के भी, और साथ ही साथ यह एक अवसर भी होते कि सब लोग इकट्ठा हो के एक जगह पे उत्सव जौन बा
1: बिल्कुल
2: बड़े उत्साह के साथ मनावत।
1: बिल्कुल, तो हम कहे भाई देखा जब बात नवरात्रि चलत बाटे तो हम कहे एक तो देवी गीत किसान भाई को सुनवाई दिया जाए, तो हरिश्चंद हलचल का संघातन के देवी गीत बा आओ सुना जाए,
2: सुनवाई।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ, दुर्गा भैया, हमको देखा देवी गीत भी होगी और संदेश भी होगी बाजू में।
2: तो हम मोहन भैया कहा,
1: बताओ भैया,
2: देखा इस समय कि गेहूं और आलू के बुवाई शुरुआत हो गई।
1: बिल्कुल भाई, हम कही भाई देखा जे भाई अक्सर धान के बुवाई करे रहें, उनकर देखा था धान पकब कटत बटे, तो ऐसे में भाई जो अक्सर आलू के खेती होता ओकर तैयारी तो शुरू
2: हो गई।
1: और साथ ही साथ जब कहा ना भाई, जब खेत का तैयारी जब शुरू हो जाता है तो भाई जरूरत पड़ा था कि भाई उपयुक्त मात्रा में भाई खाद रहे वो रहे, तो भाई जरूरत है बात की बात है कि अब जैविक खेती के जरिए जो ना है भाई कोनो भी खेती कीन जाए जो।
2: बिल्कुल, काहे से कही देखा भाई, अब जैसे DAP खाद भाई डाई जौन डालत रहे ऐसो में भाई देखा पंजीकरण होए के बाद ही मिलत।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और यो सोचा कि भाई जितनी जरूरत हो उतने डाली जाए।
1: बिल्कुल,
2: तो कोशिश यह है कि लागत जब कम हुई तो जेब गरुआई, और लागत तभी कम हुई जब हम अपन जैविक खेती की तरफ लौटा।
1: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा प्राकृतिक तौर तरीका जो खेती कर रहा अपन पुराना जो ना है ना, उसे भाई अपन अनाज के जो उत्पादन रहा चाहे आलू के उत्पादन हो वो बढ़िया रहता रहा। अब भाई रसायन के उपयोग के ज्यादा से जो ना है ओके भाई उत्पादन तो बढ़ा लेकिन जो उनको गुणवत्ता रही
2: वो कम प्रभावी, प्रभावी
1: उसे तो भाई परिणाम ही बाटे कि भाई बाजार में ओकर मूल्य भी कम मिलत बाटे,
2: कम मिलत बाटे। और स्वास्थ्य हो चाहे पर्यावरण, देखा दोनों पे बहुत बुरा असर।
1: बिल्कुल भाई, हम कह दे भाई समय बरसात हो जात बाटे, तूफान आवत बाटे, कुछ भी होता है इसमें, तो भाई हर तरह से कहीं ना कहीं सब चीज प्रभावित बाटे। तो एके लिए आवश्यक यही बाटे कि भाई सरकार के भी विभाग के भी बराबर के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाओ जात बाटे।
2: एक बात मोहन भैया, हम लोग गोरु बछरुआ के भाई देखा जैसे बातें करते रहे कि भाई हमारे पास जब हमारे सबके पास जैविक खाद बा, गोबर के खाद बा, तो काहे हम रासायनिक खाद।
1: बिल्कुल भाई, कहिए हम कही एक बात कहा, हम कहे भाई हमारे से प्रयास होता कि अपने खेती किसानी से जुड़ा कार्यक्रम बार जो ना अपने किसान भाई को उपयोगी जानकारी दी जाए, तो भाई किसान भाई के बारे में का सोचा थी उनके लिए एक महत्वपूर्ण भाई नंबर बांटे 8004926250। भाई किसान भाई ए नंबर पे भाई व्हाट्सएप के जरिए अपन जो संदेश बा दे सकत हैं, का सुझाव बा दे सकत हैं, और साथ साथ मौसम को देख के भाई खेती बाड़ी करें। और समय भाग किसान भाई सब विदा लीन जाए। पंचो राम राम, राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: श्री योगी ने कहा कि त्यौहार में किसी भी दशा में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित न हो, इसके लिए दुर्गा पूजा समितियों से बात की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रतिमा विसर्जन मार्गों का निरीक्षण कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने नदियों के जलस्तर और जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर जिले में शिक्षा की उड़ान पहल के अंतर्गत स्टडी टेबल और आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि नारी सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान जारी है। नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। जो समाज नारी का सम्मान करता है, वही विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है।
1: वह समाज जो नारी शक्ति का वंदन और अभिनंदन नहीं कर सकता, वह विकास की बुलंदियों को भी नहीं छू सकता। और इसीलिए बेटी हो, कोई बहन हो, कोई महिला हो, उसकी सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान उसी क्रम में संचालित हो रहा है। उसका थीम ही है कि महिला की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन। ये तीनों एक साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी तय किया है कि जिस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, उसकी राशि घर की मालकिन के नाम पर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आज के इस विशेष श्रृंखला के क्रम में हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक 6.5 करोड़ नागरिक

0: एक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की मौजूदगी में आज वाराणसी के नमो घाट पर 94वीं फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजित किया गया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों ने भाग लिया। नमो घाट से शुरू हुई साइकिल यात्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाकर फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में 2026 आईजी नागोया एशियाई खेलों के पदक विजेता प्राची चौधरी, पारुल चौधरी, जय कुमार और राजकुमार पाल भी शामिल हुए। शारदीय नवरात्र का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का यह धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज सुबह से ही प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मां भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्य रात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है और देश विदेश से श्रद्धालु विंध्याचल पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। विंध्याचल से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
2: विंध्याचल में लगे शारदीय नवरात्र मेले में आज प्रथम दिन से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल रात से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 2500 से भी अधिक पुलिस के जवान तैनात हैं। मां के गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के साथ चरण स्पर्श व फोटोग्राफी पर भी रोक लगाया गया है। मेला क्षेत्र की साफ सफाई के लिए 1000 सफाई कर्मी तैनात है। मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। एफएम सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर।
1: बलरामपुर जिले के देवी पाटन शक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर में आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ प्रातः काल पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ। मां के दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग कतारों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं के आवास एवं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र का CCTV कैमरे द्वारा निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिर में पूजन अर्चन किया, बाद में बालिका सम्मान कार्यक्रम में स्टडी टेबल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, देवी पाटन शक्तिपीठ, बलरामपुर।
1: वहीं वाराणसी सहित अयोध्या के बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जालपा देवी और पाटेश्वरी देवी मंदिरों पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर जिले में मां तरकुल्हा देवी मंदिर और महाराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। नवरात्र के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी श्रेणी में 3548 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें मुख्य वाणिज्यिक, सह टिकट पर्यवेक्षक, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक, सह टंकण और वरिष्ठ क्लर्क के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आवेदन 6 नवम्बर तक किए जा सकेंगे। रणजी ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश टीम ने बिहार के खिलाफ राजगीर में हो रहे मुकाबले में पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना लिए हैं, जिसमें माधव कौशिक और रिंकू सिंह के शानदार नाबाद शतक शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दशहरा पर्व की तैयारियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री बलरामपुर में शिक्षा की उड़ान कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण समाज की प्रगति का है आधार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 94वें संस्करण में लिया हिस्सा। फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश।

0: देश और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। नमस्कार दोस्तों, आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना के पावन पर्व नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान, आस्था की अभिव्यक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इन 9 दिनों में मंदिरों की घंटियां, गर्भों की थाप, आरती की लौ और भक्तों के हृदय से उठती प्रार्थनाएं वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। कहते हैं जब जीवन के रास्तों पर अंधेरा गहराने लगता है तब माँ की भक्ति उम्मीद का दीपक बनकर जलती है। जब जब मन ने श्रद्धा से माँ को पुकारा है, जब जब मन ने श्रद्धा से माँ को पुकारा है, ममता के आंचल ने हर संकट संवारा है। तो आइए आज के इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुरों के माध्यम से माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करें और अपने मन को भक्ति के रंग में रंग लें।

दोस्तों, माँ के प्रति प्रेम और विश्वास की सबसे सुंदर बात यह है कि भक्त स्वयं को कभी अकेला नहीं मानता। उसे लगता है कि कोई शक्ति है जो कठिन समय में उसका हाथ थामे हुए है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि अपने भीतर के भय को जीतने में भी है। माँ की चौखट पर झुक जाए जो इंसान, माँ की चौखट पर झुक जाए जो इंसान, उसके मन को मिल जाता है विश्वास का वरदान।

दोस्तों, माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं। कहीं वे ममता की प्रतिमूर्ति हैं, कहीं दुष्टों का संहार करने वाली महाशक्ति और कहीं अपने भक्तों को अभय देने वाली जगदम्बा। नवरात्रि के 9 दिन माँ के इन्हीं स्वरूपों की आराधना के दिन हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि करुणा और साहस दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। शक्ति भी तू, भक्ति भी तू, जीवन का आधार है। हे जगदम्बे माँ, तुझसे ही संसार है।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त करने का समय आ गया है। माँ दुर्गा से हमारी यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख शांति हो, हर मन में प्रेम हो और हर जीवन में साहस तथा सकारात्मकता का प्रकाश बना रहे।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुरेंद्र कुमार नारंग से भजन।

सुरेंद्र कुमार नारंग के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिट्ठी आई है। प्रतिभागी हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदा राठौर का नमस्कार। श्रोताओं, आपके खूबसूरत से संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और आपके संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार, अभिनंदन।
1: वंदना जी नमस्कार, सुधीर श्रोताओं को नमस्कार। वंदना जी, आज आपकी आवाज़ में थोड़ी मुस्कान है, मुझे लगता है कि आज आप पहले

0: अभिनंदन।
1: वंदना जी नमस्कार, सुधीर श्रोताओं को नमस्कार। वंदना जी, आज आपकी आवाज में थोड़ी मुस्कान है। मुझे लगता है कि आज आप पहले शिकायती पत्र नहीं पढ़ने वाली हैं।
0: नहीं नेहा जी, अभी तक तो मेरी नज़र में कोई शिकायत तो अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है,
1: जी
0: लेकिन हाँ, बहुत ही विस्तार से
1: जी
0: हमारे श्रोताओं ने अपनी मन की बात जो उन्होंने लिखी है उसे सुनकर ये मुस्कान आई है। विष्णु मिस्किन जी हैं, ये सोलापुर
1: जी
0: महाराष्ट्र से जो हमें संदेश भेज रहे हैं। ये कहते हैं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप तक प्रेषित करना चाहता हूँ। आकाशवाणी प्रयागराज के सोशल मीडिया पेज पर आपके द्वारा साझा किए जा रहे कार्यक्रमों की झलकियाँ देखकर मन में एक बात विशेष रूप से आई है
1: जी
0: कि रेडियो आज भी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज से संवाद करने, सोच को दिशा देने और महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता पैदा करने का एक सशक्त माध्यम है। आपके कार्यक्रमों में इसकी सुंदर झलक देखने को मिलती है, विशेष रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन की प्रासंगिकता। ये विषय आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के विचार केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन, सादगी और मानवता जैसे उनके विचार आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन और समाज दोनों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। इसी तरह से वॉइस ऑफ प्रयागराज में साइबर क्राइम पर विशेष बातचीत वर्तमान समय की एक बेहद जरूरी पहल लगी मुझे। बाल संघ कार्यक्रम भी अपने आप में बहुत सुंदर पहल है। बच्चों के लिए चर्चा, शब्द ज्ञान, रूपक, बाल गीत और मनोरंजक प्रस्तुतियों का एक साथ उसे जोड़ देना, बच्चों में ज्ञान के साथ साथ उनकी कल्पनाशीलता और भाषण के प्रति रुचि बढ़ाने का भी एक अच्छा माध्यम बन जाता है। खासतौर पर चिट्ठी आई है जैसे कार्यक्रमों की अपनी अलग ही आत्मीयता है। रेडियो पर जब किसी श्रोता की बात, उसकी भावनाएं आवाज बनकर सामने आती है तो श्रोता और प्रसारक के बीच एक विशेष रिश्ता बन जाता है। यही आकाशवाणी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मेरी ओर से आकाशवाणी प्रयागराज की पूरी टीम, सभी उद्घोषकों, प्रस्तुतकर्ताओं, तकनीकी सहयोगियों और कार्यक्रम से जुड़े अतिथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
1: बहुत शुक्रिया विष्णु मिस्किन जी। आपने ये बात जो कही कि आप लोग समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं मनोरंजन के साथ साथ, कैसे आपने हमारे पूरे टीम की दिल की बात समझ ली। सच कहूँ तो ये बात कहीं ना कहीं जब हम लोग प्रोग्राम की परिकल्पना बना रहे होते हैं, सोचते हैं कि इस कार्यक्रम की कस्तूरी क्या है, इसकी आत्मा क्या है, तो उस आत्मा को हम रेखांकित करते हैं और उसके आसपास बहुत सुंदर आवाज़ के माध्यम से पूरी तस्वीर बना देते हैं और आप सभी सुधी श्रोताओं तक उसे पहुंचाते हैं। तो यूं ही इस तस्वीर में हम अकेले नहीं हैं, जैसे कि विष्णु मिस्किन जी ने कहा कि आपका जो पूरा पैनल है तो ये परिवार बहुत बड़ा है। आप अपनी चिट्ठियाँ लिखिए, वॉइस मैसेजेस लिखिए, सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं। शुक्रिया विष्णु जी।
0: डेयर पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी जी कह रहे हैं, हमें सबसे पसंद जो कार्यक्रम आता है वो है फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। और आदरणीय मधु जी की जो पेशकश होती है वो सर्वोत्तम होती है, उनका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम भी बहुत ही खूबसूरत होता है, प्रेरणात्मक होता है, इसे हम समयानुसार सुनते हैं। अभय कांत जी की पूरी टीम ने कार्यक्रम को सर्वोत्तम बनाया है। खासतौर पर नेहा जी और तनु जी जो भोर कार्यक्रम करती हैं उसमें हृदय के भाव जो होते हैं वो प्रेषित दिखाई पड़ते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद।
1: धीरज वी रबारी जी की चिट्ठी मुझे लगता है कि 3 हफ्ते बाद आई है लगभग, है ना। बहुत शुक्रिया। मधु जी जब कार्यक्रम पेश करती हैं तो उस समय स्टूडियो का माहौल देखने लायक होता है। चारों तरफ आवाज़ की जो तरंगे हैं एक दूसरे से मिल रही होती हैं और कुछ नया प्रस्तुत कर जाती हैं। तो ये जो साधुवाद आपने भेजा है मधु जी तक ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा। धीरज वी रबारी जी, आपको गृहलक्ष्मी पनघट अच्छा लगता है, तो अभय जी और जो उनके पूरे टीम मेंबर्स हैं उन तक भी ये सूचना साधुवाद ज़रूर पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया आपका।
0: दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा जी हमसे जुड़ रहे हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। दिलशाद जी कहते हैं हमसे कि आपके प्रोग्राम को हम बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं। 4 अक्टूबर को आपके केंद्र से कार्यक्रम प्रसारित किया गया था बाल संघ, जिसके अंतर्गत रूपक जो डाकिया डाक लाया
1: जी,
0: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम।

0: मुझे। 6 अक्टूबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पनघट के अंतर्गत निधि सिंह जी की जो वार्ता थी, महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे करें, ये जब वार्ता सुनी तो बहुत ही रोचक लगी और ज्ञानवर्धक भी लगी है। तो पूरी टीम को इस लाजवाब प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत हमारी बधाई।
1: शुक्रिया दिलशाद हुसैन जी। बाल संग कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। हेम जी और शैल ने बहुत सुंदर रूपक बनाया था। डाकिया का जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है, हम सभी को अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, उनसे मिलवाना चाहिए कि कितनी कड़ी धूप होती है, बारिश होती है, ठंड होती है, तभी भी वो अपना काम करते हैं। तो इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी घर से बाहर निकलें। ये आलस्य पालने से कुछ भी नहीं होने वाला, जीवन में कुछ कर गुजरते हैं। तो शुक्रिया, पसंद आया, पनघट अच्छा लगा। तो इसका साधुवाद हम सारे पैनलिस्ट जो पनघट के हैं उन तक, और जो कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है प्रदीप मिश्र जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे आपका संदेशा।
0: और नेहा जी, बहुत महीनों के बाद अपने संदेशों के साथ हमसे जुड़ रहे हैं
1: जी
0: बहादुर चक्रवर्ती जी,
1: ओ
0: रामटोरिया बुंदेलखंड से।
1: जी
0: और इन्होंने क्या लिखा है आपको अच्छा लगेगा।
1: ओ आप जब ठहराती हैं तो मुझे कांपती हूँ मैं।
0: नहीं, इन्होंने लिखा कि आकाशवाणी प्रयागराज इलाहाबाद के सभी कार्यक्रम बहुत रोमांटिक हो चले हैं। खास तौर पर हमें लोकगीतों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है
1: जी
0: क्योंकि हमारी भाषा बुंदेलखंडी है, तो
1: जी
0: आप लोगों की भाषा जो अवधि है वो मिलती जुलती सी लगती है। एक नए प्रोग्राम की मैंने फरमाइश पहले भी की थी कि व्हाट्सएप पर लोकगीतों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए,
1: जी
0: तो कृपया मेरे इस निवेदन पर ध्यान दें। रामचरितमानस से पाठ, ये प्रोग्राम मैं जरूर सुनता हूँ। और महिलाओं का जो कार्यक्रम आता है पनघट और गृहलक्ष्मी, वो मुझे बहुत पसंद आता है।
1: बहुत शुक्रिया बहादुर चक्रवर्ती जी। मुझे याद है कि ये आपने कुछ 6-7 महीने पहले इस बात को रखा था, तो आपका नाम, धीरज वी रबारी जी का नाम, और भी देवी पाटन से एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने भी अपनी फरमाइश की थी। यकीन मानिए आप सभी के नाम पनघट में प्रसारित हुए थे, और लोकगीत पहले जो 2:30 पे जाता था, तो हमने ये बात हमारे जो अनाउंसर्स हैं उस समय के उनको बताई थी कि आप सभी का नाम ज़रूर लिया जाए। अब तो लोकगीत 10:30 बजे सवेरे जा रहा है पॉलिसी मैटर्स के कारण, तो देखते हैं वो भी, चूंकि लोग कई बार कम होते हैं। लेकिन बात आई है तो याद भी है, उसको पूरा भी करेंगे। और आप ये जो कह रहे हैं कि कार्यक्रम में नया रंग दिख रहा है, आप सभी से ये बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पैनल का विस्तार भी हुआ है, कुछ लोग आए हुए हैं। पुराने लोगों ने नींव को इतना मजबूत करने का काम किया है, और नए लोगों ने कुछ नए फूल रख दिए हैं उस नींव पर। तो कहते हैं ना कि जब दो चीज़ें मिलती हों तो बहुत सार्थक हो चलता है, तो मैं तो इन सब की शुक्रगुजार हूँ, और आपने वो बात कह दी। शुक्रिया
0: नेहा
1: आपका बहादुर जी।
0: जी, बड़े ही सरस और लालित्यपूर्ण भाषा शैली में लिखा गया ये संदेश में
1: जी
0: मिल रहा है अनुपम परिहार जी का, प्रयागराज से। लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर 27 सितंबर को प्रसारित आपका कार्यक्रम केवल गीतों का चयन और प्रस्तुति भर नहीं था, बल्कि वो स्वर स्मृतियों की एक ऐसी भाव यात्रा थी जिसने मन के उन कोमल और अनछुए कोनों को स्पर्श किया जहां शब्द पहुंचते पहुंचते ठिठक जाते हैं। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता उसके गीतों के साथ साथ प्रस्तोता का कथ्य और प्रस्तुतिकरण था। उनकी वाणी में संवेदना की ऊष्मा, शब्दों में साहित्य की गरिमा और प्रस्तुति में ऐसी आत्मीयता थी कि पूरा कार्यक्रम एक सधे हुए संगीत संस्मरण की तरह अनुभव हुआ। ऐसे कार्यक्रम श्रोता के भीतर देर तक गूंजते रहते हैं और समाप्त होने के बाद भी अपनी अनगूंज मन पे छोड़ जाते हैं।
1: बहुत शुक्रिया अनुपम परिहार जी। मुझे याद है कि आपने कस्सा गोई कार्यक्रम जो गुरुदत्त साहब पर आधारित था, यहीं NCZCC के पास कार रोक कर आपने सुना था और मैसेज किया था। याद है वंदना जी
0: बिल्कुल याद है।
1: आपको? लता जी पे कार्यक्रम 27 और 28 को हम लोगों को ध्यान रहता है कि हमारे जो मार्गदर्शक रहे वो संगीत में हों, साहित्य में हों, संस्कृति, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया, उनके बारे में हम बात ज़रूर करें। जो आप कह रहे हैं कि संवेदना में ऊष्मा थी, तो ये बात हम मधु जी को कन्वे करते हैं कि मधु जी कुछ विशेष करवाइए। तो ये बात वो हर पैनलिस्ट जो होता है सवेरे, दिन में और सांझ को वो बात पहुंचाती हैं, और

0: वो लोग मेहनत से हफ्ते भर पहले से तैयारी करते हैं, और जब तैयारी होती है तो वो फिर दिखती है, और जब दिखती है तो आपके पत्र आते हैं। शुक्रिया।
1: और अब अपने अनूठे अंदाज और अपने वॉइस मैसेज के साथ हमसे जुड़ रही हैं अशोक नगर प्रयागराज से नीरा त्रिपाठी जी। तो चलिए सुनते हैं कि नीरा जी क्या कहती हैं।
0: जी जरूर।
2: आज का बोलते नगमे प्रोग्राम दोनों सुंदर सुंदर मधुर आवाज में आज प्रोग्राम को ऐसा सजाया, मजा आ गया। वंदना जी ने तो क्लू बड़ी आसानी से पहचान लिया, नेहा जी को क्लू दिया गया वो भी अंत में पहचान दी गई। गाने तो बहुत ही अच्छे अच्छे थे, दिल को छूने वाले थे, लग रहा था थोड़ी देर और थिएटर में ऐसे ही बैठे रहे। काम करने का तो मन ही नहीं कर रहा था, खाना बनाना था पर मेरे हस्बैंड बोले रोटी सेको रोटी सेको, पर मैंने तो भाई बोलते नगमे सुनने का जो प्रण किया है वो है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बीच बीच में हम लोग का इतना मनोरंजन हुआ। नेहा जी ने एक बात बोली कि गुरु चेला वाली बात थी, गुरु तो गुरु रह गया और चेला, बात तो सही है भाई, गुरु गुरु रहता लेकिन चेला उससे आगे बढ़ जाता है, बात तो सही है। वंदना जी को तो पिक्चरों और गाने के बारे में लंबा अनुभव है लगता है, वो बड़ी जल्दी क्लू पहचान भी जाती हैं। कुल मिला के आज का प्रोग्राम बेहतरीन था, अगर हमको नंबर देने को बोला जाए तो हम तो 100 में से 100 नंबर देंगे। दोनों लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत शुक्रिया नीरा जी, आप जो कहती हैं कि बोलते नगमे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, तो ये अच्छा तो मुझे लगता है आप सभी सुधीर श्रोताओं के कारण ही हुआ है। आप लोग जब पत्र लिखते हैं तो हमारे और वंदना जी तो सामने ही बैठी हुई हैं, जिम्मेदारी का भाव और प्रबल हो जाता है कि भाई जो करना है वो ठीक करना है, क्योंकि जब आप किसी के हृदय में जगह बना चुके होते हैं तो मन करता है कि वो जगह अपनी सुरक्षित रहे। तो इंशाल्लाह हम लोग दिन प्रतिदिन पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को करते रहेंगे, और आप सभी का साथ मिले, प्यार मिले, ऐसी मंगल कामना भी करते हैं। हमारे कार्यक्रमों में आप शामिल होइए, अच्छा लगेगा।
1: और नेहा जी, अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया के जरिए जो संदेश हम तक पहुंचे हैं उनके हम नाम शामिल करें।
0: जरूर।
1: तो नाम शामिल हो रहा है इसमें बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुमित रमेश साहू, डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, श्रद्धानंद आर्या, गगनदीप थांडी, अफजल ताज, मुकेश कश्यप, संजय कुमार साहू, सुखविंदर सिंह जौड़ा, संजय अंतरीवाल जी, मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमसे जुड़ रहे हैं, सतीश कुमार जी हैं, हल्के जयपाल यादव, सुरेंद्र सांधु, श्याम बहादुर सोनी, और ये हैं अब्दुल गफ्फार, और नेहा जी साथ में हमसे जुड़ रहे हैं रणजीत सिंह जी गोरखपुर से
0: जी।
1: और बहुत विस्तार से इन्होंने भी संदेश अपने लिखे हैं कि लोक संगीत का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत अच्छा लगता है और गांधी चिंतन बहुत पसंद आया है। दीपक कुमार राय जी और डॉक्टर सरोज यादव जी का, डॉक्टर पतंजलि मिश्र जी की जो उनकी जो बातचीत थी बहुत अच्छी लगी। नेहा गुप्ता जी को भी बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। चना और मटर की उन्नत खेती पर जो बातचीत हुई थी वो भी बहुत पसंद आई है। सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जैनेन्द्र कुमार जी पर जो परिचर्चा सुनी इन्होंने, सुनकर बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत शुक्रिया रंजीत सिंह जी, आपको गांधी जी पर आधारित जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया था पसंद आया, तो इसका साधुवाद हम दीपक जी, डॉक्टर पतंजलि मिश्र और डॉक्टर सरोज यादव जी तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी तरह से रंजीत सिंह जी और सभी सुधीर श्रोताओं जिन्होंने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, शुक्रिया आप सभी का। तो वंदना जी, अब तो चिट्ठी आई है का पता बताने का टाइम आ गया है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं लिखिए, हमारा पता कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग, आकाशवाणी प्रयागराज। हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार, और अब हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी आई है, प्रतिभागी थी नेहा गुप्ता और वंदना राठौर।

100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। संगीत है इस्माइल दरबार का, शब्द रचना महबूब की।

दोस्तों, प्यार का एहसास भी कितना अनोखा होता है। कभी चांद की चांदनी में महबूब का चेहरा नजर आता है, तो कभी बादलों में छिपा चांद भी दिल की बेचैनी बढ़ा देता है। कुछ ऐसे ही प्यार भरे एहसासों से भरा हुआ था ये प्यारा सा गाना, है ना? अब आइए सुनते हैं अवाम फिल्म का ये गाना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में। दोस्तों, रात की खामोशी, बरसात के रिमझिम और दिल में उठती मोहब्बत की हल्की सी लहर, इन सब का संगम जब संगीत में ढलता है तो एक ऐसा नगमा जन्म लेता है जो सीधे दिल को छू जाता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आज इतवार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे मधुर श्रीवास्तव का लिखी झलकी खानदानी लोभ।

0: देखो जी, मैं फिर कहती हूँ, शादी ब्याह बराबर वालों में ही अच्छा होता है। क्यों बड़े घर की लड़की लाकर जिंदगी नरक बनाने पे तुले हुए हो?
1: तुम्हारा ये फिर से सुनते सुनते मैं तो तंग आ गया। बड़े घर के तौर तरीके कभी देखे हैं? अनपढ़ गंवार हो, उसी तरह सोचोगी, उसी तरह बात करोगी।
0: ठीक है, मैं अनपढ़ गंवारी सही, तुम तो पढ़े लिखे आलिम फाजिल हो, तुम ही क्यों नहीं समझते? लाख डेढ़ लाख शादी में जो खर्च करेगा वो तुम्हारे

0: यहाँ क्यों शादी करेगा? क्या देखकर करेगा? मैं फिर कहती हूँ।
1: चुप चुप चुप, भगवान के लिए बंद करो ये फिर से। अरे भाई मैं क्या बात करने गया था रघुनाथ बाबू के यहाँ? अरे उन्होंने खुद ही बात चलाई थी जैन साहब से।
0: जैन साहब तुम्हारी हैसियत जानते नहीं?
1: क्यों, क्या कमी है हमारी हैसियत में? फिर हमारी हैसियत से रघुनाथ बाबू को क्या लेना देना? भाई हैसियत लड़के की देखी जाती है, लड़के
0: की। तुम्हारा लड़का ही कौन सा लॉर्ड गवर्नर है?
1: बैंक की नौकरी को क्या समझती हो तुम? अरे बड़े बड़े कार मोटर वाले, उनके लड़के जूतियां चटकाते हैं बैंक की नौकरी के लिए। फिर अपना नरेंद्र किसी माने में कम है क्या? पढ़ा लिखा है, सुंदर है, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती है उसकी, किस माने में कम हैसियत है उसकी?
0: बैंक में उसकी भी हैसियत समझती हूँ और तुम्हें भी खूब जानती हूँ, इसीलिए मैं फिर कहती हूँ।
1: फिर तुमने अपना फिर दोहराया।
0: हजार बार दोहराऊंगी, शादी ब्याह बराबर में ही ठीक होता है, समझे?
1: तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
0: मैं फिर कहती हूँ, सुख सुविधा में पली बड़े घर की लड़की नहीं रह सकती इस घर में।
1: नहीं रहेगी न रहे, ब्याह हो जाएगा जहाँ चाहे रहे। अरे वो जाने और नरेंद्र, मगर जहाँ तक माँ बाप की बात है ना, सभी माँ बाप चाहते हैं बेटे का ब्याह खूब धूमधाम से हो, अच्छे घर में हो, दान दक्षिणा मिले।
0: हाँ हाँ, अब तुम्हारी कमाई से तो पूरा होगा नहीं, दान दक्षिणा से ही घर चलेगा।
1: तुम गंवारों से बात करने में यही तो मुश्किल है, बात समझोगी नहीं, जली कटी बोलने लगोगी। अरे भाई मैं कहता हूँ लड़का उन्हें पसंद है, फिर बहस कैसी? परसों वो आ रहे हैं शादी पक्की करने, घर भी देख सुन लेंगे।
0: तुम पागल हो गए हो क्या? क्या देख सुन लेंगे, ये कबूतर खाना?
1: अरे तुम तो हर बात में लंगड़ी मारने लगती हो, जो है उसको तो चुस्त दुरुस्त कर सकती हो ना?
0: फिर वही मैं कहती हूँ, ले देकर एक यही कमरा है, चाहे इसे ड्राइंग रूम कह लो चाहे बेडरूम, न कायदे का फर्नीचर है न खाने के बर्तन, चुस्त दुरुस्त क्या कर लूंगी अपना मुंह?
1: अरे अरे वो तो तुम मेरे बिना कहे ही पाउडर क्रीम लगाकर कर ही लोगी। समधी समधन का रिश्ता ही ऐसा है।
0: अब बात मजाक में मत उड़ाओ, मुझे तुम्हारी तरह 420 करनी नहीं आती।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो फर्नीचर बर्तन की चिंता छोड़ो, वो सब इंतजाम मैंने कर दिया है, बस तुम्हें इस कमरे को सजा देना है किसी रईस के घर की तरह। सचान बाबू के यहाँ से टी सेट, डिनर सेट, सोफे, पर्दे सभी कुछ आ जाएगा। अग्रवाल साहब ने अपना डाइनिंग टेबल भेजने को कह दिया है। खान साहब फर्शी, कालीन और दीवान भेज रहे हैं। अपने लिए वो साड़ी ब्लाउज वगैरह तो तुम अपनी दीदी के यहाँ से ले ही आओगी। हाँ। है उसके लिए क्या कहना,
0: शर्म नहीं आती कहते हुए दीदी के यहाँ से ले आना? नाक तो तुम्हें भगवान ने दी ही नहीं, कटने की चिंता काहे हो?
1: अच्छा अच्छा, अब चुप फिर हो भाई, अभी मुझे बाकी चीजों का भी तो इंतजाम करना है, उन्हें खाने के लिए कह रखा है वो भी तो सब देखना ही होगा। आइए आइए रघुनाथ बाबू आइए। आप ही का इंतजार हो रहा था। इधर बैठिए, इधर इधर, हाँ हाँ सोफे पर, हाँ अरे आराम से बैठिए ना। हाँ अब बताइए ठंडा चलेगा या गरम?
2: वो सब तो चलता ही रहेगा जगदम्बा जी, तकल्लुफ किस बात का? हाँ नरेंद्र बाबू कहाँ हैं, दिख नहीं रहे?
1: वो अभी वो उसका दोस्त आ गया था विकास, ADM बरेली। हाँ, उसी को छोड़ने गया है जरा। अब रघुनाथ बाबू, हमारा बेटा अफसर भले ही हो गया हो मगर हमारे सामने जबान नहीं खोलता।
2: जगदम्बा जी ये सब तो खानदानी लोगों के यहाँ ही दिखाई पड़ता है, नरेंद्र बड़ा खूनहार है, जैन साहब भी कह रहे।
1: रघुनाथ बाबू बड़े बोल नहीं बोलता, आदत और स्वभाव से नरेंद्र हजारों में एक है, हाई स्कूल से MA तक अव्वल आया है।
2: अच्छा?
1: हाँ प्रोबेशनरी अफसर हो गया मगर अफसरी की कोई बू भी नहीं है उसमें। देखिए ना, मैनेजर से चपरासी तक उसकी इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि बस क्या कहूँ।
2: हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जगदम्बा जी, आदमी के स्वभाव से ही तो उसकी इज्जत होती है, वरना आजकल के माताहत कहाँ समझते हैं अफसर को अफसर।
0: नमस्ते भाई साहब।
2: नमस्ते, नमस्ते जी।
0: भाई साहब आप खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना।
2: जी हाँ जी हाँ, आप भी बैठिए ना।
0: मैं जरा नाश्ता कॉफी लेकर आती हूँ तब बैठती हूँ।
2: अच्छा तो जगदम्बा जी,
1: जी
2: लड़का तो जैन साहब ने मुझे दिखा दिया है, वो मुझे पसंद है
1: जी,
2: लड़की के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कब और कहां देखना चाहेंगे?
1: रघुनाथ बाबू हम हैं खान।

0: लोग देखिए, लड़की देखने दिखाने पर विश्वास नहीं करते। अरे वो भी क्या कोई नुमाइश की चीज है जो देख ही जाए? बड़ों के बीच बातचीत हो गई, शादी पक्की।
1: वाह रे जगदम्बा जी, आज के जमाने में आप जैसे ख्यालात के लोग दिखते ही कहां।
0: अजी ख्यालात भी खानदान से ही होते रघुनाथ बाबू, और हम हैं खानदानी लोग।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बजा फरमाते हैं आप, इसीलिए तो इसीलिए तो मुझे कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती।
0: नहीं नहीं नहीं, संकोच कैसा, जो कुछ पूछना हो साफ साफ पूछिए, पूरी तरह इत्मीनान कर लीजिए।
1: वो बात यह है जगदम्बा जी,
0: जी
1: मैं चाहता था लेन देन की बात भी हो जाती तो। हाँ देखिए ना, वो आजकल जमाना ही ऐसा है कि।
0: बिल्कुल ठीक कहते हैं आप रघुनाथ बाबू, मगर हम हैं खानदानी लोग, हमें किसी से लेकर क्या करना है। अब लड़का आपने पसंद कर लिया है तो वो आपका हुआ, आप जो चाहे दीजिए उसे, हम आपका हाथ पकड़ने वाले कौन होते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, वो तो है ही है।
0: अब जो कुछ आप देंगे अपनी इज्जत के लिए ही देंगे ना,
1: क्यों नहीं।
0: अब देखिए ना, मुझे टेलीविजन, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, स्कूटर, वो तो आजकल मामूली से मामूली शादियों में चल रहा है, वो तो खरीद ही लिया होगा आपने। खैर उसके बारे में क्या बात करूं, बस जरा वो लड़की के गहने जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, आज जानता हूँ रघुनाथ बाबू, गहने वहने आजकल पहनता कौन है, मगर अपने लोगों के यहाँ चलन चली आ रही है, अब उसका क्या करें, खानदानी लोगों के साथ यही तो मुश्किल होती है, दिखावा तो करना ही पड़ता है।
1: जी हाँ जी हाँ, वो तो ठीक ही है।
0: वैसे भी लड़की के पास जेवर ही तो होते हैं उसके अपने, हमारे ससुर ने नरेंद्र की माँ को उस जमाने में 30,000 के जेवर दिए थे।
1: मुझे कितने के गहनों का इंतजाम करना होगा।
0: रघुनाथ बाबू क्या मजाक कर रहे हैं, क्या इसके लिए भी आपको बताना होगा? अरे वो भी तो आपकी इज्जत की बात
1: फिर
0: है।
1: मालूम रहने से ज्यादा अच्छा रहता है।
0: अरे रघुनाथ बाबू अब मुझसे क्या कहलवा रहे हैं, आप खुद ही कर दीजिएगा समझ बूझ कर। वैसे आपके घर की लड़की के पास कम से कम 50,000 के जेवर तो होने ही चाहिए भाई, हमारी आपकी दोनों की इज्जत का सवाल है।
1: ठीक है, और कुछ।
0: देखिए रघुनाथ बाबू, नकद के तो हम सख्त खिलाफ हैं, मगर अब तिलक पर रिश्तेदारों को तो दिखाना ही पड़ता है, इसलिए।
1: हाँ हाँ कहिए ना जगदम्बा जी, कितना होना चाहिए।
0: अब देखिए ना, वो भतीजे की शादी में भाई साहब के बिना कहे ही 25,000 रुपए कैश आ गए थे। हाँ, हालांकि लड़का मामूली फूड इंस्पेक्टर ही है, अब हमारा नरेंद्र तो प्रोबेशनरी ऑफिसर है। क्या हुआ?
2: कॉफी लीजिए।
0: अच्छा अच्छा, ले आई नाश्ता, रखो रखो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था रघुनाथ बाबू, हाँ कि वो अपना नरेंद्र तो प्रोबेशनरी ऑफिसर है। अब क्या हुआ?
2: कुछ नहीं, नाश्ता कीजिए।
0: क्यों जी, तुम्हारा गला कुछ खराब हो रहा है क्या? तुम आज जोशादा पकाकर पी लेना, वरना मर्ज बढ़ भी सकता है। हाँ
1: बहन जी, कुछ तबीयत खराब चल रही है आपकी क्या?
0: जी हाँ जी हाँ, आजकल इन्हें नजला बहुत जल्दी पकड़ता है, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है आजकल। देखो जी, तुम लापरवाही ना करो, जाओ फौरन जोशादा तो चढ़ा दो, जाओ उठो। अरे भाई फौरन उठो, वरना मैं जानता हूँ तुम लापरवाही कर जाओगी।
2: ठीक है, जाती हूँ, मगर।
0: मगर वगर कुछ नहीं, तुम जाओ पहले जोशादा पका कर पियो, फिर दूसरी बात। हाँ जाओ जाओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था रघुनाथ बाबू,
1: यही कि नरेंद्र प्रोबेशनरी ऑफिसर।
0: हाँ हाँ, अब देखिए ना, अपना नरेंद्र तो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, अब तिलक में 25,000 भी न दिखाया गया तो लोग हंसेंगे हंसेंगे या नहीं, बोलिए।
1: जरूर जरूर, और कुछ जगदम्बा जी? देखिए जो कुछ हो सब कह डालिए, साफ साफ बात करने में कोई बुराई नहीं है।
3: बाबूजी नमस्ते।
0: क्या बात है रामू?
3: इस सोफा पे चढ़ावे भरे मलकिन खोल भेजे हैं, चढ़ाए दे ने तो सुफवा गंदा हुई जाई, लानरी वाला अब्बा भेजिस है।
0: अच्छा अच्छा, रख दे रख दे, हाँ वही रख दे।
1: क्या बात है जगदम्बा जी?
0: कुछ नहीं रघुनाथ बाबू, वो अरे रामू तू जा, हम चढ़ा लेंगे ना।
3: अच्छा सरकार।
0: ओ, बात दरअसल ये है रघुनाथ बाबू कि कल इसके मालिक के यहाँ कुछ मेहमान आ गए थे, सोफे मांग कर ले गया था, कवर गंदा हो गया होगा, उसी को धुला कर भेजा है।
3: बाबूजी।

0: क्या है?
1: मलकिनी नवा स्टील का डिनर सेट भिजवाई है, एका रख ले और पुरनका वापस कह दे। चाबी के गुच्छवा हेराएगा रहा, यही बरे जल्दी में पुरनका ले आए रहे। मलकिन कहे हैं कि शादी ब्याह के मेहमान आवत हैं, पुरनका ठीक न पड़े।
0: ठीक है, तू अभी जाना यहाँ से, फिर आना। अरे जा।
1: वो तो ठीक है सरकार, मगर हमार मलकिन कहे हैं ते उही रहे, जोन कोनो चीज की जरूरत हो तुरता आए के खबर की है। नरेंद्र बाबू का देखा है बदे मेहमान आवत हैं, कोनो चीज की कमी न पड़ेगी, चाहिए बाबू जी की इज्जत की बात है। बरात तो हमहू के चले के है मालिक।
0: हाँ हाँ, तू भी चलना, जरूर चलना, मगर अभी तो तू जाओ यहाँ से, अरे जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे ना।
1: हम दुआरे रहा मालिक।
2: जगदम्बा जी,
0: जी
2: ये मामला क्या है? आप तो पसीने पसीने हुए जा रहे हैं।
0: कोई खास बात नहीं है, गर्मी आज कुछ बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए ना, आज तो ये पंखा कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कौन है भाई? चले आओ ना, दरवाजा खुला है।
3: मैं हूँ साहब प्यून, बैंक से आया हूँ। नरेंद्र बाबू को मैनेजर साहब ने फौरन बैंक में बुलवाया है।
0: मगर आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन है।
3: छुट्टी तो है मगर लेजर चेक किए जा रहे हैं, सभी बाबू लोग आ गए सिर्फ नरेंद्र बाबू को छोड़कर, और इन्हीं की लेजर में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है।
2: नरेंद्र और बाबू? मगर नरेंद्र तो प्रोबेशनरी अफसर है भाई।
0: अरे इसे रघुनाथ बाबू लगता है कुछ मालूम नहीं है, बाबू और प्रोबेशनरी ऑफिसर का फर्क इसे पता ही नहीं है।
3: अरे वाह साहब, पता कैसे नहीं, 25 साल हो गए बैंक में नौकरी करते, फर्क क्यों नहीं जानूंगा। अरे नरेंद्र बाबू पिछले साल बाबू की पोस्ट पे कैसे भर्ती हुए हैं वो भी जानता हूँ, क्या वो भी बताना पड़ेगा?
0: अच्छा अच्छा, तो तुम जाओ, नरेंद्र अभी घर पे नहीं है। हाँ, आते ही मैं उसे भेज दूंगा, तुम जाओ जाओ।
3: ठीक है, मैं जाता हूँ साहब, आते ही फौरन भेजिएगा उन्हें।
2: ओह, यहाँ तो काफी ठोल में पोल है।
0: जी
2: जी जगदम्बा जी, इजाजत दीजिए, अब मैं चलूंगा।
0: जी मगर वो रघुनाथ बाबू।
2: मगर इतना जान लीजिए जगदम्बा जी, न तो उधार की चीजों से शान बनती है और न दहेज की रकम से घर भरता है।
0: जी
2: आपका नरेंद्र तो वो मुझे बाबू के रूप में भी पसंद होता, बशर्ते आप सही बात करते, लेकिन आपकी इस नौटंकी देखने के बाद तो आपके यहाँ शादी का सवाल ही नहीं उठता।
0: जी मगर मैं।
2: वाह रे खानदानी लोग, नमस्ते।
0: रघुनाथ बाबू जरा सुनिए तो, अरे जरा सुनिए तो रघुनाथ बाबू।
4: किसको आवाज दिए जा रहे हैं खानदानी महापुरुष जी?
0: अरे
4: रघुनाथ बाबू तो गए, मैं फिर कहती
0: हूँ।

आज इतवार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मधुर श्रीवास्तव की लिखी झलकी खानदानी लोभ। प्रस्तुति थी मधुर श्रीवास्तव की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल

0: लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। Because this is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक

0: मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
1: We have seen certain remarks.
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं।
4: डीकोलोनाइजेशन। सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure

0: सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में वाक़े IIT मद्रास में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे, पेट्रोलियम और साइंसी तहकीक के शोबों से वाबस्ता हैं। इन प्रोजेक्टों में तकरीबन 3,700 करोड़ रुपए के कौमी शाहराहों के तरक्याती काम, चेन्नई बंदरगाह से मुतअल्लिक इकदामात और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी और तजयनकारी शामिल है। इस मौके पर तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय भी मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इन प्रोजेक्टों के इफ्तिताह को एक तारीखी मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि इन इकदामात से आमदोरफ्त की सहूलतें बेहतर होंगी, सनअत और तजारत को तकवीत मिलेगी और रियासत के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की को उसके मालामाल सकाफती वरसे, साइंसी कामयाबियों और जदीद बुनियादी ढांचे से कुव्वत हासिल होती है।
1: दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर तमिलनाडु। टुडेज प्रोग्राम इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट्स वर्थ 13,000 करोड़ रुपीज। We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier, others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया उभरते हुए चैलेंजों के हल तलाश कर रही है और उन्हें यकीन है कि भारत के नौजवानों में इन मसाइल का हल पेश करने की सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। वह आज शाम चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत या तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब को हकीकत बनाने में नौजवानों का रोल इंतहाई अहम होगा।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत नौजवानों के लिए बेशुमार मौके फराहम करता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानें, उन्हें बरूएकार लाएं और मुल्क की तरक्की में अपना तआवुन पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी कि पुरअमन तौर पर जमा होने वाले अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में न लिया जाए और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के साथ लोगों की आज़ादाना नकल हरकत को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने दिल्ली में रुकावटें खड़ी करने के इंतजाम का जायजा लेने का भी हुक्म दिया। इसके अलावा मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि मेट्रो खिदमात मामूल के मुताबिक चलाई जाएं और अमनो अमान से मुतालिक तकाजों और कानून के दायरे में रहते हुए इंटरनेट खिदमात बिला तअत्तुल जारी रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और अमनो अमान के तकाजों के मुताबिक मेट्रो और ट्रेन मामूल के मुताबिक चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद हिदायत दी कि वकला को अपने पेशे वाराना फ़राइज की अंजामदही से न रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम की जानिब से अदालती अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह तमाम फरीकैन का मौक़िफ सुनेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि किसी को भी किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत ने इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर के दफ्तर OHCHR के दोहरे मेयार और अवामी मामलात पर इंतहाई मुंतखब अंदाज में रद्द अमल जाहिर करने के रवैये पर तनकीद की है। भारत ने नई दिल्ली में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़यात से मुतालिक तंजीम के तफसरों को मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक बयान में तंजीम के तफसरों को गैर ज़रूरी और मुल्क के दाखिली मामलात में नाकाबिल कबूल मुदाखलत करार दिया। जनाब रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहां आईन पुरअमन तौर पर इज्तिमा करने के हक की जमानत देता है। इस हक के तहफ्फुज के लिए मुल्क में मजबूत इदारे, आज़ाद अदलिया और आज़ाद ज़राए अबलाग मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरी अमनो अमान और सलामती बरकरार रखने से मुतअल्लिक शरायत के तहत इस हक का इस्तेमाल

0: करते हैं। दुबई में भारत के कौंसुलेट जनरल ने तस्दीक की है कि तेल बरदार जहाज MTGEM नंबर 2 पर सवार अमले के तमाम 22 भारतीय अरकान को बहिफाजत बचा लिया गया है और वो पूरे तौर पर महफूज हैं। वाज़ेह रहे कि रास अल खैमा के साहिल के करीब मस्कूरा जहाज में आग लगने का वाकया पेश आया। कौंसुल खाने ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि वो मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है और भारतीय जहाजरानों को हर मुमकिन मदद और तआवुन फराहम कर रहा है। इमारात न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात की नेशनल गार्ड कमांड के कोस्ट गार्ड डिवीज़न ने कल एक तेल बरदार जहाज में आग लगने की इत्तला मौसूल होने के बाद 22 एशियाई शहरियों को बचाया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सिमत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नव आबादियाती ज़हनियत को ख़त्म करने के मकसद से किए गए इकदाम के ज़रिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: जदीद भारत की तारीखी बरतानवी इस्तेमार की 2 सदियों से गहराई के साथ वाबस्ता है और आज़ादी के बाद भी कई दहाइयों तक इसके असरात बरकरार रहे। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत मुल्क को बरतानवी दौरे हुकूमत की यादों से बतदरीज दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले 25 बरसों के लिए 5 अजायम या पंच प्रण पेश किए। दूसरे अज़्म की वजाहत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों की ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, हत्ता के जहन के गहरे गोशों और आदातों अतवार में भी ग़ुलामी का ज़र्रा बराबर असर नहीं होना चाहिए।
2: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
1: मुल्क को नौ आबादियाती विरासत से आज़ाद कराने और एक मुनफरिद भारतीय शिनाख्त को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। नई दिल्ली में तारीखी राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रखा गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने 2022 में किया था। इसी तरह मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अज़ीमुश्शान मुजस्मा इंडिया गेट के करीब नसब किया गया, जिसने वहाँ नसबशुदा शाह जॉर्ज पंजम के मुजस्मे की जगह ले ली। भारतीय बहरिया ने भी 2022 में अपना नया परचम अख्तियार किया, जिसमें पहले मौजूद सेंट जॉर्ज की सलीब को हटा दिया गया। हुकूमत ने माली साल 2017-18 से रेलवे बजट को मरकजी बजट में जम कर दिया। इस तरह 1924 से चली आ रही इस रिवायत का भी खात्मा हो गया। बीजेपी रहनुमा राम माधव ने कहा कि भारत की सकाफती और तहजीबी शनाख्त को बहाल करना खुद एतमादी और खुददारी की एक अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि नौ आबादियाती असरात से निजात दरअसल हकीकी हुब्बुल वतनी का अमल है, जो आज मुल्क में जारी है। हुकूमत ने बरतानवी दौरे हुकूमत में ममनू करार दिए गए अदब को दोबारा जिंदा करने की भी कोशिश की है। इस मकसद के तहत नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने तहरीक आज़ादी के दौरान ममनू करार दी गई नज़मों, तहरीरों और मतबूआत की एक फहरिस्त तैयार की है। इसके अलावा हुक्मरानी को आसान बनाने और फरसूदा कवानीन को ख़त्म करने की कोशिशों के तहत हालिया बरसों में 1500 से ज़्यादा पुराने कवानीन मनसूख किए जा चुके हैं। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शारदीय नवरात्रि के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को नज्म जब्त और अखलाक अख्तार अपनाने की तरगीब देती है। کرگل کی ضلع پولیس نے لداخ پولیس کی

मोहब्बत में ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो, कभी दिल की खुशी में भी कोई दर्द अधूरा हो। जिसे चाहा हो दिल ने उसकी खुशी चाहना भी इश्क है, कभी अपनी तमन्ना से बढ़कर महबूब का सुकून हो। श्रोताओं, प्रेम का एक रूप वह भी है जहां इंसान अपनी चाहत से पहले अपने महबूब की खुशी को रखता है, उसकी मुस्कान में अपनी दुनिया तलाशता है और उसकी ख्वाहिशों को ही अपनी मंजिल मान लेता है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसी ही नज़ाकत, मिठास और भावनात्मक गहराई सुनाई देती है फिल्म इंतकाम के इस गज़ल में।

कभी शरारत में भी मोहब्बत का पैगाम छिपा होता है, कभी मुस्कान के पीछे दिल का अरमान छिपा होता है। नजरें मिले तो बात बने, नजरें झुके तो राज खुले। इश्क का अपना ही अंदाज, अपना ही मुकाम होता है। दोस्तों, मोहब्बत हमेशा गंभीर और खामोश नहीं होती। कभी ये हंसी में खिलती है, कभी शरारत में मुस्कुराती है, और कभी किसी की अदा पर दिल को बेवजह गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

फिल्म अंगूर से ये गजल आपने सुनी आशा भोसले की आवाज में। ये गीत अपनी चुलबुली अदायगी और मधुर धुन के कारण एक अलग ही रंग बिखेरता है। आशा भोसले की आवाज में वो चंचलता है जो गीत के हर शब्द को जीवंत बना देती है। इश्क की राह में अक्सर यही अंजाम होता है, कहीं खुशी का सवेरा कहीं दर्द की शाम होता है। जिस दिल ने किसी को अपनी दुनिया मान लिया, उसी दिल के हिस्से कभी इंतजार तमाम होता है। दोस्तों, इश्क जितना खूबसूरत एहसास है, उसकी राह उतनी ही मुश्किल भी हो सकती है। कभी मोहब्बत इंसान को जीने की वजह देती है, तो कभी वही मोहब्बत उसकी आंखों में इंतजार और दिल में दर्द छोड़ जाती है। फिल्म दिल दिया दर्द लिया का यह गजल मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी का ऐसा रंग प्रस्तुत करती है जिसमें दर्द भी है, शिकायत भी, प्रेम की गहरी अनुभूति भी। रफ़ी साहब जब दर्द को अपनी आवाज़ में ढालते हैं तो सुनने वाला उस कहानी का हिस्सा बन जाता है।

वफा की राह में खुद को मिटाना भी मोहब्बत है, किसी के मान की खातिर झुक जाना भी मोहब्बत है। जहां एहसास सच्चे हों वहां शब्द कम पड़ते हैं, किसी की इज्जत को अपना समझना भी मोहब्बत है। दोस्तों, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम तो सम्मान, विश्वास और समर्पण का वह रिश्ता है जिसमें दो दिल एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीखते हैं। लता जी की मधुर आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म अनपढ़ से ये खूबसूरत नगमा।

कुछ खत पुराने होकर भी दिल के पास रहते हैं, कुछ नाम मिटकर भी सांसों के साथ रहते हैं। मुलाकातें भले वक्त की धूल में खो जाएं, कुछ लोग मगर यादों में उम्र भर आबाद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खतों की दुनिया भी कितनी अनोखी होती है। कागज पर लिखे कुछ शब्द कभी किसी की मुस्कान बन जाते हैं, कभी आंखों की नमी और कभी उस मोहब्बत की निशानी जो वक्त के गुजर जाने के बाद भी दिल में महकती रहती है। फिल्म अर्थ से ये गजल सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में। ये उनकी गजल गायकी का बेहद भावपूर्ण उदाहरण है। उनकी आवाज में ठहराव है, सादगी है और एक ऐसी कसक है जो सीधे दिल के भीतर उतर जाती है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि कुछ रिश्ते दूर होकर भी हमारे एहसासों में हमेशा मौजूद रहते हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस संगीतमय सफर में हमने कभी तन्हाई का दर्द महसूस किया, कभी मोहब्बत की शरारत देखी, कभी वफा की मर्यादा को समझा, तो कभी पुराने खतों में बसी यादों की खुशबू को महसूस किया। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित गजलों के इस कार्यक्रम कहकशा को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी है, रविवासरिया संगीत सभा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पंडित जडेश हुगार जी का तबला वादन। पंडित जडेश हुगार जी का जन्म 4 जुलाई 1977 को हुआ। आपके पिता का नाम भगवंतप्पा हुगार है। पंडित जडेश हुगार संगीत तथा कला परिवार से जाने जाते हैं। आप कल्याण कर्नाटक के जाने माने तबला वादक स्वर्गीय श्री शंकरप्पा हुगार जी के पौत्र है। आप अपने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री भगवंतप्पा हुगार द्वारा तबला वादन तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही टॉप ग्रेड उपाधि प्राप्त आकाशवाणी धारवाड़ के टॉप तबला कलाकार आपके चाचा पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर जी से भी तबला वादन में अधिक शिक्षा हासिल की है। कर्नाटक राज्य शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा शास्त्रीय संगीत में तबला विद्वत एवं गायन विद्वत की उपाधि, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से तबला वादन में एमए की उपाधि, आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए गए संगीत की ऑडिशन में तबला वादन में टॉप ग्रेड, बी हाई ग्रेड संगीतकार, बी हाई ग्रेड हिंदुस्तानी गायन कलाकार की उपाधियों के साथ फरुखाबाद, पूरब तथा अजरार घराना और दिल्ली घराने की भी उपाधि प्राप्त की है। पंडित जडेश हुगार धारवाड़ संगीत विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष संगीत सहायक शिक्षक के तौर पर और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में 1 वर्ष

वर्ष अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। आप केवल देश में ही नहीं बल्कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आप देश विदेशों के कई जाने माने कलाकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपके संगीत कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज की इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन 3 ताल में।

0: दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज की इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन तीन ताल में। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमाठ।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित जडेश हुगार। हैविंग इम्बाइब्ड म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम हिज फादर श्री भगवंतप्पा हुगार, अ वेल नोन वोकलिस्ट एंड तबला आर्टिस्ट ऑफ कल्याण कर्नाटक रीजन, जडेश इनकल्केटेड अ सेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। एट द टेंडर एज ऑफ 8 he started learning tabla under his father's guidance. After that, it was the turn of his uncle, Pandit Satlingappa Desai Kallur, a top grade tabla artist of Akashwani Dharwad, to impart advanced training in tabla to Jadesh. Belonging to Purab, Farukabad and Azrat Gharana, Jadesh has also achieved the style of Delhi Gharana. A postgraduate in music from Karnataka University Dharwad, Jadesh has achieved many top grades in classical music at a very young age, enthralling audience and connoisseurs all around India and abroad with repertoire of his recitals, incorporating various styles of performances. Jadesh has shared stage with many eminent and senior musicians. He has given programs in France and Switzerland also. Tonight, Pandit Jadesh Hugar will begin his performance of tabla solo in Teen Taal. Harmonium Lahira is provided by Sri Revaya Vastradmat.

Gatandriela, Nisaral Kansap. Da, then again,

ಗದಿ ಗೇ ಅಂತ ಧಾ ಕತ್ ಹಿಂದ್ರಕೃತದಾಗೆ ದಿ ಗೇ ಅಂತ ಧಾ.

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश हुगार जी से तबला वादन में रूपक ताल। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाई पंडित जडेश हुगार इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगर तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रदमठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विथ रूपक ताल पंडित जडेश होगर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रदमठ। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कलबुर्गी।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली की यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट

0: अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये

0: न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Ponnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalay in Chennai today. Addressing the students, the Prime Minister said the world is looking for solutions to emerging challenges and expressed confidence that India's youth have the talent and potential to provide them. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed, subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that internet services remain uninterrupted, subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties. Issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions, the Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused.